हरे जगत जगतारे भजन करो, हरे जगत जगतारे भजन करो, हरे जग

0: नमस्कार।
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में, और आपके साथ है आपकी रेडियो दोस्त वर्षा
2: और मनीष कार्यक्रम लेकर आए हैं। और साथ में आपको बता दें कि कार्यक्रम आजीविका में हम छोटे छोटे व्यवसाय को लेकर बातचीत करते हैं, और ऐसा हमारे श्रोता साथी सोचते हैं कि छोटे छोटे व्यवसाय तो बहुत सारे हो गए हैं, लेकिन कहीं क्योंकि कृषि प्रधान देश है अपना और बुंदेलखंड में सबसे ज्यादा खेती होती है, तो ऐसे में हमारे बेरोजगार युवा साथी किस

0: से देख सकते हैं, बहुत ही छोटे छोटे से लघु उद्योग जिनको कहते हैं, वो अगर करके एक बहुत ही अच्छा बेहतर तरीका अपना सकते हैं। जो हमारी बहनें हैं जो हमेशा सोचती हैं कि हम फालतू रहते हैं घर में, खेती का काम करके या घर का काम करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारा समय ऐसा बचता है जो हमारा बेकार का जाता है, तो ऐसे समय को हम लोग किस तरह से इस्तेमाल करके एक नया तरीका अपना सकते हैं व्यवसाय को देखते हुए, लघु उद्योग को देखते हुए, और किस तरह से हम अपनी आजीविका चला सकते हैं, आज के इस कार्यक्रम में हम सुनेंगे।
1: उन्होंने बताया था कि किस तरीके से हमारा किसान आज किसानी करते हुए बहुत वर्ष हो गए हैं, लेकिन वो मुनाफे का खेती नहीं कर पा रहा है, कि क्यों नहीं कर पा रहा है, इसकी जानकारी उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दी थी कि किस तरीके से वो मुनाफे की खेती कर सकता है। और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम नए नए आइडियाज खेती से हम दाल उगाते हैं, खेती से चना होते हैं, खेती से चावल होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के प्रोडक्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे खेती के सामान होते हैं जिनको हम बाजार में बहुत अच्छी तरीके से बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने, क्योंकि हमारे जब किसान साथी फसल उगाते हैं तो वो सीधा ले जाकर उसको बेच देते हैं, लेकिन उसका जो पूरा मुनाफा होता है वो बीच की बिचौलिया ले जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि इस कार्यक्रम को आप बड़े ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस कार्यक्रम में वो सारी जानकारी आपको बताई जा रही है कि किस तरह से खेती से आप सीधा मुनाफा जो बिचौलिया ले जाते हैं वो उनको ना जाके आपको सीधा ही मिल सकता है।
1: बिल्कुल, और आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे हमारे डॉक्टर संतोष पांडे जो कृषि विभाग में पदस्थ है, उनसे हमने जानने की कोशिश की और उनसे जाना भी है कि हमारे किसान साथी इस बुंदेलखंड क्षेत्र में इस खेती में किस तरीके से मुनाफे का सौदा कर सकते हैं, किस तरीके से वो अपने खुद के उगाए हुए फसलों को किस तरीके से व्यवसाय तरीके से बेच सकते हैं। क्योंकि खेती करने वाला किसान होता है वो सिर्फ अनाज को उगाता है, उगाने के बाद वो मंडी में सीधा ले जाता है, लेकिन यदि व्यवसायिक तरीके से देखा जाए तो व्यवसायिक तरीके से यदि खेती की जाए, उसने जैसे कोई भी खेती को उगाया उसने और घर पर रख के वो अब उसको पैकिंग करके अगर मार्केट में बेचेंगे तो बहुत ज्यादा मुनाफा होगा और बहुत ज्यादा, चूंकि हम जब खड़े चना ले जाते हैं या खड़ी दाल ले जाते हैं या खड़े चावल ले जाते हैं तो वो कम रेट में मिलते हैं, लेकिन यदि हम उसको बढ़िया पैकिंग करके बढ़िया दाल बनाकर उसकी पैकिंग बाजार में अपने ही ब्रांड, क्योंकि इसमें ज्यादा खर्चा भी नहीं लगता है, और अपनी ब्रांड से बेचकर इसको बाजार में बेचा जाए तो बहुत ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं हमारे किसान साथी, हमारे युवा साथी इसको बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं।
0: तो सारी जानकारी आप यहीं बता देंगे या फिर हमारे साथियों को प्रोग्राम भी सुनने देंगे?
1: चलिए, हम अपने डॉक्टर संतोष पांडे से मुलाकात आपको करवा रहे हैं जो कि बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में पदस्थ हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे किसान साथी किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से खेती को कर अपना मुनाफा कमा सकते हैं। तो आइए सुनते हैं डॉक्टर संतोष पांडे जी को।
2: नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर संतोष पांडे है, मैं सहायक प्राध्यापक के पद पर बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में सस्य विज्ञान विभाग में नियुक्त हूँ। बुंदेलखंड के शायद युवा जो हैं वो फर्स्ट क्लास जो है, यहाँ पर चूंकि दलहन उत्पादन बहुत होता है
3: जी,
2: इसके लिए उनको जो है दलहन में जैसे चना है, मटर है, मसूर है, इसको दालों के रूप में उद्योग को विकसित कर सकते हैं। इसके साथ साथ इसके जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, बाई प्रोडक्ट्स में जैसे दाल तो है ही है, दाल के साथ साथ नमकीन है और सारी जो है चीजें, तमाम जो है इसके प्रोडक्ट जो है तैयार हो सकते हैं, इसको करके अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। दलहन आय के समय में मुख्य जो है आवश्यकता है, और बुंदेलखंड रीजन जो ये झांसी, ललितपुर, आपका जालौन ये एरिया है, ये खासकर मटर
3: जी,
2: चना
3: जी,
2: उर्द मूंग इसके लिए बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ यहाँ पर वर्तमान समय में जो आज का परिवेश है इसमें तिलहन के रूप में तिल की खेती करके तिल से बहुत सारे बाई प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं, जैसे तिल का लड्डू है
3: जी,
2: आज के समय में तिल की मिठाइयां हैं
3: जी,
2: तिल का तेल है
3: जी,
2: ये उद्योग जो है बाई प्रोडक्ट के रूप में अगर युवा साथी अपनाएं और गांव में एक समूह बनाकर छोटे छोटे जो है ग्रुप्स में जो है अगर काम करना शुरू करें तो बहुत अच्छा इनकम जो है इससे जो है डेवलप किया जा सकता है। ये ग्रुप्स 10 का हो सकता है, अपने हम उम्र में हो सकता है, एक उम्र के वर्ग के साथी जो है साथ में जुटें।

0: जो क्योंकि युवाओं में जोश होता है, क्योंकि एक उम्र में, एक जाति, एक विशेष वर्ग में, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि क्या है, विचार मिलने की बात है।
1: जी जी,
0: युवा तभी जो है उसमें मोटिवेट होगा जब हमारे विचार मिलेंगे।
1: बिल्कुल सर।
0: तो इसलिए उन विचार, एक विचार वाले साथियों को मिलकर उस पर एक चर्चा करनी चाहिए।
1: जी।
0: इसके साथ साथ दुग्ध पालन है
1: जी।
0: उसके बाद दलहन तिलहन तो है ही है
1: जी।
0: तमाम साधन, कृषि में अनेक संभावनाएं हैं जिसमें रोजगार ही रोजगार है। सिर्फ और सिर्फ उसमें ध्यान देने की जरूरत है और संगठन के साथ कार्य करने की जरूरत है
1: जी। और दूसरी बात सर आती है कि यहाँ पर फूड प्रोसेसिंग यूनिट की बात आती है, तो हमारे युवा साथी इसको किस तरीके से देख सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बुंदेलखंड में संभावना है सर
0: इसे स्वरोजगार, जैसे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है
1: जी,
0: कि हमारे यहाँ स्वरोजगार, लोग नौकरी ना करके सर्व स्वावलंबन में आए
1: जी,
0: उस तहत में काम कर सकते हैं
1: जी।
0: उसके लिए फूड प्रोसेसिंग यूनिट में जैसे है कि हम जो बाई प्रोडक्ट्स हैं, सारी चीजें प्रोसेसिंग में ही आती है, तो उसका हम उपयोग, गांव में तमाम चीजें होती हैं
1: जी,
0: जैसे बेसन है
1: जी,
0: दलिया है
1: जी,
0: यहाँ बुंदेलखंड का कठिया गेहूं बहुत अच्छा है।
1: बिल्कुल सर।
0: तो किसान जो है के साथ, घर के जो बच्चे हैं, जो युवा हैं, बेरोजगार के लिए इधर उधर टहल रहे, रोजगार के लिए
1: जी,
0: छोटी छोटी मशीनें गवर्नमेंट से जो द्वारा जो है 10-12 हजार 15 हजार रुपए में छोटी छोटी मशीनें आती
1: जी,
0: उसको ले ले और स्वयं से पैकेजिंग करें, उसका अपना जो है एक सोसाइटी बना ले, FIG या PO का डेवलपमेंट करें, फार्मर FIG या फार्मर इंटरेस्ट ग्रुप, फार्मर ऑर्गेनाइजिंग ग्रुप या PO होता है
1: जी,
0: तो उसके आधार पर काम कर ले और जैसे जैसे काम बढ़ता जाए, लोग उसमें जुड़ते जाए और ये एक बहुत बड़ा रोजगार जो है दे सकता है।
1: बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने सर बात करी। और चूंकि बुंदेलखंड में इस तरीके के हमारे युवा साथी सोचते हैं कि एग्रीकल्चर को व्यवसाय के रूप में नहीं देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है कि जो उद्योग की अगर बात करें, फ्लाई एश मशीन लगाना या फिर पेवर्स ब्लॉकिंग करना, इस तरीके के व्यवसाय को वो व्यवसाय कहते हैं, लेकिन यदि एग्रीकल्चर को देखा जाए, कृषि को देखा जाए, उस तरीके को फायदे का, मुनाफा का सौदा नहीं मानते हैं। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है सर?
0: कृषि के क्षेत्र में विकास कार्य बुंदेलखंड में बहुत कम हुआ है, जो काम किया भी जा रहा है वो रूट लेवल पर नहीं है, जमीनी स्तर पर नहीं है
1: जी।
0: ये कार्य जमीनी स्तर पर होना चाहिए, गांवों में लोगों को, इसके लिए गवर्नमेंट से मेरी ये गुजारिश है कि जमीनी स्तर पर प्रोग्राम चलाए जाएं, जिसको कि गांव में डोर टू डोर सिस्टम में कहा जा सकता है, युवा साथियों को स्वरोजगार के माध्यम से इन सब चीजों की जानकारी दी जाए
1: जी।
0: और जो चीजें हैं आज के युग में, जितने भी हमारे जो भी बाहरी लोग नौकरी करने जाते हैं
1: जी,
0: उसमें चीजें हैं, हमारे यहाँ महिलाएं, गांव की महिलाएं रोजगार की तलाश करती है, लेकिन रोजगार उनको दिखता नहीं, जो कि रोजगार उनके घर में है।
1: बिल्कुल।
0: अगर चावल की बिनाई कर ले, पाइप बिनाई करके उसको पैकेजिंग कर ले
1: जी,
0: दाल जो है, चना है, चने की ग्रेडिंग कर ले
1: जी,
0: ग्रेडिंग करके पहली क्वालिटी का चना मार्केट में खड़ा चने के रूप में यूज करे, सेकेंड क्वालिटी का चना दाल के रूप में, थर्ड क्वालिटी का चना बेसन के रूप में, इस तरह बाई प्रोडक्ट्स बन जाएंगे। बाई प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग करने के लिए जो बेरोजगार युवक युवतियां हैं
1: जी,
0: उनको मार्केट में जो है आगे आना चाहिए, जो दलाल है, ब्रोकर्स हैं, जिससे किसानों की जो दयनीय स्थिति गड़बड़ हो रही है
1: जी,
0: वो भी इम्प्रूवमेंट होगा, वो भी सुधार होगा
1: जी।
0: और एग्रीकल्चर से ज्यादा रोजगार किसी चीज में नहीं है, आज के समय में एग्रीकल्चर इज द बेस्ट, सबसे अच्छा है
1: जी।
0: तो रोजगार के लिए हमें कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जानकारी की जरूरत है और हमें आंखें खोलने की जरूरत है
1: जी।
0: जहां चाह वहां राह की बात बिल्कुल चरितार्थ होती है। तो अगर हमारे युवा साथी बुंदेलखंड की समस्या, अगर लोग, चूंकि 60% 70% आबादी हमारी खेती पर ही निर्भर है और हम दलालों के माध्यम चूंकि काम करते नहीं, ज्ञान नहीं है,
1: बिल्कुल सर,
0: उसके नाते हमें बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है।
1: बिल्कुल सही बात कही आपने। चूंकि अगर सर बात करें इसकी खेती किसानी की और जो प्रोडक्ट आपने बताए हैं, लेकिन समस्या सर आती है उनको मार्केट में किस तरीके से बेचा जा सकता है, इसके बारे में साथियों को कुछ अनुभव आप शेयर करें जरूर बताएं।
0: कोई चीज बिकती कब है? जब क्वालिटी होती है। क्वालिटी गुणवत्ता के लिए मैंने क्या कहा कि ज्ञान की जरूरत है, थोड़ा सा हम ट्रेनिंग है, अगर ट्रेनिंग और प्रोसेसिंग का काम हम सीख ले
1: जी,
0: तो बहुत अच्छे तरीके से हम मार्केटिंग का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट जो चीजें दिखती हैं वही बिकती हैं।
1: बिल्कुल सर।
0: तो आपको अपने ब्रांड की ब्रांडिंग करनी है, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनकी ब्रांडिंग का कार्य करना होगा।
1: बिल्कुल सर।
0: जब तक आप उसको ब्रांडिंग नहीं करोगे, कोई चीज मार्केट में नहीं ले

0: होगा तब तक उसकी वैल्यू नहीं बनती।
1: बिल्कुल सर,
0: बुंदेलखंड में बहुत सारी जो है ऐसी चीजें हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं जो आज भी नेचुरल रूप में ऑर्गेनिक फार्मिंग का यहाँ सबसे बड़ा रिच स्रोत है।
1: बिल्कुल,
0: यहाँ जो है जैविक खेती की बात जो सरकार कर रही है उसको भी बढ़ावा दिया जा सकता है। यहाँ मार्केटिंग के रूप में उसको जो है लेने के लिए दिल्ली जो है सबसे नियरेस्ट मंडी है।
1: बिल्कुल सर,
0: दिल्ली है, भोपाल है, ग्वालियर है, एमपी के सटे हुए होने के नाते इसके पास व्यवसाय के बहुत सारे रास्ते हैं
1: जी।
0: अगर किया जाए इसके साथ साथ औषधीय पौधों की खेती भी की जा सकती है।
1: बढ़िया सर जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो कार्य करने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है, सिर्फ हमको ट्रेनिंग और जानकारी की जरूरत है
1: जी।
0: अगर हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग दी जाए उसके लिए हम लोग उपलब्ध हैं
1: जी।
0: जो इच्छुक हों लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं
1: जी,
0: वो हमसे सीधे संपर्क करें, हम उनको ट्रेनिंग दे बताएंगे और जगह जगह संस्थाएं
1: जी
0: उसके बारे में जानकारी देंगे। गवर्नमेंट की बहुत सारी योजनाएं हैं स्वरोजगार से संबंधित
1: जी,
0: उसके लिए किसान भाइयों को आगे आना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा।
1: बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बहुत अच्छी सर आपने बातचीत बताई है। और हमारे युवा साथियों को चलते चलते और क्या आप बताना चाहेंगे कि इस, चूंकि दूसरी चीज सर आती है प्रशिक्षण की बात आती है, प्रशिक्षण में चूंकि अनुभव की कमी आती है कि किस तरीके से वो कार्य करें, और कुछ भी व्यवसाय करते हैं तो अनुभव रहता है, दूसरा मार्केट रहता है, तो अनुभव की कमी आती है, तो उसमें आपकी क्या विचार है सर, किस क्या करना है?
0: उसके लिए तमाम संस्थाएं हैं, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सहयोग देने के लिए खड़ी हुई है। गवर्नमेंट की तमाम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज तो भारत सरकार पूर्ण रूप से किसानों के लिए ही सारे योजनाएं सारे कार्यक्रम बना रही है। सिर्फ आंखें खोलने की जरूरत है और बाहर निकलने की जरूरत है। रोजगार युवा भाइयों, आपको पूरी जो है दुनिया आपकी है, आप मुट्ठी में कर लो दुनिया मुट्ठी में का नारा भी आप बुलंद कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान करिए और डर के आगे जीत है, डर को अपने निकालिए और आगे बढ़िए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हमारे साथियों को चल चलते आप क्या संदेश देना चाहते हैं उन साथियों को जो बेरोजगार बैठे हुए हैं?
0: स्वयं का कार्य शुरू करिए, डर को निकालिए और आप छोटे से व्यवसाय को करेंगे, 1,000, 2,000, 4,000 रुपए की पूंजी से जो काम अपना करेंगे धीरे धीरे पैसे बढ़ते जाएंगे और आप आत्मनिर्भर होते जाएंगे। क्योंकि गवर्नमेंट के पास नौकरियां नहीं, नौकरी आपको डेवलप करनी है, इसलिए काम आपको करने होंगे। चीजें हमने आपको बताई कि रोजगार एग्रीकल्चर में भी बहुत ज्यादा है, कोई कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसको आपको ज्ञान होने की जरूरत है और उसके लिए प्रशिक्षण केंद्र खुले हुए हैं। गवर्नमेंट से स्वरोजगार योजना चलती है, उसके माध्यम से आप प्रशिक्षित हो सकते हैं, कृषि से संबंधित रोजगार कर सकते हैं और कृषि के अलावा भी आप काम करना चाहें तो गवर्नमेंट की बहुत सारी ऐसी प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं जिसमें आप काम कर सकते हो
1: जी। बहुत बहुत सर धन्यवाद,
2: बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और साथियों अभी आपने संतोष पांडे जी को सुना और उनसे बहुत अच्छी जानकारी ली कि किस तरीके से खेती को हम व्यावसायिक तरीके से करके एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं।
3: बहुत सही कहा है आपने। और साथ में उन्होंने ये भी बताया है कि हमारे किसान साथी और ज्यादा मुनाफा खेती से कैसे कमा सकते हैं। जैसे कि उन्होंने बताया कि चावलों को एक बीन के अच्छे से तैयार करके एक पैकिंग करके मार्केट में अगर आप इसको उतारेंगे तो अब बहुत अच्छी इसकी बिक्री भी होगी, साथ ही साथ आपका मुनाफा भी अच्छा होगा इससे।
2: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि किसान तो खेती करके वो अपना माल को बेच देता है, लेकिन जो व्यापारी रहते हैं वो उस माल को दुगने रेट में जब बाजार में बढ़िया तरीके से उसको साफ करा के बेचते हैं तो दुगने रेट में बेचते हैं। तो क्यों ना हमारे किसान साथी इस तरीके का व्यावसायिक तरीके से खेती को करें, अपना अनाज स्वयं मार्केट में बेचे, अपने ब्रांड बनाए और छोटे छोटे समूह बनाकर, क्योंकि हमने एक कार्यक्रम में बताया था कि हथकरघा विभाग यानी हाथ से बनी हुई चीजों पर सरकार लोन उपलब्ध कराती है यानी पैसा उपलब्ध कराती है, तो आप ज्यादा पूंजी लगना नहीं है इसमें, छोटी छोटी पूंजी लगना है और मार्केट में इसको बेचकर बहुत अच्छा मुनाफा हमारे साथी कमा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी योजना के साथ यदि देखा जाए तो किसान साथियों के लिए भी बहुत सारी योजना चल रही हैं। यदि अपना व्यवसाय खुद का करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं और आगे इसको बढ़ा सकते हैं।
3: हालांकि साथियों को कुछ पता भी रहता है, किसान साथियों को, कि किस तरह से हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ रह जाते हैं वहां पे कि हमें ट्रेनिंग कहां से मिलेगी, क्योंकि सही तरीके से काम कैसे किया जाए जब तक हमें कोई प्रशिक्षण नहीं मिलेगा हम लोग नहीं सीख सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने पता भी बताया है कि अगर आप किसान साथी इस तरह का कोई प्रशिक्षण अगर चाहते हैं तो उनसे संपर्क करके आप एक बेहतर प्रशिक्षण ले सकते हैं और आगे चल के अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं।

0: साथियों, अब हमारा समय होता है ऐसे कार्यक्रम आजीविका से जाने का। आजीविका में बेहतर और क्या कर सकते हैं, आपके सुझाव और आपके मार्गदर्शन की जरूरत होगी कि इस तरीके से हम एक नए तरीके से व्यवसाय कर आगे बढ़ सकते हैं। तो जरूर अपने सुझाव हमारे इस पते पर, चूंकि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैं जो फोन करने में हिचकिचाते हैं और मैसेज भी करते हैं, लेकिन उनको चिट्ठी लिखने में बहुत मजा आता है। तो चिट्ठी के लिए हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
0: और फोन करके भी आप अपने सुझाव दे सकते हैं। फोन नंबर है हमारा
2: 9219207749।
1: साथियों, आप इस पे अपने सुझाव भी रिकॉर्ड करा सकते हैं, साथ ही साथ आप मैसेज भी इस नंबर पर कर सकते हैं और मैसेज के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं कि आजीविका कार्यक्रम में और क्या नया बेहतर कर सकते हैं जिससे आपको थोड़ी सी और जानकारी ज्यादा आपको मिल सके, या फिर कोई ऐसा आइडिया जो हमारे किसान साथियों के लिए या फिर हमारे युवा साथियों के लिए बहुत बेहतर साबित होगा। तो आपके मैसेज और पत्रों का रहेगा हमें इंतजार। अब दीजिए अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
0: और मनीष को जाने की इजाजत। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम आजीविका में मुलाकात। तब तक के लिए
1: नमस्कार।
0: और चलते आप सुनिए एक प्यारा सा गीत जिसे गा रहे हैं हर प्रसाद कुशवाहा और उनके साथी।

नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले हमारे सभी श्रोता साथियों को आपके अपने रेडियो दोस्त वर्षा की दो हाथ जोड़ के नमस्कार पहुंच जावे। और साथियों देखो, आपको तो पता ही हैगो कि आज के दिन और इस समय पे आपके बीच में कौन सा कार्यक्रम आवे वालो हैगो, तो हम लेके हाजिर हो गए हैंगे आपको अपनो मन पसंद कार्यक्रम स्त्री एक कहानी मेरी भी। इस कार्यक्रम में अपने सब साथी जानत भी हैंगे कि अपन और एक महिला से बात करत हैंगे और उसे पूरे जीवन की गाथा को सुनत हैंगे कि उनको कैसे सफर रहो है वो पूरे एक जीवन को। उनने पढ़ाई कितने तक करी हैगी और साथ में उनकी शादी कब भई थी, और साथ में जाने के भी जब शादी उनकी भई थी तो भी शादी के बारे में जाना था कि नहीं। देखो, जिस शादी उनकी हो रही थी उनको उनने देखो भी है तो या नहीं देखो, तो कहे कि आज के समय की अगर अपन और बात करें तो आज तो देख भी तो बाद में जाते, पहले मोबाइल नंबर पहले पहुंच जाता ही, और मोबाइल नंबर जब पहुंच जाती तो बातें भी खूब दम से होती और फिर देख भी की तो बातें अलग हैगी कि देख तो एक दो बार लेते ही हैंगे। लेकिन पहले के समय में अपन और देखो कि जितनी भी कहानी अपन और स्त्री में सुनी हैगी उनने कौनों ने भी जानी गई कि हमने देखो हतो ने जिनसे हमारी शादी हो रही थी, बस परिवार वाले देखिया या क्योंकि जैसे कि जो मानदान रहते हैंगे ब्योरे देखे आते ही, तो लड़की को देख भी की कोनो जरूरत नहीं पड़त हैगी। तो आज की ये कहानी में अपन और बात करेंगे लक्ष्मी जी से, जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी, और राधापुर की लक्ष्मी जी अपन को बता रही हैंगी कि की तरह से उनको जीवन रहो हैगो, और साथ में भी बता रही हैंगी कि 20 साल से वे आंगनबाड़ी में नौकरी कर रही हैंगी, तो उनके जीवन के का अनुभव उनको रहे हैंगी और पढ़ाई को लेकर भी कितनी सोचती हैंगी, ये सब बातें अपन और आज की कार्यक्रम स्त्री में करेंगे। तो चलो साथियों, देर नहीं करा थेंगे, हम आपको सीधो ले चला थेंगे राधापुर, जिते अपन लक्ष्मी जी की कहानी उन्हें की जुबानी सुन रहेंगे। तो चला थेंगे राधापुर।

0: राम राम अम्मा।
1: राम राम।
0: कहाँ नाम है अम्मा आपको?
1: लक्ष्मी नाम मेरा।
0: अच्छा कहाँ रहती हैं आप?
1: राधापुर।
0: राधापुर में रहते हैं। कहाँ करती हैं अम्मा?
1: आंगनवाड़ी में काम कर रहे हैं।
0: आंगनवाड़ी में होंगी आप? कितने साल से कर रहे हैं?
1: हम कर रहे हैं 20 साल से।
0: 20 साल से?
1: हाँ 20 साल से।
0: अच्छा तो अम्मा आज हम आपसे आपके जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। तो जैसे शुरुआत की बात करें, आपको माए को कहते हैं?
1: हम माए को झांसी में।
0: झांसी में कौन जगह?
1: झांसी द्वारा गोवन चौराहे डाल के नीचे राज डॉक्टर, आपने सुना उनको?
0: हाँ हाँ,
1: उन्हीं के नीचे रहते थे।
0: अच्छा उन्हीं के नीचे रहते थे। आपके परिवार में को हो तो?
1: हमारे परिवार में हमारे भैया थे, भाभी थी, दोनों थे, तीन बहने थे।
0: अच्छा तो और मम्मी पापा?
1: मम्मी पापा थे।
0: अच्छा आपके घर का क्या काम हो तो?
1: वहाँ पे वहाँ पे तो चौका वर्तन करते सबके, तो ज्यादा जमीन नहीं होती, मजबूरी करते और बड़े बड़े लोगों को काम करे आते।
0: अच्छा।
1: मेरे पिताजी गुजर गए थे, हम लोग सब छोटे थे, मेरी अम्मा के लिए क्या करती?
0: हाँ, सही बात।
1: तो अम्मा ने सबको लगा दो थे, कोई को 10 रुपया महीना से, कोई को 5, जब समय छोटे।
0: अच्छा 10 रुपया?
1: हाँ 10 रुपया से। हमारे भैया को 15 रुपया मिलते हैं, 10 बच्चा खिला देते उनके।
0: अच्छा।
1: खाना देती हुई और कपड़ा मपड़ा देती, 10-5 रुपए 10 रुपए दे देती है।
0: तो मतलब इस तरह से चला
1: रहता है।
0: अच्छा अगर आप आपके बचपन की बात करें तो बचपन में और का काम आपने, पढ़ाई कितने तक करी है आपने?
1: हमने पढ़ाई 5 तक करी।
0: 5 तक पढ़ाई करी है। अम्मा आपकी उम्र कितनी हुई है?
1: हमारी उम्र 2 साल कम रह गई, 60 साल।
0: 60 साल में 2 साल कम रह गई आपकी। तो बचपन में काम तो जैसे आपने बताया कि काम भी करी, लेकिन उससे और छोटे जो बचपन होते ही, जब मान लो काम करने की उम्र नहीं होती,
1: जब ध्यान थोड़ी है, जब तो खेलते ही खाते।
0: हाँ तो खेलने की बात हम कर रहे हैं, आपने खेल कौन कौन से खेले?
1: खेल अब का कंची खेल रहा है, कहीं रेडी खेल रहा है, ये खेल खेलते तो।
0: अच्छा
1: चपट्टा खेल रहा है?
0: चपट्टा का
1: सावन का चपेटा कलर।
0: अच्छा
1: जी खेल रहा है।
0: तो सावन में आप गीत भी गाती हैं? खेल में गीत ना, गीत सुनाओ।
1: हम नहीं जाना तो है गीत नीत।
0: अच्छा गीत ही नहीं आते? पहले तो गाती हूँ आप।
1: अरे अंगूर लगा तो बड़ा पे से कुछ नहीं आता,
0: इतने बड़ा पन नहीं आपको, लेकिन तो बड़ा पन नहीं लगा था आपको।
1: मैं बोला वो कह रही है।
0: तो कौन सा गीत गाते हैं?
1: मैं कोनो नहीं गाते
0: आप गाते हैं? अच्छा आपकी सहेली कौन कौन आती?
1: हमारी सहेली अब सब दूर हो गए, अब सहेली हमको जाने कहाँ कहाँ गई थे,
0: तो नाम तो
1: कल को अंगूरी ना तो कल को पुष्का ना तो ऐसे सबके नाम होते सबके, कोई की कल शादी हो गई, कोई की कल अपने घर से नहीं।
0: आप मिलती हूँ आप लोग?
1: हाँ मिल जाते,
0: मिल जाते इकट्ठे हो जाते
1: हैं, कभी कभी इकट्ठे हो जाता है, खुशी तो जो से आप लोग मायके में आप तो सब बहनों में लगते हो, अच्छे लगते
0: हैं, अच्छे लगते हैं। अच्छा अम्मा जो बताओ कि आपके समय में पहनावे कौन कौन से होते, मतलब पैरत का कपड़ा कौन कौन से चलते?
1: कपड़ा पहले तो देखो गरीबी होती से चड्डी कपड़ा की सिला के पहनते,
0: अच्छा
1: फिर आके पहनते और खिला कर नहीं मिली तो बिस्कुट पहन लेते, ये पहन लेते हम तुमने खिला कर गए तो ये पहन लेंगे और ये कह रहा हूँ।
0: मतलब कोई अलग से नहीं
1: है? कोई अलग से नहीं है।
0: अच्छा तो अब हम आपसे बात करें, आपकी शादी कितने उम्र में
1: हुई? हम हमें तो ध्यान नहीं है बहन के, एक बीमार बनवाई भाई जाती
0: तो मतलब कैसे तो अंदाजा हुई है, जब आप जाना कभी शादी के बारे में?
1: नहीं जान सकते जब हमारी शादी हो गई,
0: बिल्कुल नहीं जानती। अच्छा जिस बात की शादी हो रही थी उसको आपने देखा तो
1: है?
0: पहले से देखा तो
1: है? नहीं नहीं पहले कहाँ देखने देखते, पहले ना कोई मोड़ी देखा तो ना कोई मोड़ा देखा।
0: अच्छा
1: तो एक से तो आते ही हमारे बाप माता 9 साल के 9 साल के हमारे पिताजी गुजर गए थे, सब 9 साल की शादी कर रही थी, तो जिन दिन पे काम करते हमारे माता जी ने कही क्या 500 रुपया दे दो मोड़ी के ब्याह करने, बोली तो मैं 10 रुपया मिला तो 500 रुपया ले लो, 500 से
0: सही बात
1: है, तो मैंने 750 रुपया दे मैंने डाल दी।
0: अच्छा
1: कौन
0: से रुपए में क्या
1: होगा? नहीं सबसे वैसे कछु कछु लोगों ने ऐसे फोन नौ आती है देखे उन लोगों ने और दारा दे रहे जैसे ही तो बिट गया तो फोन गया और फोन में रह दो पैसा बड़े बड़े सेठ लोग।
0: अच्छा जब आपकी ब्याह हुआ इसके बाद कितने आपकी ससुराल से नहीं राधापुर में भाई है? राधापुर ससुराल है आपकी, तो आपने पहली बार जब कौन कौन सी रस्में आपके भाई हैंगी, जैसे पहले बनाते मंडप
1: पहले मंडप तेल।

0: कितने बजे उठाती हैं आप?
1: 4 बजे उठ जाते हैं। 4 बजे से पी सकते हैं।

0: 5-6 किलो माँच पीसे बेचते।
1: 5-6 किलो रोज पीसने?
0: हाँ रोज। इतना जेठानी पीसती इतना ही।
1: तो भी कभी पीसती आप तो सुबह से उठ के पीसती हो?
0: चार बजे सुबह पीसती।
1: संग में पीसती
0: हो? हाँ करो संग में करो अलग अलग पीस।
1: अच्छा फिर उनके बाद चक्की पीसने के बाद का काम?
0: गोबर गोबर डालते।
1: कितनी गाय भैंसे होती आपके?
0: बोला 10-12 गाय होती।
1: अच्छा
0: गोबर में बटा रखते झाड़ा झुड़ी करते
1: फिर
0: एक जनी रोटी बनाने लगती एक जनी काम करने लगती।
1: अच्छा ऊपर वो काम कर लेती।
0: तो फिर कुबा को 8 बजे तक निकल जाते सो गांव चलाते जनवर।
1: अच्छा वहाँ से वहाँ नहीं आते?
0: नहीं बेलन से।
1: बेलन से
0: चलते घर जाने सो चलाते रखते कभी सात बैठा भी चलाती कभी हम चलाते रहते।
1: तो मतलब लड़ाई नहीं होती है? अच्छा आपकी कितनी मोड़ी मोड़ा है?
0: हम 6 लड़का।
1: 6 लड़का और लड़की?
0: लड़की नहीं है।
1: लड़की नहीं है को? तो अपने लड़का को तो पढ़ाओ जो खूबे।
0: हाँ पढ़ा पढ़ा दे वो परेशान नहीं है किसी कुछ नहीं पढ़ा।
1: अच्छा
0: 5-5 पढ़ा जाए स्कूल में बस।
1: अच्छा सरकारी स्कूल में। तो अब सबकी शादी हुई?
0: हाँ सबकी हो गई। सब सब नाती नाती लड़की हो गई।
1: अच्छा नाती इनकी भी हो? कितनी नाती है ये?
0: 6 नाती है 6 नातनी है।
1: अच्छा तो बोला आपकी को मतलब बिलास बड़ा परिवार है?
0: हाँ तो 6 लड़का है तो 2-2 है सबके।
1: अच्छा
0: और 1 के 4 है बड़े के 3 मोड़ी है। आप भी रोगा तीन मोड़ी के 2 मोड़ी मोड़ा होगा 1 के छोटी 1 के मोड़ा होगा 1 के मंजिले मोड़ा की के मोड़ी है मोड़ा होगा।
1: तो बहुत बड़ा परिवार है आपको? अच्छा लगा थी आम जो है सब जने आ रहा थी तो लगा थी है ना। तो आप सुहाटा नहीं खेलती हो? कैसे खेलती आप अपने
0: सवेरे उठ के सब जगह लीपो पोतो झाड़ो चौको बस पर खेल
1: गाना भी याद करने आ रही। बहुत बढ़िया आपकी बातें हमें लगी है अम्मा। लेकिन एक बात और आपने पूरी मतलब आंगनबाड़ी की नौकरी कब से कर रही हैं आप?
0: 20 साल से जा रहे हैं।
1: जैसे आपने पढ़ाई 5 तक करी तो आंगनबाड़ी में कैसे आपकी नौकरी लग गई?
0: आंगनबाड़ी में वही लग गई थी।
1: कैसा लग गई थी मतलब?
0: पहले उन्होंने 4 जन्म के कागज दिए थे घर को तो सबने 200 रुपये में लगते।
1: अच्छा
0: तो सब जनों ने कही 200 रुपये में का खा रहे हमें निकलने हमें निकलने से फिर मेरी चाची तुम लग जाओ अभी 200 में रह कभी ज्यादा भी हो
1: सकता
0: 350 में लगते हमें 200 रुपये
1: धीरे धीरे करके।
0: फिर हम उनके ससुर बोले लादा हम दे दे रू करें तो मैं 2-4 पहली नाच खा भी के लाओ गज का करा। फिर उनके ससुर दे देते 2-4 पहली नाच हम पानी लगे आते हैं तो फिर लगे हुए इनके तो पानी तो अरे भी अब छोड़ दो हमने बना तो नहीं लगे।
1: अच्छा
0: जब से हम गाड़ी कर गए से पानी भर उनको बोला खाए भी देखी परेशानी से जैसा नहीं आते जो जैसे सकते खाओ नहीं करते तो कूद रहे।
1: सही बात है
0: ना तो कूद ना कर।
1: और आज आपको कितनी मिल जाती मतलब आपको घर चला भी लाख मिल जाता आपको?
0: आप 5,000 हो गए ये 2-3 महीना हमने 2,500 3,500 हमारा फिर 1,500
1: धीरे धीरे बढ़ते चले गए आपके पैसा। बहुत बढ़िया आपके पूरे जीवन को अनुभव आ रहा हो मतलब आप अपनी जिंदगी से आपने का सीखो?
0: हम जो खेती किसानी सीखी और जाओ हमारी कल नहीं कर सकता
1: नहीं। आपको का लगा कि पढ़ाई लिखाई अपने जीवन में ज्यादा महत्व दे
0: पहले तो महत्व जो देखो आप सोच रहे हैं आदमी के जब पढ़ लिख लेते तो और अच्छे हो जाते लेकिन पैसे ही नहीं है तो का पढ़ा लिख रहे।
1: लेकिन आप सोचती हो ना कि पढ़ाई
0: अब जैसा पेट को तो रोटी नहीं है पढ़ दे की का सोच रहे बताओ।
1: सही बात है लेकिन सरकारी स्कूल में बहुत सुविधाएं मिल रही है आजकल फ्री किताबें मिल रही पहले नहीं मिल रही लेकिन अब मिल रही तो फ्री के नाम पढ़ाए चाहिए है ना। बिल्कुल तो अम्मा और का क्या वो चाहती हूँ आप अपनी तरफ से
0: और का
1: मतलब हमारे समुदाय के लाने जो आप खुद सुन रहे हैं इस समय तो उनके लाने का संदेश दे वो चाहती अपनी लड़की को पढ़ाए चाहिए
0: अपनी को सब हमारे सब आठ हाथ करी ना तो नाती पढ़े
1: तो पढ़ाना चाहिए। हाँ
0: सब पढ़ा रहे कोई लड़ रहा हो कोई बुआ बड़ी मेरी हो गई सब साथ साथ आठ आठ में करके छोड़ दो बुआ पढ़ दो ना तो धन की
1: बहुत बढ़िया
0: आप पढ़ दो अब दो नाती पढ़ रहे हैं।
1: चलो बढ़िया अम्मा आपने बहुत अच्छी बातें बताई अपने पूरे जीवन के बारे में बताई के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद
0: धन्यवाद
1: नमस्कार
0: नमस्कार।

अपना रेडियो अपनी बात है। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे दोस्तों एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा। और देखो साथी हरो, अभी अपन हो रहे सुन रहे थे लक्ष्मी जी को जो कि राधापुर की रहने वाली हैंगी। इनसे अपन हो रहे ने जाना है वो कि इनके जीवन की का कहानी हती, कैसो इनको जीवन रहो है वो, और साथ ही में इनने अपनी पढ़ाई लिखाई के बारे में इनको बचपन कैसो बीतो है वो, बचपन में जी खेल कौन कौन से खेला था थी, ये सब बातें अपन और इन्हें जानी हैंगी। और साथ में इन्हें बताई हैगी कि 20 साल से ये आंगनबाड़ी में एक कार्यकर्ता के तौर पे काम कर रही हैंगी। तो देखो पढ़ाई पहले इनने भले ही कम करी लेकिन नौकरी इनकी लग गई, जब बहुत अच्छी बात हैगी, क्योंकि पहले तनक सी पढ़ाई को भी बहुत बड़ा महत्व हो, तो पहले नौकरी जो है आदमी इनको ढूंढती, लेकिन आज के समय में अपन और देखें तो आदमी नौकरी इनके लाने परेशान हो रहे, इतने उतने भटक रहेंगे। तो ऐसे अपने कहवे को जो ही मतलब है वो कि पढ़ाई अपने जीवन में बहुत ज्यादा महत्व रखत हैगी, पढ़ाई को सबसे पहलो महत्व दो। जैसे अपन और सोचने लगा थेंगे कि बिटिया बड़ी हो गई तो बस उनकी शादी कर दो, या फिर बड़े हो गए सिर्फ उनको चौका वासन करने आ है वो, घर को काम ही देखने आ है वो, लेकिन जब सोच अपनी जो हैगी वह तनक अपन को बदलने आए, पहले अपनी अपनी मोड़ियन को पढ़ाई जरूर करवावे, ज्यादा नहीं तो आप इंटर तक तो पढ़ाई उनकी जरूरी करवाने हैगी। ताकि आज देखो लक्ष्मी जी सोचती हैगी कि अगर उन्हें तनक और पढ़ाई करी होती तो भी हो सकता है कि कार्यकर्ता की जगह और अच्छी कोनो पोस्ट पे होती और उन्हें अच्छी एक तनख्वाह मिल रही होती, जिसकी वजह से उन्हें अपने परिवार चलावे में कोनो भी दिक्कत ना आती, को सहारा उन्हें नहीं लेना पड़ता। तो देखो अब अपनो समय होते वो आज के कार्यक्रम स्त्री एक कहानी से जावे को, लेकिन साथियों जो कार्यक्रम आप सबको कैसो लगो है वो, इमें आपकी का राय सुझाव हैगी, या फिर आपके भी गाँव में या आपके आस पास कोनो ऐसे लोग हैंगे या फिर ऐसी कोनो स्त्री हैगी जिनकी कहानी रेडियो के माध्यम से आप उन्हें सुनबो चाहतेंगे, तो ई के लाने हमें जरूर बतावे हमारे पते पे पत्र लिख के या फिर फोन के माध्यम से। पते के लाने हमारो पतो है गो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तगेला के पास ओरछा। तो देखो कितनी अच्छी सुविधा हो गई है, काहे कि आज के दौर में अपन देखें तो अपने सब साथी व्हाट्सएप को खूब एकदम से उपयोग कर रहे हैंगे और व्हाट्सएप ही चलाते हैंगे, तो अपन मैसेज भी एक कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से आप रिकॉर्ड करके भी कछु भी हमें भेज सकते हैं अपने कार्यक्रम के बारे में राय सुझाव। तो देखो अब अपनो समय होते गो आज के कार्यक्रम से जावे को, तो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जावे की इजाजत, अपनी फिर ये मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक आप ऐसे ही सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार और चलत चलत सुनो आप ये गीत खो जिखो गा रहे हैंगे दिनेश सोनी।

0: नमस्कार साथियों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। जैसा कि मित्रों, हमारे किसान साथियों, आपको पता है कि खेत खलिहान कार्यक्रम में हम खेती किसानी से जुड़ी बातचीत हम लेकर आते हैं। साथ साथ में अभी आपको पता होगा कि मौसम में परिवर्तन हुआ है। कुछ दिन पहले बरसात भी हुई थी, कई कई ओलावृष्टि भी हुई थी, जिससे काफी हमारे किसान साथियों को नुकसान हुआ था। और समय समय पर हम विषय विशेषज्ञ के माध्यम से आप लोगों तक वो जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहती है। अभी हाल में आपको पता होगा कि सब्जियों की फसल में जो कीट व्याधियां का प्रकोप देखने को और सुनने को जो मिल रहा है, उससे बचाव किस तरीके से हम कर सकते हैं, ये एक सवाल आया हुआ था हमारे किसान साथी का, जो ज्ञान बैठा के हमारे विजय जी को पूछा हुआ था। और विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सैंसी हाशमी जी हमारे साथ बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
1: जी नमस्ते किसान भैया, आज हम जो है कटिबंधीय फसलों में लगने वाले जो प्रमुख कवकजनक रोग है उन पर चर्चा करेंगे, तो उनके बारे में, उनकी पहचान और निवारण के बारे में किसानों को बताएंगे कि वो रोग हम कैसे पहचान सकते हैं और उनसे अपने फसलों की सुरक्षा कैसे कर सकते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो कद्दू वर्गीय फसलों में जो प्रमुख रोग लगते हैं उनमें मधु रोमिलासिका, चूर्णिलासिका तथा उपता, यह जिसे मिलानी रोग कहते हैं, उनके बारे में हम बताएंगे। तो पहले हम एक एक रोग के बारे में चर्चा करेंगे और उस रोग के लक्षण, यानी कि उस रोग को कैसे पहचाना जा सकता है और उसका निवारण कैसे किया जा सकता है, इस बारे में हम बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कद्दू वर्गीय फसलों में लगने वाले रोग मधु रोमिलासिका की। तो यह रोग जो है भारत के उत्तरी भागों में यह रोग अधिक देखने को मिलता है। और जैसा कि अभी हमने मौसम को देखा ही है कि वर्षा ऋतु हो रही है और फिर धूप निकल रही है, तो इस तरह का जो मौसम होता है, इस तरह के मौसम में ही ये रोग जो है वो अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि वर्षा ऋतु के बाद ही इस रोग के द्वारा नुकसान ज्यादा पहुंचता है। और रोग का संक्रमण जो होता है वो इसमें बुआई के एक माह बाद ही हो जाता है, और इसके द्वारा जो नुकसान होता है उपज में, उपज जो होती है वो नगण्य हो जाती है और 30 से 70% तक इसमें नुकसान देखने को मिलता है। और मधु रोमिलासिका का विशेषकर प्रभाव वैसे तो कद्दू वर्गीय फसलों में सभी फसलों पर देखने को मिलता है, लेकिन विशेष प्रभाव जो होता है वो खरबूजा और खीरे पर देखने को मिलता है। तो इस रोग के कारण खरबूजे में जो होती है वो मिठास नहीं रह जाती है।
0: मैं एक चीज आपसे जानना चाहेंगे कि इस मौसम, चूंकि गर्मी का मौसम चल रहा है और इस गर्मी के मौसम में खास तौर पर अगर सब्जियों की अगर बात करें तो बहुत महंगाई पकड़ी हुई है सब्जियां, क्योंकि बहुत सारे किसान साथियों की इस मौसम में बहुत नुकसान हुआ है। आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरीके से वो अपनी फसलों की तैयारी करें, कौन कौन सी फसलें, मतलब सब्जियां वो अपनी

0: पानी की अगर बात करें तो पानी की किल्लत अपनी बुंदेलखंड क्षेत्र में बनी ही रहती है, तो ऐसे क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कौन सी सब्जियां इसमें लगाया जाए जिसमें कम पानी से उत्पादन उनका अच्छा हो।
1: साथियों, इस सवाल का जवाब सुनने से पहले यहाँ पर एक छोटा सा विराम लेते हैं और मनोरंजन करते हैं एक अच्छे से गीत के साथ। इसके बाद इस सवाल का हम जवाब हमारी जो विषय विशेषज्ञ है मैडम, उनसे हम लेंगे। तो आइए सुनते हैं यहाँ पर इस प्यारे से गीत को।

0: जहाँ तक खाने की बात है तो देखिए, इसमें जो ये वाली सब्जियां हैं कद्दू वर्गीय फसलों में, आपका तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, इनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है। तो
1: जी भाई,
0: इनकी तो हम अप्रिशिएट करें कि हम जो है वो लौकी, कद्दू, तुरई, इस तरह की और करेला, इस तरह की सब्जियों को लगाएं,
1: बिल्कुल भाई,
0: शेप बनाएं।
1: जी मैम। और दूसरी अगर बात करें मैम, टमाटर अगर देखा जाए तो यहाँ पर टमाटर का उत्पादन ठीक ठाक होता था, लेकिन कुछ
0: जी
1: दिनों से हम ये देख रहे हैं कि टमाटर का उत्पादन अपने क्षेत्र में कम पैदावार होता है। तो क्या कारण हो रहा है कि ये सब्जियों में गिरावट देखने को मिल रही है?
0: जैसा कि हम लोगों ने, हमारे यहाँ भी यूनिवर्सिटी का एक फार्म है तो वहाँ पर बच्चे टमाटर लगाते हैं, तो मैंने ये प्रायोगिक रूप से देखा है। तो वहाँ शुरुआती, जब टमाटर शुरुआत में आता है, मतलब आरंभिक अवस्था होती है, तो उसमें एक रोग लगता है, वो है अगेती झुलसा रोग। और उसके बाद जब टमाटर जो है वो तैयार हो जाता है तो उसमें पछेती झुलसा रोग आ जाता है। तो
1: जी
0: ये दोनों रोग जो होते हैं वो टमाटर की क्वालिटी को तो खराब करते हैं, साथ ही साथ उनकी जो उपज है उसको भी खाली डाल देते हैं। तो
1: जी भाई,
0: इन दोनों रोगों पर अगर नियंत्रण करने की किसान कोशिश करे तो हमारे ख्याल से उपज को बढ़ाया जा सकता है।
1: तो मतलब शुरुआत से ही हमें ध्यान में रखना
0: जी
1: चाहिए इस
0: जी
1: बात को।
0: शुरुआत से, किसान को शुरुआत से अगर ध्यान देगा तो
1: जी
0: उसकी रोग को नियंत्रित करने में लागत भी कम लगेगी, और साथ ही साथ जब वो हर बार ये क्रियाएं करेगा तो उस रोग की तीव्रता को भी कम किया जा सकता है। और इसका एक बेस्ट ऑल्टरनेट ये है, मतलब विकल्प ये है कि किसान जो है रेजिस्टेंस वैरायटी लगाए, और रेजिस्टेंस वैरायटी लगाने के साथ साथ हमेशा हर सीजन में ना एक ही रेजिस्टेंस वैरायटी नहीं लगाए, वैरायटी को बदल बदल के लगाए। क्योंकि क्या होता है, जो रोगजनक होता है,
1: जी
0: जैसे आपने देखा होगा मनुष्यों में जो रोग होते हैं, तो जब वो रोग जो है लगातार आते रहते हैं तो वो प्रबल हो जाते हैं, तो
1: जी
0: डॉक्टर की जो होता है वो दवा को जो है वो परिवर्तित कर देता है, चेंज
1: बिल्कुल
0: कर देता है। तो इसी
1: बिल्कुल
0: तरह से अगर हम रेजिस्टेंस वैरायटी को बदल बदल के लगाएंगे तो जो रोगजनक है, जो उसकी रेजिस्टेंस को जो होता है वो तोड़ देता है, वो तोड़ नहीं पाता है, वो अपने आप को उसके अनुकूल

0: संभाल लेता है ना, जब लगातार एक ही रोग जनक जो होता है उस भूमि में पाया जाता है वही रोग जनक और वही रोग आ रहा है, तो और आप वही जो है वो रेजिस्टेंस वेराइटी लगा रहे हो, तो उसकी जो होती है रेजिस्टेंस को वो तोड़ देता है। तो इसलिए अगर आप उसको बदल बदल भी लगाएंगे ना, तो रोग जनक जो है वो प्रभावी नहीं रहेगा।
1: मतलब इसका ये कारण, मतलब हम तो उस चीज में मतलब जानते नहीं है, आप एक्सपर्ट हैं। जैसे कि हम लोग मिट्टी की अगर चर्चा करें कि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही है, तो इसका प्रभाव क्या सब्जियों पर पड़ रहा है?
0: जी बिल्कुल पड़ रहा है। मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम होने का सबसे बड़ा कारण यही है कि किसान जो है वो बिना सोचे समझे जो है वो रसायनों का प्रयोग कर रहा है। ये रसायन अगर किसी एक खेत में लगातार रसायन का उपयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति तो छोड़ दीजिए, वो मिट्टी ही बंजर हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग बार बार अप्रिशिएट करते हैं किसानों को कि आप जो है वो रसायन का उपयोग ना करें, इसकी जगह इसके जो विकल्प हैं उनकी तरफ जाएं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जिससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति भी बढ़ी रहेगी, और जब खेत बैरन पड़े रहते हैं ना, यानी कि खाली पड़े रहते हैं, तो उस समय जो है अगर ढींचा लगवा दिया जाए खेत
1: जी,
0: में तो उसकी उर्वरा शक्ति जो है वो उसको रिकवर करेगी मिट्टी।
1: मैम एक चीज और आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए बुंदेलखंड क्षेत्र में बरुआ सागर की अगर बात किया जाए, तो यहाँ पर खरबूज और तरबूज की पैदावार बहुत ज्यादा हुआ करती थी, लेकिन आज देखा जाए तो ये 90 मतलब 100 में से 10% ही बचा है कि खरबूज और तरबूज लोग उगाते हैं। तो क्या कारण हुआ कि विलुप्त होने के कगार पर पहुंच गई है ये सब्जियां? मतलब ये
0: अब ये बरुआ सागर का जो टेक्सचर है, मिट्टी का नमूना है, एक तो इसकी जांच करवानी पड़ेगी कि भाई मिट्टी में क्या उत्पादकता में फर्टिलिटी में कमी आई है। दूसरी चीज ये है वहाँ रोग, कुछ ऐसे रोग होंगे जो हर साल कोई रोग अगर कम मात्रा में आता है और किसान ध्यान नहीं देता है तो अगले साल उससे दुगनी मात्रा में आता है, फिर उसके अगले साल उससे ज्यादा मात्रा में आता है। तो हो सकता है वहाँ जो रोग आ रहा हो वो प्रबल हो गया हो जो उसकी पैदावार को कम कर रहा है। और एक नो डाउट अब हमारे यहाँ पानी की कमी तो है ही, क्योंकि खरबूज खरबूज ये वाली फसलों को पानी की ज्यादा आवश्यकता होती है, और अगर पानी की कमी है तो फिर किसान उन फसलों को लगाना भी छोड़ देता है, कम कर देता है या लगाना छोड़ देता है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं सबके।
1: जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, लेकिन हम आपसे एक छोटा सा एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, क्योंकि हमारे दिमाग में कल एक सवाल आया हुआ था। मतलब ये हम जब लाइव कार्यक्रम कर रहे थे तो उस समय एक हमारे श्रोता साथी ने एक सवाल पूछ लिया था, वो सवाल हमारे मन में कल से ही गूंज रहा था, तो हमने सोचा कि आपसे मतलब पूछा जाए वो सवाल को। सवाल ये था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मतलब जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खास तौर पर देखा जाए तो महिलाओं का पर इनका ज्यादा असर देखने को और सुनने को मिलता है। अगर मैं बाल विवाह की इसमें बात करें तो जलवायु परिवर्तन और बाल विवाह इसको अगर जोड़ा जाए, देखा जाए, क्योंकि एक दूसरे से ये मतलब जुड़े रहते हैं, आपका क्या मानना है कि क्या कारण है कि आजकल जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, खासतौर पर महिलाओं की और खासतौर पर जो बाल विवाह देखने को और सुनने को मिलता है, उस बारे में मैम आपका क्या ख्याल है? मैम
0: देखिए, जलवायु परिवर्तन की अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हम लोग खुद हैं, स्वयं हैं, क्योंकि हम लोगों ने ना पर्यावरण को सुरक्षित करने के तो उपाय नहीं किए हैं, लेकिन उसको बिगाड़ने की सारी कसर, कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। हम हर वो काम करते हैं जिससे हमारा पर्यावरण जो होता है वो प्रदूषित होता है।
1: जी मैम,
0: तो इसके लिए तो रिस्पॉन्सिबल हम लोग हैं। और जहां तक बाल विवाह और जलवायु परिवर्तन की बात है, तो उसमें ये जो है ना कि अब मैच्योरिटी लड़कियों में जल्दी हो जाती है,
1: जी मैम,
0: क्योंकि हम लोग जो है हमारा खान पान ऐसा है
1: जी मैम
0: कि हमारे यहाँ जो है लड़कियों में मैच्योरिटी जल्दी हो जाती है। दूसरे हमारे हम जिस परिवेश में रह रहे हैं या जहाँ माहौल जिस माहौल में रह रहे हैं वहाँ शिक्षा की कमी है, क्योंकि जहाँ शिक्षा की कमी है वहीं बाल विवाह होते हैं।
1: बिल्कुल मैम,
0: और जहाँ शिक्षित हैं लोग वो इस चीज को समझते हैं कि बाल विवाह जो है वो एक कुप्रथा है एक तरह से हमारे यहाँ, और इस कुप्रथा को भी फॉलो नहीं करना चाहिए।
1: जी मैम।
0: तो

0: जो है वो अगर लोग शिक्षित हो जाए और हमारे पर्यावरण के प्रति सजग हो जाए तो
1: जी मैम,
0: पर्यावरण भी सुधर जाएगा और साथ ही साथ ये बाल विवाह भी जो है वो भी रुक
1: और
0: जाएंगे।
1: कहीं ना कहीं
0: इसका जो
1: मैम
0: है
1: हमने भी,
0: इसका
1: मैम
0: एक
1: जी
0: जी
1: मैम
0: विकल्प यही है कि शिक्षा,
1: जी बिल्कुल,
0: आप
1: आपने सही
0: शिक्षित
1: बात
0: हो
1: कही
0: और
1: कि
0: दूसरों
1: शिक्षा
0: को
1: एक
0: शिक्षित
1: ऐसा विकल्प है जिसको
0: करें।
1: हमें समझना चाहिए और सोचना चाहिए।
0: जी जी
1: समस्या यहाँ
0: जी
1: पर
0: जब आप
1: मैम ये
0: शिक्षित
1: आती है
0: होंगे,
1: कि
0: जी
1: जी
0: जी अब आप जब आप शिक्षित होंगे तभी आप
1: हाँ
0: पर्यावरण को भी बहुत अच्छे से समझ
1: बिल्कुल
0: पाएंगे
1: मैम,
0: कि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: पर्यावरण को हमें अपने कैसे बचाना है, क्या क्या
1: बिल्कुल
0: हम काम करें, हम वाटर सेविंग
1: जी
0: करें
1: मैम
0: और हम ऐसे जो फैक्ट्रीज वगैरह है वो अपने दूर ले जाकर बस्सी से लगाएं और जंगलों को ना काटें,
1: जी मैम
0: जंगलों को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, तो
1: जी मैम,
0: उसी इन सब चीजों से हमारा पर्यावरण जो है वो सुरक्षित हो सकता है।
1: कहीं ना कहीं मैम ये भी तो हो सकता है, मतलब ये चूंकि हम तो एक्सपर्ट है नहीं, आप उसको भली भांति
0: जी
1: जानती हैं, कहीं ना कहीं मैम जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने ये बताया कि जो जलवायु परिवर्तन हुआ है, मौसम चक्र बदला है, कहीं कहीं बर्बादी मतलब जाना किसानों की नुकसान हुआ है, जिस कारण से वो
0: जी
1: लोग क्या करते हैं, पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और जब पलायन करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हम बच्चियों को वहां पर कहाँ ले जाएंगे, तो वो मजबूर हो जाते हैं कहीं ना कहीं बाल विवाह करने के लिए। तो आपका क्या मानना है मैम इस विषय को लेकर?
0: जी ये बात तो सही है कि मुझे याद है ये 2005 to 2007 की बात है
1: जी मैम
0: कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में ना 2005 से लेकर 2007 तक बिल्कुल बारिश नहीं हुई थी, तो किसान की पूरी खेती जो है वो बहुत ही कम हो गई थी या ना के बराबर हो गई थी। उस समय बहुत सारे किसानों ने, मजदूरों ने जो है वो पलायन कर दिया था दिल्ली की तरफ,
1: जी मैम
0: दिल्ली की तरफ ही आसपास के जो बड़े क्षेत्र है वहां मजदूरी करने के लिए पलायन कर लिया था।
1: जी मैम
0: तो अब उसमें समस्या ये उत्पन्न होती है कि दूसरे शहर में अगर पलायन करने जाता है बंदा तो वो कमाने के लिए जाता है,
1: जी
0: अब वो कमाने के लिए वहां जाएगा तो बड़े शहर का खर्चा भी ज्यादा होता है, तो वो सोचता है कि भाई हम अपनी जिम्मेदारी जो लड़की या शादी करना है वो
1: जी मैम
0: शादी करके और एक जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएंगे, फिर यहाँ का खर्चा भी खत्म हो जाएगा और हम काम जो कमाएंगे वो परिवार को दे जाएंगे। तो
1: जी मैम जी मैम
0: लेकिन ये है कि अगर हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित कर लेते हैं तो
1: जी मैम
0: जलवायु में भी चेंज आएगा। आप देखिए जिस टाइम कोरोना था तो कोई व्हीकल नहीं चल रहे थे, कोई
1: जी मैम
0: भी किसी तरह का आवागमन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से जो वाहनों की वजह से जो पर्यावरण हमारा संदूषित हो रहा था वो एकदम साफ हो गया था, बिल्कुल
1: बिल्कुल मैम जी मैम
0: साफ हो गया था। तो उस समय जो है वो मतलब हवा भी बहुत अच्छी लगती थी, हालांकि हवा खूब मिला नहीं जा रहा था
1: जी मैम
0: लेकिन हवा जो है वो बहुत जो प्रदूषित थी वो भी साफ हो गई थी, दिल्ली में भी जितना प्रदूषण था वो भी सब खत्म हो गया था। तो यही एक रीजन है कि लोग जो है वो जलवायु परिवर्तन की वजह से जो उन पर जो प्रभाव पड़ता है उसकी वजह से वो पलायन कर जाते हैं क्योंकि उनका
1: बिल्कुल
0: खेती वगैरह सब खत्म हो जाता है। तो
1: जी मैम, इसका मैम बस लास्ट इसका सवाल रहेगा हमारा कि इसका समाधान
0: जी
1: मैम क्या कर सकते हैं, क्या हो सकता है इसका रोकने के लिए इसको?
0: इसको रोकने के लिए जैसे शहरी लोग हैं तो शहरी लोग अलग अलग वाहनों से सफर करते हैं, तो बड़े शहरों में तो आजकल ये चल ही रहा है कि आपने सुना होगा कार पूल करते हैं, तो लोग जैसे जिनको एक जगह जाना है वो एक ही वाहन से जाएं, दो चार लोग एक ही वाहन से जाएं, पानी को कम वेस्ट करें,
1: जी मैम
0: जल संरक्षण करें
1: जी मैम
0: और ऐसे उपाय अपनाएं जिससे हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके,
1: जी मैम
0: उसे हम बिल्डअप करें ना कि उसे और बर्बाद
1: मैम आपने समय
0: करें।
1: दिया है, इसके लिए हम शुक्रगुजार हैं आपका, तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहते हैं कि मैम आपने इतने कम समय में बहुत सारी जानकारी हमारे श्रोता साथियों के जो मन में सवाल चल रहे थे उसका मैम आपने समाधान किया है। इसके लिए मैम आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद अदा करना चाहेंगे।
0: धन्यवाद,
1: चलिए थैंक यू मैम,
0: उन्होंने मुझे सुना और उम्मीद है कि वो मेरी बातों को जो है वो अपनाएंगे भी जिससे वो फायदा उठा सके अपना कर। जी धन्यवाद।
1: चलिए थैंक यू। साथियों इसी के साथ हमारा वक्त हो चुका है आज के इस कार्यक्रम खेत कल्याण कार्यक्रम से जाने का। तो कार्यक्रम कैसा लगा हमें जरूर बता सकते हैं हमारे इस नंबर पे, नंबर है हमारा 92-19-20-77-49, इस नंबर पर आप कॉल करके अपने विचारों को रख सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपकी हमारी फिर होगी अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार, सुनते रहे।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप इबीरा अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। और दोस्तों, हम लेके आ गए आप सब जनन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। और साथियों, विधा बुंदेली कार्यक्रम में आज सुने अपन विधा कछियाई गीतन को और इनको आनंद लें। सो दोस्तों, आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। तो दोस्तों, दिन नकृत भाई अपनी कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊ थे और सुनत हैं भोले राम कुशवाहा जी के स्वर में इन कछियाई भजनन को। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में। सो अब आओ सुनत हैं भजन को।

एक डार पे तीन डरे झूला और चीनो सखी अपने दूल्हा। देखो दोस्तों, अपन सब जन ने जो भजन सुनो है, ई भजन में अपन ने सुनो है भुले राम कुशवाहा जी के गाय भाई भजन खो। अब आओ सुनत है फिर से इन्हीं के गाय भाई भजन खो। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

जाब जनार सतावे के मैया मुए जाब जनार सतावे। अब आओ आगे सुनते हैं कि जीवन नैया भूला नाथ हमारे। देखो कितना प्यारा भजन अपन अब आगे सुन बेखो जा रहे हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन के संग में।

मोरी नैया पार लगा दो भोले बाबा लहरी। देखो कितना प्यारा जो भजन सुनो है इसको आनंद लाओ। आप दोस्तों आओ एक क्रम में फिर से सुनते हैं गंगाराम भैया जी के गाय भय सुर में एक कछिया भजन को, कि मथुरा से दूती आई रे सभा के बीच में। आओ सुनते हैं गीत को।

नारी पोतना नारी।

की गतना को जाने पूतना को मारा रे रोबत मारी चटोदाया।

मोहन बैठ कदम की डाली मुरलिया मधुर बजावे रे। देखो भैया, गंगाराम भैया ने बहुत ही अच्छी तरीका से ये गीत को गा के सुनाओ है। अब ये गीत के संगे संगे फिर से सुने थे अपन भैया भोले राम कुशवाहा जी के गायब है गीत को।

अटरिया कैसे चढ़ो लाला अबे उम्र मोरी बारी। देखो कितनो प्यार जो कछिया भजन भैया भोले राम कुशवाहा जी ने गा के सुनाओ है, इमें अपन सब जन ने सुनो है ये, और इको आनंद लो जो गारी की तर्ज में भैया जी ने गाओ है। अब एक के संगे संगे आज के कार्यक्रम से आपके दोस्त माता दिन जी को जाबे को समय हो रहा है, सो अपने दोस्त माता दिन जी को तो दो कार्यक्रम से जाबे की अनुमति, अपनी तपनी फिर हुई मुलाकात एक कार्यक्रम में एक बेरा पे, जब तक के लाने नमस्कार।

0: संभाल जो चाहो जिंदगानी में, कैसे रखें पानी को, कहाँ रखें, क्या उपयोग करें, सुने आप।
1: पानी को लाओ जरा सा तपाओ लगा करके ध्यान, पानी को लाओ जरा सा तपाओ लगा करके ध्यान, उड़ ले करके ढकना।

आखिर में कहे नाथ काशी सुनो हिंदवासी मई है अजून। अगर किसी को देना है उपहार में

अगर आप होती तो आपके आंगन को शोभायमान बनाता, बच्चा आपके आंगन में किलकारियां देता और अपने भाई को राखी बांधती और कहती, राखी बांधती अपने भाई की कलाई को सुशोभित करती।

0: साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का मैं आरजे वर्षा बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और साथियों आप तो जानते ही हैं कि हेलो फरमाइश जो हमारा कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम के अंदर हम आपकी फरमाइश लेते हैं और उस फरमाइश का देखिए जैसे ही हम नाम लेते हैं हमारे मोबाइल की घंटी जो है वो बजने लगती है। तो आइए हम सुनते हैं कि पहला कॉल हमारे बीच में हमारे कौन से साथी का है, आइए जानते हैं। हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार
0: नमस्कार जी नमस्कार। कौन बोल रहे हैं?
1: इस प्रचंड गर्मी में चमचमाती हुई धूप, गर्म वातावरण में ठंडी ठंडी हवाओं और गीतों का आनंद लेने के लिए मैं आपका ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा उत्तर प्रदेश से बुंदेलखंड और बात कर

0: दीदी आप कैसी हैं?
1: मैं बढ़िया हूँ शारदा प्रसाद जी, और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बहुत बढ़िया होंगे। तो शारदा प्रसाद जी, पहले तो ये बताइए कि तापमान के क्या हाल चाल है आपके यहाँ पे वृंदावन में?
0: दीदी प्रचंड गर्मी है, चिलचिलाती हुई धूप है, गर्म गर्म हवाएं चल रही हैं, लू की चपेट में पूरा मथुरा वृंदावन के साथ साथ उत्तर प्रदेश है। और तापमान का जहाँ तक सवाल है, इस वक्त 42 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तापमान चल रहा है और मैक्सिमम जाएगा 44-45 डिग्री सेंटीग्रेड तक।
1: बिल्कुल। तो शारदा प्रसाद जी, अपने जो साथी हैं जो इस वक्त आपको सुन रहे हैं, उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं कि कैसे वो इस बढ़ते हुए तापमान में अपने सेहत का ख्याल रखें? घर से बाहर जब निकलते हैं तो किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए?
0: जी जी बिल्कुल, आपकी बातों से सहमत हूँ कि 11 बजे से लेकर शाम को 4:30-5 बजे तक धूप में न निकले, और अति आवश्यक हो तो निकलने की तो ढीला ढाला कपड़ा पहने, सूती कपड़े के साथ साथ में गमछा सिर पर, टोपी रुमाल टोपी इत्यादि का सेवन करें, पानी खूब पी के निकले और साथ में पानी की बोतल लेके निकले, जिससे कि अगर थोड़ी थोड़ी देर तक प्यास बुझाते रहें, और घर पहुँच कर तुरंत पानी न पिए, क्योंकि शरीर गर्म रहता है, गर्म में थोड़ा सा स्ट्रोक होने का चांस रहता है, इसलिए थोड़ा विश्राम करें। विश्राम करने के पश्चात थोड़ा सा खा लें, कुछ मिठाई है गुड़ है या कुछ अवश्य लीजिए, इसके बाद पानी पिए, जिससे कि आपको हीट स्ट्रोक सन स्ट्रोक का कोई खतरा न हो, लू लगने की चपेट में आए आप।
1: बिल्कुल शारदा प्रसाद जी, आपने एकदम सही जानकारी हमारे श्रोताओं को दी है, और उम्मीद करते हैं हमारे सभी श्रोता साथी इस बात को जरूर समझेंगे, क्योंकि देखिए बिना काम करे हम नहीं रह सकते हैं, घर पे हम एकदम बंद होकर तो नहीं रह सकते हैं, लेकिन जितना कोशिश करें कि आपके जो बाहर वाले काम हैं, घूमने फिरने वाले काम हैं, उन कामों को आप सुबह के टाइम करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, 10 बजे से पहले, और शाम को 5 बजे के बाद से शुरू करें तो बहुत अच्छा होगा ये आपकी सेहत के लिए। और दिन में कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा बाहर ना निकलें, अगर फिर भी आपको जाना पड़ रहा है क्योंकि काम बहुत सारे होते हैं और काम में निकलना भी पड़ता है, तो अगर आप ऐसे में निकल रहे हैं तो जैसा कि हमारे साथी ने बताया कि किस प्रकार से आप सुरक्षा का सामान अपने साथ ले सकते हैं, गमछा तौलिया जो भी है आप उसको साथ में लेकर जाएं, अपने सर को ढक कर जाना है, सिर्फ लेकर जाने से काम नहीं बनेगा, और पानी की बोतल आप साथ में रखें, और कोशिश करिएगा कि एक टाइम जो है आप जो अमिया का पना होता है जिसे हम सब बहुत चाव से खाते हैं, बहुत अच्छा भी लगता है, वो ऐसे में आपको ज़्यादा फायदा देगा, तो उसका सेवन ज़रूर करें।
0: जी जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कच्चे आम का पना है और सत्तू का शरबत है, बेल का शरबत है, नींबू की शिकंजी है, जो घर में बने शीतल पेय पदार्थ है उसका सेवन करें, बाजार का जो मिलने वाला ठंडा पेय पदार्थ है उसको थोड़ा परहेज करें ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा केमिकल्स और शुगर की मात्रा होती है, कृत्रिम रंग भी मिलाए जाते हैं उनमें कलर लाने के लिए, इसलिए थोड़ा सा दूर रहें, उनसे परहेज करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: बिल्कुल शारदा प्रसाद जी, तो बताइए अब देर नहीं करते हैं क्योंकि और भी साथी हमारे लाइन पर हैं, तो
0: जी जी क्या है कि गर्मी का महीना है और ऐसे में कहीं ठंडी ठंडी छांव मिल जाती है, उसमें बैठकर आनंद पूर्वक थोड़ा सा विश्राम करने में जो मजा आता है, लेकिन कभी कभी ये शीतल ठंडी छांव कोई सी परेशानी का कारण बन जाती है, जैसा कि इस गीत में बताया गया है, बस गए पापी बिछुआ, चढ़ गए पापी बिछुआ, किनका नाम रानी, किनका नाम
1: मधुमती
0: जी, लता मंगेशकर और मन्ना डे साहब ने गीत बुलाया है, चढ़ गए पापी बिछुआ,
1: चढ़ गया साथी बिछुआ,
0: चढ़ गए पापी बिछुआ,
1: पाती बिछुआ
0: जी
1: जी बिल्कुल,
0: फिल्म का नाम मधुमती, लता जी मन्ना डे साहब के साथ में।
1: शारदा प्रसाद जी, अगर आप किसी और गीत की फरमाइश करेंगे तो हम सुना पाएंगे, क्योंकि किसी कारणवश ये प्लेलिस्ट में हमारी नहीं आ रहा है।
0: अच्छा, तो आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, फिल्म का नाम है 20 साल बाद, हेमंत कुमार साहब की आवाज है, जरा नजरों से कह दो निशाना चूक न जाए,
1: जरा नजरों से कह दो
0: निशाना चूक न जाए।
1: बिल्कुल, तो कहना किससे है ये?
0: जी जी बिल्कुल, ये तो गर्मी का महीना है ना, गर्म वातावरण से थोड़ा बच के रहें,
1: तो सूरज
0: और यदि निशाना चूक जाए तो आप लोगों की चपेट में आ जाएंगे।
1: बिल्कुल, तो सूरज भगवान जी से इस वक्त हम सबकी यही विनती है कि बहुत ज्यादा आप गर्म ना हो, हम सबको भी रहने दें इस धरती पे, तो

0: चलते हैं हम अपने गीत की ओर, क्योंकि बहुत सारी बातचीत आपसे हो गई है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छी तरकीब जो आपने बताई है, जो आम का पना और बेल का पना और तमाम तरह की चीज़ें आपने बताई हैं, सत्तू के बारे में आपने बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हमसे जरूर जुड़िएगा हर कार्यक्रम में, और सुनते रहिए रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपना रेडियो अपनी बातें। नमस्कार
1: जी, हृदय धन्यवाद, आभार, आपका दिन मंगलमय हो, नमस्कार।

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और अभी अभी हमारे एक साथी का फ़ोन आ रहा था, लेकिन जैसे ही हमने फ़ोन उठाया तो फ़ोन कट गया है। कोई बात नहीं, आप दोबारा से हमें कॉल कर सकते हैं। और देखिए, दोबारा से हमने जैसे ही बोला तो हमारे साथी का कॉल आ भी गया है। हेलो, नमस्कार।
1: हेलो, नमस्कार
0: नमस्कार जी, कौन बोल रहे हैं?
1: मोहम्मद हरुण बोल रहे हैं।
0: मोहम्मद हरुण
1: जी
0: जी बताइए, हरुण जी क्या हाल चाल है आपके?
1: बस हाल चाल ठीक ठाक है।
0: धूप से बचने के लिए क्या तरीके अपना रहे हैं आप?
1: बस यानी आराम फरमा रहा हूँ, कूलर पंखे से बैठ गए हैं, क्या करें, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा है आपने। तो बताइए, आज का क्या फरमाइश है आपकी, क्या सुनेंगे आप?
1: गुरु नंबर वन का सुना देना।
0: कौन सा गीत?
1: गेट की दोपहरी में गर्मी लगा है।
0: अरे सही बोला आपने एकदम सही पकड़े हैं आप, क्योंकि बहुत सारे अपन इंस्टाग्राम पे और तमाम तरह की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखते रहते हैं, आजकल यही सब गाने बहुत फेमस होते हैं। और कई लोग लिखते भी हैं कि जेठ का महीना है तो घूंघट तो करना ही पड़ेगा ना तो गाना भी आपने एकदम सही चुना है चलिए, और कुछ कहना चाहते हैं?
1: बस बस जिला विदिशा मध्य प्रदेश से बोल रहे तो मोहम्मद आलम अकबरपुर से।
0: जी बिल्कुल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। नमस्कार।

0: साथियों, पहले तो हम क्षमा चाहेंगे कि हम आपको गाना जो है वो बहुत कम ही सुना पा रहे हैं, क्योंकि उसके पीछे भी एक कारण है। अगर हम बहुत अधिक गाना सुनाते हैं तो हमारे बाकी के जो साथी हैं वो कहीं ना कहीं इंतज़ार करते रहेंगे और फिर मायूस ना हो जाएं, इसलिए हम थोड़ा थोड़ा सा गीत सुना रहे हैं और सबकी फरमाइश ले रहे हैं। हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार जी।
0: अरे नमस्कार ठाकुर जी, नमस्कार, कैसे हैं?
1: बहुत बढ़िया है, खेत में बैठे हैं, आम के नीचे आम खा रहे हैं, नमक के साथ कैरी खा रहे हैं खेत में बैठ के।
0: क्या बात है, आप कैरी अकेले अकेले खा रहे हैं?
1: आज क्या करेंगे मैडम जी, अभी अकेले ही बैठे हैं, हमारे भैंसा है तो गाने सुन रहे हैं, अभी अभी ट्यून किया है मोबाइल।
0: तो आपकी भैंसों के साथ आप सुन रहे हैं गाने?
1: हाँ जी, हमारे भैंसा है उधर छाव को बैठे हैं, हम भी बैठे हैं इधर कोने में बैठे, एक तरफ से ये काम गिरी है खा रहे नमक के साथ।
0: अरे वाह, क्या बात है, तब तो आपको लपट बिल्कुल लग ही नहीं सकती है। मौसम कैसा है आपके यहाँ पे ठाकुर जी?
1: बहुत बहुत धूप है मैडम जी, बहुत कड़ाक से 40-42 के आसपास, ऊपर भी हो सकती है।
0: अच्छा।

0: 40 के ऊपर है, तो यहाँ भी ऐसे ही है टेम्परेचर।
1: बहुत
0: और
1: टेम्परेचर है, बहुत बहुत है ऐसे। अब आया लगभग हमारे भैंसा अभी 12 बजे भी है, आम के अपने आप आ गए नीचे, उसे लाने की जरूरत नहीं है छाव को।
0: अरे वाह। तो ठाकुर जी, पहली बात तो ये है कि आपने अपना परिचय अभी तक नहीं दिया
1: कोई
0: है।
1: बात नहीं जी, मैं महाराष्ट्र हिंगोली जिला कलमदुरी तालुका मोहन सिंह ठाकुर बात कर रहे मैडम जी।
0: जी मोहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद अपना परिचय देने के लिए। और
1: थैंक
0: आप थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि ऐप पर आवाज ठीक आ रही है, आप सुन पा रहे हैं महाराष्ट्र?
1: आज हाँ आवाज आ रही है, साफ आ रही है, इधर को इधर आ रही है।
0: बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है कि आप हमें सुन पा रहे हैं। तो बताइए ठाकुर
1: हाँ,
0: जी, आज क्या फरमाइश आप करने वाले हैं?
1: महेंद्र कपूर की आवाज है और मराठी मराठी गाना है दादा कोंडके के ऊपर चित्रगीत हुआ है, सुनाएंगे या नहीं?
0: आप अगर बोल देंगे और हमें समझ में आ जाएगा तो हम जरूर सुना देंगे।
1: और गीत है, मैं देखो गाना बोल के दिखाता हूँ, सुनाता हूँ, दिखाता हूँ नहीं, सुनाता हूँ।
0: हाँ सुनाइए।
1: अगर मिला तो कोई बात नहीं, अगर नहीं मिला तो हिंदी तुम्हारे हिसाब से डाल दो फिर।
0: बिल्कुल
1: क्या है,
0: बिल्कुल बिल्कुल, आप सुनाइए पहले गाना।
1: महेंद्र कपूर की आवाज है और दादा उनके चित्र गीत हुआ है और गीत के बोले है, तो ए पूरी जरा सा लाउसिल का तुझा अंग माजा अंगारा। देखिए गाने शुरुआत में बीच में की लाइन बोल रहा हूँ, वो आएगा उसमें, वो है दो अक्षर उसमें तुम लिख के डाले तो आ जाएगा।
0: क्या क्या बोला आपने, फिर से बोलेंगे? ये तुड़ी
1: ए पूरी तुझा अंग माजा अंगारा, बोले तो ये गीत है, वैसे उस तरह का नहीं है, गीत अच्छा है लेकिन गीत के बोल है।
0: नहीं ठाकुर जी, हम क्षमा जाएंगे, हम नहीं सुना पाएंगे, आप हिंदी गाना कोई बता दीजिए।
1: बड़ा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, महेंद्र कपूर की आवाज है और सुनील दत्त पे चित्र गीत हुआ है और गीत के हमराज है फिल्म तुम मगर साथ देने का वादा करो।
0: तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यही
1: हमराज फिल्म है, सुनील दत्त पे चित्र गीत हुआ है, महेंद्र कपूर की आवाज है। तुम मगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मुस्कुराता रहूं।
0: क्या बात है, क्या बात है ठाकुर जी, आप वैसे भी बहुत अच्छा मुस्कुराते रहते हैं। हमें अच्छा लगता है कि आप महाराष्ट्र में अपने खेतों के बीच में बैठकर अपनी भैंसों के साथ हमारा रेडियो सुनते हैं, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है।
1: थैंक यू, धन्यवाद मैडम जी, ये तो हमारा दरोज का ही है। जब जब कार्यक्रम कब तुम्हारा चालू होता है, सोमवार बुधवार यही कार्यक्रम सुन लेते हैं, बीच में जब चलता है तो सुन लेते हैं मैडम जी, जब हिंदी गाने लगते हैं तो सुनते हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर जी हमसे।
1: थैंक यू,
0: आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।
1: थैंक यू, धन्यवाद मैडम जी।

बताऊं, हमारे साथ इंस्टाग्राम पर भी कुछ साथी जुड़े हुए हैं और उनकी फरमाइश है, अभिषेक जी हैं जो कि इस वक्त अहमदाबाद में है, और अभिषेक जी की फरमाइश है ओ मेरे दिल के चैन, ये वाला गीत इनको सुनना है। तो अभिषेक जी आपके लिए ये गीत हमारी तरफ से, और ऐसे ही आप हमसे जुड़े रहें और सुनते रहें। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। हमारे साथ हमारे अगले साथी जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार।
1: नमस्ते आपको सभी सुनने वालों को, राजेश यादव बस स्टैंड।

0: बात है सुविधा
1: जी। राजेश भैया बहुत ही बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो पहले तो राजेश भैया हमें जो बताओ कि मौसम के क्या हाल चाल है, क्योंकि इतने तो बहुत ज्यादा खराब हाल चाल है। अरे कुछ मत पूछो। तो इससे बचाव के तरीका क्या है, अपन कैसे थोड़ा सा बचाव कर सका? देखो काम तो अपन को करना ही है घर से बाहर, जो अपन दूसरन से कहेंगे घर से बाहर कम निकलो, लेकिन बाहर तो निकलने पड़े, काम तो करने ही पड़े, है ना?
0: यही कपड़ा है, तौलिया से कान बांध देना, पानी पिया था टाइम टाइम पे।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: खाली पेट ना जाने वाला।
1: बिल्कुल जा, बात आपने एकदम सही कही हैगी कि घर से जब भी आप निकला थेंगे अपने काम के लाने, तो खाली पेट बिल्कुल ना रहे। काहे कि ऐसो कल लगा थे अपने बूढ़े पुराने लोग के खाली पेट अगर घर से निकलो तो लपट बहुत जल्दी लग जाता है ना,
0: लग
1: जाता ही
0: बिल्कुल सही कह।
1: तो चलो अच्छी बात है, अपन खाली पेट नहीं
0: निकलते।
1: नहीं सुबह अच्छी बात है कि अपन को इस मौसम में पानी ज्यादा पीने, रोटी कम ही खाना है। तो बताओ राजेश भैया का सुनबो चाहो आज?
0: महीना जेठ को लगो तो जेठ को सुनवा दो, चाहे ये राजेश से भाई के लोग भी सुनवा दो जन सुनवा।
1: तो कौन सा जेठ की दोपहरी में?
0: हाँ जो फिल्म गाना नहीं सुन मैं बंदे लोग थे ना, बिल मालो सैया सही है, तो सही है जेठ
1: बिल मालो सैया। बिमला जी की आवाज में?
0: हाँ बिमला देवी गुप्ता। अरे
1: बिमला देवी
0: आगे आगे जाना जाती
1: की खो पतो बता रहे
0: बताया चाहिए।
1: आपने जो गीत के बोल बताए हैं फिर से बता सकते हैं? बिलमालो सैया
0: सही है, बतरिया
1: भरिया
0: कई बार आपने बजाओगी
1: बजाओ है हमने
0: लखनलाल वाला।
1: मिल गया राजेश भैया, आपकी पसंद को गाना हमें मिल
0: गया। तो नहीं
1: आवाज में मिल गया जो आपने बताई है। और सब बढ़िया?
0: बढ़िया सब ठीक ठाक।
1: चलो तो सुना थे आपकी पसंद को जो गीत
0: जी।
1: हाँ बताओ।
0: 6 मई खाम आए थे, कोहरो पड़ो दो, आप यहाँ पढ़ो ना पढ़ो।
1: 6 मई को कोहरो पड़ो दो?
0: हाँ कोहरो आ दो तो वो सती थी गाड़ी, मतलब मोटरसाइकिल बाहर खड़ी थी उसी में रह गई।
1: अरे
0: 6 मई मतलब कोहरो पड़ो दो, मतलब
1: आप तो राजेश भैया यही को तो क्लाइमेट चेंज करता है, जो तो जलवायु परिवर्तन।
0: हाँ यही जलवायु परिवर्तन
1: है ना, जब इतनी लाखन करोड़न की संख्या में पेड़न को काटो जो है तो कछु ना कछु तो हुई है नुकसान। इतनो घाम पड़ रहा हो, इतनी दोपहरिया लग रही बताओ, और इतने कोहरो पड़ रहा हो आप कह रहे।
0: पेड़ तो ठीक है बहन, मतलब ऐसा जी की पेड़ काट दे, लेकिन आदमी अति कर रहा है जन।
1: हाँ।
0: चीजन से अपना भोजन पेट मतलब अन्न अपना है, फिर भी जीव जंतु हमारे खाए आदमी, गलत बात है।
1: बिल्कुल सही बात है,
0: क्या खा रहा अपना है, मतलब जीव जंतु है सबको जीने को क्या है, सब जीवन दे।
1: बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कही, लेकिन लोग नहीं मानते मन की देखो कतरा।
0: आपने निजी स्वाद के लाने बताओ या निजी के स्वाद के लाने दूसरे की हत्या कर
1: रहा, अपनी भूख मिटावी के लाने कौन उन निर्दयी प्राणी की हत्या कर रहे फिर खा रहे उसको।
0: आपके पान लगाव की वजह से मसाले में दम बहुत ना खाना है, आप लोग तो बना खाना है तो पत्थर की बटर ये कान लगाव में डाल दो सब्जी मसाले में
1: तो बहुत अच्छी बनती है। और हमने राजेश भैया जी खाई भी है बचपन में, तो बहुत पत्थर ले आते, बहुत भी अलग ही टाइप के पत्थर होते हैं, उन्हें बढ़िया धो के
0: नदिया में घोल हो जाते हैं
1: वे वाले, और फिर उन्हें सब्जी की तरह आलू की सब्जी जैसे बनती है वैसे ही बना के जब खाते हैं ना तो बहुत अच्छी स्वादिष्ट होती
0: है। चटनी में बहुत मजा है, आनंद है जी, लेकिन दूसरे को जीवन काट के खा रहे।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो राजेश भैया अब बातचीत अपनी बिलात हो गई।

सोचो किसान भैयन की हालत कैसी होती है, चाहे उसे चाहे आगी बरसे, चाहे पानी बरसे, चाहे जाड़े हो, कोनो भी मौसम हो, उन्हें तो अपनों काम करने हैं। तो कह रही

0: है राजेश भैया की पसंद को जो गीत चल रहा हो, तो बहुत बढ़िया लोकगीत है, तो बिमला जी की आवाज़ में है तो लोकगीत। तो अपने अगले साथी भी अपने संगे जुड़ चुके होंगे, अब आप उनसे भी बात कर रख लेंगे। हेलो, नमस्कार।
1: नमस्कार
0: नमस्कार नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: जी,
0: जी ब्रजेश जी, कैसे हैं?
1: कैसे
0: हम बढ़िया हैं, आप कैसे हैं?
1: आप? बस लगे हुए हैं कान
0: जी बिल्कुल। तो कैसा लग रहा
1: में, अभी
0: प्रोग्राम?
1: राजेश जी से बात हो रही है।
0: हाँ, बातें तो अच्छी हो जाती है जब अपने बुंदेलखंड के लोग फोन कर रहे होंगे, तो बातें अच्छी हो जाती है।
1: बिल्कुल।
0: तो आपके पीछे जो बैकग्राउंड में आवाजें आ रही है ना, थोड़ी सी कम कर दो, इसे हमें थोड़ी सी दिक्कत हो रही कान में, हमें वही आवाजें आ रही।
1: कौन सी आवाज आ रही है?
0: आप शायद स्पीकर खोलें या फिर दूसरे ऐसे सुन रहे हैं।
1: नहीं, हम तो अकेले ही बैठे हैं, क्या कोई नहीं है?
0: चलो तो बताओ फिर।
1: बस रोड के किनारे काम कर रहे हैं।
0: अच्छा, कौन हूँ, बात नहीं है तो बताओ।
1: मकान है रोड के किनारे पे,
0: अच्छा,
1: काम चल रहा है लकड़ी का।
0: बहुत बढ़िया। तो आज तो हमने इंस्टाग्राम भी लाइव किया।
1: आपकी आवाज थोड़ी स्लो आ रही है।
0: आवाज स्लो नहीं से आ रही, हम कह रहे थे कि आपके पीछे बैकग्राउंड में हमारी आवाज आ रही।
1: सब बैकग्राउंड में तो रोड से बाहर निकलते हैं उनकी आवाज आती है।
0: चलो कोनो बात नहीं, हमने आवाज से बढ़ा दी है। आप गीत के बोल बता दो।
1: गीत है, इनका नाम है दुल्हन वही जो पिया मन भाए।
0: कौन सा?
1: दुल्हन वही जो पिया मन भाए। गीत है, ले तो आए हो मैं सपनों के गाँव।
0: ले तो आए हो मैं सपनों के गाँव।
1: जी,
0: और बताओ ब्रजेन जी, क्या हाल चाल है आपके?
1: और बस गर्मी तेज पड़ रही है तो बड़ी मुश्किल में काम चल रहा है।
0: बात तो सही है आपकी, गर्मी बहुत ज्यादा हैगी, ऐसे में और ज्यादा दिक्कत होती है ना, काम में भी मन नहीं लगता ही।
1: 40 डिग्री से ज्यादा ही तापमान हो रहा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। चलो तो हम सुनेंगे आपकी पसंद को जो गीत।
1: बिल्कुल बिल्कुल, सुनवा दीजिए
0: जी। नमस्कार
1: नमस्कार।

श्रोताओं, अगली फरमाइश हमारे इंस्टाग्राम के साथी हैं एक और राकेश रैकवार जी। तो राकेश रैकवार जी की पसंद को गीत हम सुनावो चाह रहे हैं, क्योंकि बहुत टाइम से उन्होंने फरमाइश कर दी है, तो उनको जो गीत है

0: श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारे अगले श्रोता भी जुड़ चुके हैं। हेलो, नमस्कार।
1: माता बहन जी नमस्ते। बाबूलाल कुशवाहा बोल रहे हैं, मंगलवार जिला यहाँ से, उत्तर प्रदेश से।
0: अरे बाबूलाल भैया नमस्कार, बड़े दिनन में याद करो आपने तो, का बात है, गुस्सा देगा?
1: गुस्सा का छू नहीं है, एकदम गर्मी पड़ रही, सब पंखा भी हवा लग रही, का कहे।
0: वो तो बात सही है कि
1: साधन में इतनी सारे नदी के का बताओ, साधन में बिजी है
0: तो आप साधन में इतने बिजी हो गए कि आप रेडियो को भूल गए, बताओ ऐसा हो
1: गया? आपने काफी दिन से नहीं सुन रहे, कोई भी स्टेशन से नहीं जुड़े हम काफी दिन से।
0: अच्छा अच्छा, चलो तो दोनों बात नहीं, आप तो फ्री हो गए?
1: आप तो फ्री गई है मैं।
0: चलो तो बढ़िया है, बताओ फिर बाबूलाल भैया कौन सा गाना आपको सुनना है
1: आज? वो सुना दो बहन जी, वो जेठ की दोपहर
0: और अब सुनो नहीं है तो
1: अरे हमने नहीं सुन पाओ।
0: चलो तो हम आपको सुनाए दे रहे हैं कि दोबारा से एक बार चला चुके जो गाना
1: जी जी,
0: तो अपना आगे को चलाए दे रहे हैं
1: जी बहन।
0: चलो ठीक है, आप सुनो अपनी पसंद को जो गीत।
1: जी जी बहन जी, नमस्ते।

0: श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। हमारे साथ हमारे अगले श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार।
1: नमस्कार भाई।
0: नमस्कार भाई साहब, कौन बोल रहे हैं?
1: जी मैं मोरेना मध्य प्रदेश से हरबिलास सिंह तोमर बोल रहा हूँ।
0: जी हरबिलास जी, कैसे हैं आप?
1: बहुत अच्छी तरह से धूप का लुत्फ उठा रहे हैं।
0: क्या बात है, आप भी धूप का लुत्फ भी उठाते हैं, ये तो हमें पता ही नहीं था। लोग परेशान है,
1: हर मौसम का लुत्फ उठाना चाहिए, या सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो कोई भी।
0: बिल्कुल बात आपकी सही है और अच्छी बात है कि आप लुत्फ उठा रहे हैं, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ ये लुत्फ उठाते रहिएगा।
1: जी जी बिल्कुल।
0: हाँ
1: तो बाहर जरूरत तो बाहर निकले नहीं, निकले नहीं और निकले तो लिया लपेट के निकले
0: जी।
1: और पानी यदि पीते रहे, प्याज डाल के चले जेब में, आम का पना खाते रहे।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ये चीजों का ध्यान देना चाहिए।
0: बिल्कुल सही कहा है। तो बताइए कौन सी सुनेंगे?
1: गंडार का सुना देना, धूप में निकला ना करो रूप की रानी।
0: धूप में निकला ना करो रूप की रानी।
1: जी।
0: लेकिन रूप की रानी को अगर धूप में ही काम होगा तब क्या करेंगे?
1: अरे बचाव तो करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाए।
0: अब बताइए, रूप की रानी को पानी भी भरना पड़ता है, खेतों में भी जाना पड़ता है, तमाम तरह के घर के काम होते हैं वो भी करना पड़ता है, तो अब खाना तो बन गया।
1: रूप को बचा के करना चाहिए सभी काम।
0: रूप की रानी को धूप में तो निकलना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन हाँ बहुत ज्यादा धूप में बिल्कुल ना निकले धूप की रानी।
1: फिर छतरी लगा के निकलना ठीक है।
0: बिल्कुल। तो ऐसे में जो रूप के राजा हैं उनको ख्याल रखना चाहिए कि उनकी रूप की रानी को कोई नुकसान ना हो इस धूप से।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: ठीक है जी,
1: ठीक है, धन्यवाद
0: जी।

0: साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। हमारे साथ हमारे अगले श्रोता जुड़ चुके हैं। हेलो नमस्कार
1: जी। हेलो नमस्कार। यूपी के बाद झांसी जिला से प्रीतम सिंह यादव बात कर रहे हैं।
0: प्रीतम सिंह जी कैसे हैं प्रीतम भैया?
1: भैया है बस धूप पाकर
0: अच्छा आप भी धूप को लुप्त उठा रहे बहुत बढ़िया प्रीतम
1: भैया।
0: हाँ सही कह रहे हैं। तो बताओ प्रीतम भैया आज के कार्यक्रम में क्या सुनने आपको?
1: आज का गाना है आज मिले हो कल मिलना महबूब में।
0: फिर से बोलेंगे हम थोड़ा सुन नहीं पाए।
1: आज मिले हो कल मिलना हमसे महबूब में।
0: समझ गए ये आज मिलो कल फिर मिलना। कुमार सानू और अलका याग्निक जी की आवाज में है जी बिल्कुल। चलिए प्रीतम जी और कुछ कहना चाहते हैं?
1: गर्मी पड़ रही तो अपना बचाव करें, ज्यादातर प्यास भी ना लगे तो भी पानी पीते रहे और धूप में जब भी निकले तो जो है सर्द कपड़ा वपड़ा डाल के निकले और बेवजह धूप का ना चले।
0: बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और इतनी अच्छी एडवाइस श्रोताओं को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद प्रीतम जी। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार।

बताओ, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और हमारे इंस्टाग्राम साथी का अगला गाना है और उनकी पसंद जो है वो है तुम दिल की धड़कन में रहते हो। तो ये हालांकि शुरुआत में सबसे पहली फरमाइश इंस्टाग्राम के लाइव पर आई हुई थी, लेकिन हम थोड़ी देर बाद ले पा रहे हैं क्योंकि हमारे रेडियो के श्रोता काफ़ी ज़्यादा होते हैं और एक के बाद एक श्रोताओं के फ़ोन आते हैं, इसलिए हम उनका जो गीत है वो थोड़ी देर में चला रहे हैं, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। आप इसी तरह से फरमाइश हमें कर सकते हैं, और अगर आप फ़ोन के माध्यम से हमें फरमाइश करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 9219207749 और अपनी पसंद का गीत सुन सकते हैं। तो आइए सुनते हैं हमारे इंस्टाग्राम साथी की पसंद का ये गीत।

श्रोताओं नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अगली फरमाइश हमारे व्हाट्सएप ग्रुप की है, जिन्होंने लिखा हुआ है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो, ब्लीस डिकेस्ट्रो, आपकी गाने की फरमाइश है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम, वो भी हवस है। और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में ये गीत है, 1974 में जो आई हुई थी। तो जॉन डिकेस्ट्रो जी, आपकी पसंद का ये गीत हमारे रेडियो बुंदेलखंड पर। आप इसी तरह से हमें मैसेज के माध्यम से अपनी फरमाइश करते रहिएगा। आइए सुनते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

श्रोताओं, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो फरमाइश में। और हमारे साथ हमारे रेडियो के साथी हैं, हमारे इंस्टाग्राम के साथी हैं, सबको मिला जुलाकर हम जो आपके बीच में फरमाइशी कार्यक्रम लेकर आए हैं हेलो फरमाइश, इसमें आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और अगली फरमाइश जो हमारी है वो इंस्टाग्राम के साथी हमारे जगदीश केवट जी की है, जो कि पृथ्वीपुर से हैं। और जगदीश जी की पसंद का ये गीत हम रेडियो पर चला रहे हैं, पत्ता पत्ता बूटा बूटा, मूवी का नाम है एक नज़र, जो कि 1972 में आई हुई थी। अमिताभ बच्चन जी हैं इसमें और लता मंगेशकर जी और रफ़ी जी की आवाज़ में ये प्यारा सा गीत है। तो आइए सुनते हैं जगदीश जी की पसंद का ये गीत।

अगली फरमाइश हमारे व्हाट्सएप साथी की है, जो कि विकेश कुमार जी हैं, प्रजापति जी बनगुआ से। और विकेश जी की फरमाइश है कि दीदी हमें एक गाना सुना दीजिए। तो विकेश जी, हम एक ही गाना सुनाते हैं, दो नहीं सुनाते एक साथ। तो आपकी फरमाइश है, आपका जो गाना है वो आप सुनना चाहते हैं, छुप गए सारे नज़ारे, ओ क्या बात हो गई। तो बिल्कुल, हम आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत।

0: नमस्कार
1: नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
0: हेलो।
1: हेलो, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो
0: हाँ,
1: जी, कौन बोल रहे हैं? कहाँ
0: यक्षाराम से, रमेश
1: से?
0: चंद्र शर्मा।
1: जी रमेश जी, स्वागत है कार्यक्रम में। बताइए कौन सा गाना सुनेंगे?
0: धन्यवाद धन्यवाद। देव गाना

0: कहाँ से मिला नंबर?
1: नंबर तो सुनते रहते।
0: हाँ
1: तो क्या है जब?
0: अच्छा सुनते रहते आप रेडियो?
1: है?
0: रेडियो सुना था आप?
1: हाँ बहुत दिनों से सुन रहा है आपका रेडियो।
0: अच्छा बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने फोन नहीं लगाया बहुत दिनों से। लगा लूं करे अब?
1: ठीक है ठीक है
0: ठीक है। तो आप सुनो आपकी पसंद को जो गाना, रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कहीं वो आएगा।
1: आओ आओ आओ। नमस्कार नमस्कार।
0: श्रोताओं आखिरी फरमाइश हैगी जहाँ हम आपको जरूर सुनवा रहे हैं थोड़ी देर बाद। काई के कछु बातें हैं जो आपसे करने हैंगी हमें। तो बातें ये हैंगी कि आप समझ रहे हैंगे, हम भी जान रहे हैंगे, बहुत ऐसी मुसीबत से अपन और गुजर रहे हैंगे। टेम्परेचर की बात कर रहे हैंगे हम के घाम आजकल बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तो ऐसे में अपनों बचाव रखवो अपने लाने बहुत ज़रूरी है वो। कहे कि देखो बिना काम काज करें तो अपनी नहीं चलत हैगी, तो काम तो अपन को करने ही आए है वो। काम करवे के संगे अपन को अपनी सेहत को ख्याल भी रखने है वो। तो कोशिश करवे कि जो बाहर वाले काम होते ही उन कामन को आप 10 बजे या 11 बजे से पहले पहले कर ले हुए तो ज़्यादा सही है वो। धूप में बिल्कुल भी आप काम नहीं करो। हमारी माताएं बहनें जो हैं खासतौर से बेकाई के बहुत ज़्यादा धूप में काम करती हैं, कामकाज उन्हें खेत के भी होते ही, खलिहान के भी होते ही, घर के भी काम होते ही। तो काम आप करो बिल्कुल करो, लेकिन काम के संगे अपनी सेहत को भी आपको ख्याल रखने है वो। पानी पर्याप्त मात्रा में पियत रहे और अपने शरीर में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होने देने हैगी आपको, जो कि आपके लाने ज़रूरी है, हम सबके लाने ज़रूरी है। अगर पानी आप पर्याप्त मात्रा में पियत रहोगे तो आपकी सेहत जो है वह ठीक रहेगी। कोशिश कर भी नींबू पानी को सेवन भी आप करत रहें, और एक टाइम अमिया को अपनो, बेल को अपनो, और सत्तू जी को अपन कहेंगे अपने देसी नुस्खा जो होते हैं सत्तू को आप घूर के पियत रहें, उनको भी आप शरबत बना के पीवे तो बहुत फ़ायदेमंद होते हैं वो ई मौसम में खासतौर से। लेकिन फिर भी अगर हमारे साथी बाहर निकलने हैं, उन्हें कामकाज करने हैं वो, तो कछु सावधानी जैसे गमछा, तौलिया, कैप, चश्मा, इन सब चीज़ों को आप ज़रूर संग में रखो, ताकि जब आप धूप में जा रहेंगे तो इन्हें अच्छी तरह से अपना सर ढक सकें, अपना मुंह ढक सकें, और अपनी आँखन को भी बचाव आप कर पावें। तो काहे कि अपन जो बात कर रहे हैंगे अब 25 तारीख से नौ तपा भी लगवे बारे हैंगे, तो नौ तपन में भी अपन को रहने तो है वो, अपन ऐसा तो है नहीं गया ठीक है तो दूसरी दुनिया में चले जाएं या शहर छोड़ के दूसरे शहर में चले जाएं तो गर्मी थोड़ी सी कम हो जाए, बिल्कुल नहीं। जब नौ तपा लगा थेंगी और अभी भी गर्मी ऐसी लग रही जैसे वाकई में नौ तपा अभी भी चल रहे होंगे, तो जो सब प्रभाव जो अपन को देखने के लाने मिल रहा है वो जो प्रभाव है वो जलवायु परिवर्तन के कारण से, अपन जलवायु परिवर्तन बदल रहा है वो, ये वजह से इतनी भयंकर सर्दी गर्मी और इतनी मौसम अचानक से बदल रहा है वो, जो सब कारण जलवायु परिवर्तन को है वो। तो कोशिश करो कि अपन सुरक्षा के दायरे में रहें, अपन नुकसान के दायरे में बिल्कुल भी ना आवे। तो जो कछु छोटी छोटी सी बातें रहती जो आपके बीच में हमें बतावो ज़रूरी रहते हो, कहके अपने कार्यक्रम को समय इतनी ख़त्म हो रहा है वो हमारी घड़ी में, यानी स्टूडियो की घड़ी में 1 बज गए है वो, और अपने कार्यक्रम को समय जो होते है वो 12 से 1 बजे तक को होते है वो, तो वो समय भी इतनी ख़त्म हो रहा है वो। और जो आखिरी फरमाइश हमारे साथी की हती व हम फरमाइश सुने ज़रूर सुनवा रहेंगे। आप अगले कार्यक्रम में हमसे जुड़ सकते हैंगे सोमवार और बुधवार के दिन जो कार्यक्रम अपने बीच में आउट है वो, सो ही कार्यक्रम में जुड़ भी खिलाने। आप हमारा नंबर नोट कर लो, नंबर है हमारा 9219207749। ये नंबर पे आप हमें फ़ोन करके अपनी फरमाइश रिकॉर्ड करा सकते हैंगे और अपनी पसंदीदा गीत को सुन सकते हैंगे। अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को दो जाबी की अनुमति, हमारी और आपकी फिर हुई मुलाकात अगले कार्यक्रम में। तब तक आप सब जने ऐसे ही सुनत रहे रेडियो बुंदेलखंड 90.4, अपनी रेडियो अपनी बातें, अपनी रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। नमस्कार।

0: खंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोता साथियों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में।
1: और आजीविका कार्यक्रम में हम अपने श्रोता साथियों के लिए ऐसे व्यवसाय के बारे में बताते हैं जो हमारे श्रोता साथी इन व्यवसायों को कर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं।
0: अरे लेकिन हम लोग बताना भूल ही गए हैं कि आपके साथ इस समय मौजूद है आपके अपनी रेडियो दोस्त वर्षा
1: और साथ में है मनीष।
0: और कार्यक्रम आजीविका आप लोग सुन ही रहे हैं और आजीविका कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं अपने आजीविका से जुड़ी हुई बातों को हम लोग करते हैं इस कार्यक्रम में, जैसे कि कोई बैंक की योजना अगर हो या फिर कोई नया व्यवसाय हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं, कुल मिलाकर अपनी पूरी आजीविका से जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम होता है।
1: बिल्कुल, क्योंकि इस कार्यक्रम का हमारा उद्देश्य है कि हमारे श्रोता साथी सबसे ज्यादा इस कार्यक्रम को सुनकर अपने जीवन में परिवर्तन करें, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा फैल गई है इस क्षेत्र में, तो बेरोजगारी को देखते हुए हम अपना स्वयं का व्यवसाय कर सकते हैं और अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
0: बिल्कुल आपने सही कहा है कि व्यवसाय को कर सकते हैं, लेकिन मनीष जी अभी अगर कहा जाए हम लोग सोचेंगे नहीं कि किस तरह से हमें एक नया व्यवसाय करना है, उस तरीके से हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते और अपनी आजीविका को चलाने के लिए कोई ना कोई तरीका तो हमें ढूंढना चाहिए। तो देखिए मनीष जी, अभी सुबह की ही हम अगर बात करें तो सब्जियों की बात जहां तक आती है तो हमें लगता है कि एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है सब्जियों का व्यवसाय।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, क्योंकि हम और आप देखते हैं और इस बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ज्यादा सब्जी उगाई जाती है, तो हमारे मन में कहीं ना कहीं आइडिया ये आया है कि हम किस तरीके से सब्जियों का व्यवसाय करके हम अपनी आजीविका को बढ़ा सकते हैं। क्योंकि देखते हैं कि यदि हम सब्जी तो एक तरफ होती है, यदि हम दूसरे पद्धति से यानी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम सब्जियों को

0: और उसको पैकिंग कर कर हम बढ़िया तरीके से उसको बेचे, तो इसमें दाम जो रहते हैं, जो सब्जियां आती हैं उसकी सब्जी और जो ऑर्गेनिक सब्जियां रहती हैं उनके दामों में काफी फर्क रहता है। तो हम भी ऑर्गेनिक पद्धति से यदि हम खेती कर और सब्जियां उगाकर हम अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं, अपनी आय को बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा है मनीष जी आपने, क्योंकि देखिए हमारे किसान साथी यही सोच रहे होंगे कि क्या हम सब्जी का व्यवसाय नहीं करते हैं या फिर खेती नहीं करते हैं। तो ये सही बात है, आप लोग करते हो, बहुत अच्छे तरीके से करते हो, लेकिन अगर ऑर्गेनिक तरीके से आप अगर सब्जियों का व्यवसाय करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा आप कमा सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑर्गेनिक तरीका क्या होता है, इसके बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलेगी। तो साथियों ये जो कार्यक्रम है वो हम आपके लिए इसीलिए लेकर आते हैं ताकि आपको नई नई चीजों से अवगत कराया जाए और नया कार्य आप किस तरह से कर सकते हैं अपने या फिर जीवन शैली कह लीजिए उसको या फिर खेती बाड़ी कह लीजिए उसमें आप किस तरह से एक नया बदलाव कर सकते हैं, ये सारी जानकारी हम इस कार्यक्रम में लेकर आते हैं।
0: बिल्कुल वर्षा, और हम कोशिश करते हैं कि हम उन सारी जानकारियों को आपको उपलब्ध कराएं जो आपके लिए बेहद जरूरी हो, क्योंकि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में यदि हम ये तो आपने कहा ऑर्गेनिक पद्धति से खेती कर व्यवसाय कर सकते हैं, दूसरी अगर तरफ देखा जाए तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से उनके चले हुए कार्य से हम यदि अपने काम को करें या अपने व्यवसाय को करें तो जरूर उन्नति होगी, जरूर उस कार्य में हमें जरूर अच्छा मुनाफा होगा यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से करेंगे तो हम।
1: हाँ जी जी बिल्कुल मनीष जी, हम यही कहने वाले थे कि अब हम बात को अपनी यहीं पर थोड़ा सा विराम देते हैं क्योंकि बहुत बातचीत हो गई है और अब हमारे साथी जो है वो सोच रहे होंगे कि कब हमें इस प्रोग्राम के बारे में सुनाया जाए और आज आप किससे मिलवाने वाले हैं इस विषय में भी बता दीजिए थोड़ा।
0: तो हम चलते वहां पर हम पहुंचे बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में जहां पर शोध होता है, जहां पर पढ़ाया जाता है, किताबों में बताया जाता है कि किस तरीके से हम सब्जियों का व्यवसाय कर सकते हैं, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी होती हैं जो जलवायु परिवर्तन को जलवायु को देखते हुए हम कर सकते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो मिट्टी के भी फर्क पड़ता है कि बुंदेलखंड क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है और किस प्रकार की मिट्टी में हम कौन सी सब्जी उगा सकते हैं। तो यदि हम वैज्ञानिक पद्धति से हम व्यवसाय को करें, सब्जियों का व्यवसाय करें तो हमें जरूर मुनाफा होगा, फायदा होगा। तो हम आपको सीधा हरपाल सिंह जो बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में पदस्थ हैं प्रोफेसर के पद पर, तो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में लोग सब्जियों का व्यवसाय कर अपनी आजीविका को बढ़ा सकता है। तो आइए इनसे बातचीत करते हैं।

0: सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में।
1: सर बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। सर मेरा नाम हरपाल सिंह है, मैं बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में लेक्चरर हूँ डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर में, और मैं पिछले 5 वर्षों से यहाँ पे अपनी सेवा दे रहा हूँ। मैं किसानों की आय बढ़ाने के लिए सबसे आपको ये सबसे पहले ये सुझाव देना चाहता हूँ कि हम लोग बुंदेलखंड के किसान काफी जो है युवा है और काफी नॉलेज है मतलब यहाँ के किसानों को, क्योंकि मैं भी यहाँ पे हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट स्टेशन के बरवा सागर में है, मैं यहाँ पे गया हूँ कई बार किसानों को संबोधित करने, किसान मतलब जो है सब उसमें। तो मतलब मैं ये बताना चाहता हूँ कि किचन गार्डन भी आप कर सकते हैं। किचन गार्डन में क्या होता है कि आप जो है अपने घर के आसपास जो जगह खाली पड़ी रहती है उसमें हम लोग जो है एक घरेलू स्तर पे सब्जी उगा सकते हैं, जिससे हमें जो एक तरीके से हमें फ्रेश सब्जी खाने में मिलती है और बिना केमिकल के हम उन सब्जी उगा लेते हैं। दूसरा ये कि हमें उसमें अलग से कोई टेक्निक लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और अलग से कोई पानी की व्यवस्था नहीं करनी पड़ती। घर से निकलने वाला जो पानी होता है वही इसमें इस्तेमाल हो जाता है, जो किचन से पानी निकलता है
0: जी।
1: और जो है शुद्ध शुद्ध सब्जियां हम जो है उगा सकते हैं
0: जी।
1: और दूसरा इसके साथ ही साथ ये हम क्योंकि बुंदेलखंड की धरती जो है काफी उर्वर है, उपजाऊ है
0: जी,
1: तो यहाँ पे हम सब्जियों की खेती जैसे बैंगन की खेती कर सकते हैं, जैसे पत्ता गोभी की खेती कर सकते हैं। अभी हमने एक एक्सपेरिमेंट किया था यहाँ पे बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में
0: जी,
1: कि हमने एक वो सा ड्रम हेड एक वरायटी है पत्ता गोभी की, उसी से हमारा रिसर्च चल रहा है
0: जी।
1: तो उसपे हमने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत सक्सेसफुल रहा। हमने जो है केमिकल खेती की बजाय हमने ऑर्गेनिक खेती यहाँ पे करने की कोशिश की है और हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है यहाँ पे जो है, क्योंकि किसान का संबंध पशुओं से होता है
0: जी।
1: तो पशुओं का गोबर मूत्र वगैरह सब जो है बल्कि खाद बनता है, खाद से उस खाद को अगर हम सीधा सीधा खेत में ले जाएं और उसमें खाद को मिट्टी

0: मिला दें तो हमारी जमीन उपजाऊ भी होगी और दूसरा जो उत्पादन होगा वो भी बहुत उमदा होगा, बहुत अच्छा होगा। तो हम लोग जो है यहाँ पे जो है सब्जियों की खेती करके, जिसमें विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे बैंगन है, पत्ता गोभी है, फूल गोभी है और प्याज है
1: जी,
0: और लहसुन है
1: जी,
0: इन सब की खेती करके हम लोग मतलब जल्दी लाभ ले सकते हैं
1: जी।
0: क्योंकि जो हम वैसी खेती करते हैं जैसे गेहूं बाजरा अनाज जो खेती करते हैं, इसमें बहुत लंबा समय लगता है, लेकिन सब्जियों में क्या है समय कम लगता है
1: जी,
0: कम मेहनत की आवश्यकता पड़ती है और जल्दी ही उत्पादन शुरू हो जाता है
1: जी।
0: तो हम इसको बड़े स्तर पर भी कर सकते हैं अगर हम बड़े किसान हैं, अगर हम छोटे किसान हैं तो छोटे छोटे स्तर पर टुकड़ों में जब खेतों को बांट के और विभिन्न प्रकार की सब्जियां उगा सकते हैं। और मैं तो ये सलाह देता हूँ कि ऑर्गेनिक खेती पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती हमारे लिए हानिकारक नहीं है, हमारी भूमि के लिए भी हानिकारक नहीं है
1: जी जी।
0: तो हम लोगों को जो है केमिकल खेती छोड़ देनी चाहिए, मतलब मेरा सुझाव है कि केमिकल खेती छोड़ के हम लोग पुराने अपनी पुरानी व्यवस्था पे जाएं, जो जैसे पुराने समय में हम लोग जो है ऑर्गेनिक खेती करते रहे हैं, हम केमिकल का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन आज हम फिर हमारा देश हमारा प्रदेश जो है उसी तरफ वापस लौट रहा है कि हम ऑर्गेनिक खेती जा रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही हमारे लिए बेनिफिशियल है, लाभदायक है। और मेरी तरफ से ये सुझाव है कि आप जो है ज्यादा से ज्यादा सब्जी उगा के और जो भी विश्वविद्यालय की तरफ से जो भी आपको सुझाव चाहिए, कुछ आपको जानकारी चाहिए तो हम उपलब्ध है यहाँ पर
1: जी।
0: और हम अपने बुंदेलखंड के सभी किसानों के लिए जो है पूरा कोशिश करेंगे कि जो भी हमसे मेहनत हो सकेगी, हम जो भी जानकारी दे सकते हैं, बेहतर से बेहतर जानकारी दे सकते हैं, हम उपलब्ध रहेंगे
1: जी। और हम सर एक चीज जानना चाहेंगे, क्योंकि बुंदेलखंड में हम देखते हैं कि हमारे बहुत से युवा साथी एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, किसानी से खेती से जुड़े हुए हैं, लेकिन समस्या बहुत ज्यादा ये आती है कि वो चाहते हैं कि खेती को किस तरीके से व्यावसायिक तरीके से जोड़ा जा सकता है। क्योंकि आपने सब्जियों का सुझाव दिया है तो हम जानना चाहेंगे कि इस बुंदेलखंड में ऐसी कौन सी सब्जियां हैं जिससे कम लागत लगती है और मुनाफा बहुत अधिक रहता है।
0: जी जी सर, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फूल गोभी और पत्ता गोभी बैंगन ये सबसे यहाँ अच्छे होने वाली सब्जियां हैं, क्योंकि मैं मार्केट में देखता हूँ, मतलब जो है मैं जाता हूँ तो देखता हूँ कि यहाँ पे सबसे ज्यादा बैंगन का उत्पादन बहुत अच्छे से हो जाता है, बहुत इजीली ग्रो हो जाता है, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन थोड़ा एडवर्स है, विपरीत कंडीशन है, तो उसको ज्यादा केयरिंग की आवश्यकता नहीं होती बैंगन की सब्जी जो होती है। और अपना जो फूल गोभी है, पत्ता गोभी है और जो है मिर्च है, पालक है और आपका धनिया है, हरा धनिया
1: जी,
0: और तमाम ऐसी सब्जियां हैं जिनको उगाकर हम जीवन यापन कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि ये समय में कम लगता है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ क्योंकि इसमें समय बहुत कम लगता है और समय कम लगने में से हमें पता ही देखो, हमारे किसान जो है इतना भी सक्षम नहीं है कि भाई ये उसने धान लगाया, छह महीने बाद आया, धान अलग यहाँ नहीं होता है, फिर भी जैसे गेहूं है तो टाइम टेकिंग है, गन्ना है बहुत टाइम टेकिंग होता है
1: जी।
0: तो इसीलिए सब्जी क्या होती है जल्दी जल्दी उत्पादन देती है, जल्दी जल्दी करने में इजी रहती है, ज्यादा प्रैक्टिस जो है नहीं करनी पड़ती, ज्यादा कल्चरल क्रियाएं जो है जो कुशल क्रियाएं होती है वो नहीं करनी पड़ती, निराई गुड़ाई और बस ये थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि साकीय पौधे होते हैं सब्जियां और इन पर समय समय पर पानी की उपलब्धता होती रहनी चाहिए, जब भी लगता है फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग हो रही है तो पानी देता रहना चाहिए। बाकी ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे अपना जो है जल्दी जल्दी पैसे कमा के अपने घर का जीवन यापन कर सकते हैं, और जो हम बड़े किसान हैं हम उसको कमर्शलाइज करके मतलब जो व्यावसायिक तौर से भी हम उसको उगा के लाभ कमा सकते हैं। दूसरी बात कि अगर हम छोटे स्तर के किसान हैं तो हम लोकल मार्केट के आधार पर सब्जियों का उत्पादन करना चाहिए, जिससे कि हम लोग जिनकी डिमांड कम है, क्योंकि यहाँ का जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़ा मीडियम टाइप का है, यहाँ का जो गांव का किसान है उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ, तो लोकल मार्केट के हिसाब से हमें छोटी छोटी सब्जी उगानी चाहिए छोटे स्तर पर, जिसको एक छोटा किसान भी उगा सकता है और छोटी सी मार्केट में बिक भी जाता है। और जो हमारे बड़े किसान है वो लोग जो है मार्केट गार्डन कर सकते हैं, जो मार्केट के आधार पर खेती की जाती है उसको मार्केट गार्डन कहते हैं, या ट्रक गार्डन कहते हैं, जो डिस्टेंस मार्केट के लिए एक बड़े भूभाग पे जो हम खेती करते हैं वो जो है वो दूर दूर दराज के क्षेत्रों के लिए होता है। जैसे हम यहाँ से दिल्ली, हम दिल्ली देखते हैं कि चना भी बहुत जाता है
1: जी, जी
0: दिल्ली
1: जी
0: हरा चना
1: जी,
0: तो चने की खेती करके भी हम लोग जो है काफी लाभ कमा सकते हैं, क्योंकि चना जो है कम पानी चाहने वाली सब्जी है, सब्जी मान लीजिए
1: जी
0: अगर साग बनता
1: है बिल्कुल सर,
0: तो आप ये यहाँ से चना उगाते रहे, यहाँ से दूर मार्केट के लिए जो है यहाँ से सीधा सीधा सब्जी का उत्पादन करके उसको वहां भेज सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है
1: जी। यहाँ पर सर अगर मौसम की बात करें, चूंकि मौसम परिवर्तन होता रहता है, तो हम ये देखते हैं कि काफी सब्जियां उगाने वाले भी परेशान हो जाते हैं, तो उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि किस तरीके से वो अपनी सब्जियों को एक वैज्ञानिक तरीके से उत्पादन करके अपने आय को बढ़ा सकता है।
0: जी जी सर, इसमें मैं ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले हम कोई भी खेती करने जाएं उससे सबसे पहले हमें अपनी भूमि की जांच करा लेनी चाहिए, अपनी सोयल की टेस्टिंग करा लेना चाहिए। उसके आधार पर जब हमें पता चलता है कि हमारे भूमि में मृदा में तो कौन कौन सी कमी है, कौन सी पोषक तत्व कमी है, उसको जांच करा के उसके बाद ही जो है हम जो है उसमें कोई भी अगर हम रासायनिक खाद उसमें दे रहे हैं तो वो उसकी मात्रा के आधार पर देना चाहिए, और अगर ऑर्गेनिक दे रहे हैं तो वो ज्यादा लाभदायक है, और वो उससे क्या होगा कि वो एट द टाइम ऑफ सोइंग
1: जी
0: या एट द टाइम ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फील्ड, मतलब भूमि की तैयारी करने के समय हम उसमें जो खाद डालते हैं देसी खाद
1: जी,
0: और उसके बाद हमें जो है साइंटिफिक सीड लेना चाहिए, वैज्ञानिक बीज लेना चाहिए, मतलब किसी रजिस्टर्ड संस्था का बीज लेना चाहिए
1: जी,
0: कोई ऐसा बीज नहीं लेना चाहिए जो कहीं से भी ऐसे किसान से ले लिया और हमने उगा दिया
1: जी।
0: हमें हमेशा एक रजिस्टर्ड संस्था से जहाँ से वो जो बीज के लिए जो है रेस्पॉन्सिबल है फर्म्स, तो हमें वहां से बीज लेना चाहिए और उसको सही वैज्ञानिक तरीके से हमें जो है उसकी जुताई करके उसका जो भी प्लांटिंग सिस्टम हो, जो भी इरिगेशन सिस्टम हो, उसको फॉलो करना चाहिए। और मैं सलाह देता हूँ कि स्प्रिंकलर जो मेथड ऑफ इरिगेशन है उसको ज्यादा फॉलो करना चाहिए, या फिर ड्रिप इरिगेशन जो है जो बूंदी सिंचाई होती है
1: जी,
0: सब्जियों में उसको भी उत्पादन मतलब उसको लगा के उसको कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा लाभ कमाया जा सकता है। दूसरी बात यह कि पानी की यहाँ कमी है
1: जी,
0: तो हमें जो है जो बौछारी सिंचाई है या हमारी बूंदी सिंचाई है वो उसको ज्यादा प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बुंदेलखंड में यहाँ पानी इस बार बहुत गिराया, लेकिन पहली बार चार साल में पांच साल में बहुत कम पानी
1: जी,
0: तो ऐसे केस में सब्जी उगाना बहुत टिपिकल होता है, हार्ड होता है
1: जी,
0: तो ऐसे केस में ऐसी सब्जी को उगाना चाहिए जो कम पानी चाहने वाली
1: जी,
0: है
1: जी, जी, जी।
0: जैसे मैंने बताया कि जो बैंगन का पौधा है काफी हार्ड होता है
1: जी,
0: जो हार्ड पौधे होते हैं वो कम पानी चाहते हैं
1: जी,
0: लेकिन साक्षी जो पालक है
1: जी
0: वो ज्यादा से ज्यादा पानी चाहिए, तो हमें ऐसी सब्जी ज्यादा उगाना चाहिए जो हार्डी नेचर की हो, जो हार्ड हो, जो आसानी से पानी की कमी को झेल सकती हो
1: जी,
0: तो ऐसे करके हम ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं
1: जी। और चलते चलते सर, हमारे युवा साथी जो आपको सुन रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं?
0: सबसे मैं अपने सभी युवाओं से ये आग्रह करता हूँ या निवेदन करता हूँ कि आप सभी लोग जो है एग्रीकल्चर को बढ़ाइए, एग्रीकल्चर बढ़ाइए और एग्रीकल्चर पढ़िए, क्योंकि एग्रीकल्चर का स्कोप है आज के टाइम में, आने वाले भविष्य जो है वो एग्रीकल्चर का ही होगा, क्योंकि हम लोग धीरे धीरे केमिकल की तरफ बढ़ रहे हैं, तो जो जिन लोग केमिकल की तरफ जा रहे हैं उन्हें नुकसान हो रहा है, और जैसे जैसे हम लोग ऑर्गेनिक पाएंगे किसानी करेंगे और एग्रीकल्चर को खेती को जो हम एग्रीकल्चर बेस्ड टेक्नोलॉजी से करेंगे, नई नई टेक्निक से करेंगे, तो उससे हमें ज्यादा लाभ होगा, और हमारे सभी जो है जितने भी युवा है सब एग्रीकल्चर करके बहुत भविष्य बना सकते हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि एग्रीकल्चर बीएससी से इतनी वैकेंसी आई, इतनी बहुत सारी, तो बीएससी एग्रीकल्चर करें और उसको एग्रीकल्चर करने के बाद अपने घर पे भी इसको फॉलो करें और अपने कैरियर को बढ़ा सकते हैं
1: जी, जी।
0: तो ये कि हमारे कृषि का ये भविष्य है
1: जी।
0: और सब्जी उत्पादन, फल उत्पादन, फ्लावर उत्पादन, इसको करके हम जो ज्यादा से ज्यादा लाभ कमा सकते हैं। और मैं चलते चलते ये बात भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप सब्जी उगा रहे हो, सब्जी तो उगाई ही, साथ साथ में फूल भी उगाइए, क्योंकि अगर सब्जी कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो फूल से भी हम सहायक आमदनी प्राप्त कर सकते हैं। बस इसी के साथ मैं सभी लोगों से धन्यवाद करना चाहूंगा। नमस्कार,
1: धन्यवाद सर।

0: पर फिर से साथियों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम आजीविका में। और अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर हरपाल सिंह जी को, जो कि आपको बता रहे थे कि किस तरह से हम वैज्ञानिक तरीके से एक खेती करके और साथ में सब्जियों का व्यवसाय करके एक कैसा मुनाफा कमा सकते हैं।
1: बिल्कुल, उन्होंने साथ में ये भी बताया कि किस तरीके से इस बुंदेलखंड क्षेत्र में किस किस प्रजाति की सब्जियां को उगाकर हम अपने व्यावसायिक तरीके से इसमें मुनाफा कमा सकते हैं। क्योंकि हम और आप देखते हैं कि इस बुंदेलखंड क्षेत्र में अगर बात करें बैंगन की, बात करें प्याज की, बात करें गोभी की, तो इसकी खेती सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे सब्जी उगाकर, क्योंकि 2 और 3 महीने की ये सब्जियां रहती हैं, तो 2-3 महीने में हम अपने खेतों में छोटे छोटे खेत की क्यारी बनाकर उसको लगाकर यदि हम बाजार में पैकिंग कर उसको बेचा जाए तो बहुत अच्छा मुनाफा होगा और इससे ढेर सारी आपकी इनकम भी जनरेट होगी। तो हम ऐसे व्यवसायों को चिन्हित करें जिसमें लागत भी कम लगती है और मुनाफा बहुत अधिक होता है।
0: बिल्कुल, और साथ में डॉक्टर साहब ने एक बहुत अच्छी बात जो बताई है कि जब भी आप अपने खेतों में कोई भी फसल या कोई भी सब्जी लगाना चाहते हैं उससे पहले मृदा परीक्षण आप जरूर करवा लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपकी मिट्टी में कौन से तत्वों की कमी है और कौन सी खाद आपको उसके लिए डालना सही होगा।
1: बिल्कुल, और दूसरी अगर बात करें ऑर्गेनिक पद्धति की, बात करें कि जैविक पद्धति से यदि आप खेती करते हैं और उसमें सब्जियां उगाते हैं, क्योंकि हम और आप देखते हैं कि जो अभी केमिकल भरी खाद हम इस्तेमाल करते हैं और केमिकल भरी खातों की सब्जियां जो हम खाते हैं, तो उसमें हमारे स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा गहरा असर पड़ता है। तो ऐसे में यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से, जैविक पद्धति से यदि हम खेती कर सब्जियां उगाएं, तो इसका भाव भी आपको अच्छा मिलेगा और उसमें पैदावार भी अच्छी होगी और उसमें मुनाफा भी बहुत अच्छा होगा यदि हम ऑर्गेनिक पद्धति से करेंगे।
0: बिल्कुल सही कहा है आपने मनीष जी, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि कोई भी चीज हो, चाहे वो फलों की बात कर ले या सब्जियों की बात कर ले, तो जल्दी से जल्दी हमें कैसे मिल जाए इसके लिए भी कई तरह की केमिकल्स वगैरह चलते हैं, इंजेक्शन जो लगा के सब्जियों में, एक ही रात में सब्जियां बड़ी हो जाती है, उनको सुबह अपन बाजार में बेच भी सकते हैं। तो ऐसी सब्जियों से कोशिश करें कि आप बचें, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होती है। और अगर कोशिश कर सके आप तो घर में ही अपनी एक क्यारी बनाकर उससे भी आप सब्जियां, रोज की जरूरत वाली चीजें जैसे मिर्ची है, धनिया है, टमाटर है, इनको गमलों में लगाकर भी आप उगा सकते हैं। लेकिन अगर व्यवसाय तरीके से आप करना चाहते हैं तो फिर आप जरूर मिट्टी का परीक्षण करवाएं, इसके बाद ही आप अपने खेतों में कोई अच्छी सब्जी और सब्जियों के साथ में आप फूलों की भी खेती कर सकते हैं। क्योंकि अगर एक तरफा आपको मान लीजिए सब्जी में कहीं ना कहीं छोटा बहुत घाटा अगर होता है, तो वो फूलों के माध्यम से आपका बराबर का लेवल आ जाएगा।
1: चलिए, अब हमारा बरसा समय होता है इस कार्यक्रम आजीविका से विदा लेने का, क्योंकि हमारी बातचीत भी बहुत हो चुकी है और हमारे साथियों को बहुत अच्छी बातचीत भी लगी होगी, क्योंकि हम कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी बातें आप लोगों तक पहुंचे और उस बातों को आप अपने जीवन में उतार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से आप लाभ लें। तो हमें बहुत अच्छा लगेगा कि आप जब हमें फीडबैक देंगे कि आपके कार्यक्रम को सुनकर हमने इस कार्य को किया है और अपनी आय में वृद्धि की है।
0: बिल्कुल, आपने जो एक बात कही थी कि बहुत ही अच्छी बातें हमारे साथियों को लगी होंगी, तो ये पता हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये तो तभी पता चलेगा जब हमारे साथी हमें फोन के माध्यम से या फिर पत्र के माध्यम से अपनी राय और सुझाव इस कार्यक्रम के बारे में देंगे। क्योंकि साथियों, आप जब हमें राय और सुझाव देंगे तो हम उसके हिसाब से आपके लिए और बेहतर कार्यक्रम कैसे बना सकते हैं इसके भी सुझाव आप हमें दे सकते हैं। तो जल्दी से हमारा पता नोट कर लीजिए जिस पर आपको पत्र लिख के ये बताना है। इसके लिए हमारा पता होगा
1: रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तिगेला के पास ओरछा।
0: साथियों, हमारा फोन नंबर भी है जिसके माध्यम से आप अपनी राय, सुझाव और कार्यक्रम का फीडबैक, और इसके अलावा भी आप अगर कुछ और बात करना चाहते हैं, जैसे कोई नए व्यवसाय के बारे में आप बताना चाहते हो, या फिर आजीविका कार्यक्रम से आप जुड़े रहने के बाद आपने क्या बदलाव किया है अपने जीवन में, अपने पर्यावरण में, अपनी आय में, अपने रोजगार में, कुछ भी अगर आपने बदलाव किया है तो आप फोन के माध्यम से भी हमें बता सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर होगा
1: 92-19-20-77-49।
0: दोस्तों, अब दीजिए हमें इस कार्यक्रम से जाने की इजाजत, हम जल्द ही आपके सामने फिर से आएंगे, यानी कि रेडियो पर फिर से आएंगे इसी कार्यक्रम में इसी तरह की नई नई जानकारियों के साथ। अब दीजिए हमें जाने की इजाजत, हम फिर मिलेंगे आपसे,
1: तब तक के लिए नमस्कार।

0: श्रोताओं नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने वाले सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं हूं आपके साथ आपके आरजे रेडियो दोस्त वर्षा,
1: और मैं हूं आपका रेडियो साथी मनीष, और सुन रहे हैं आप कार्यक्रम
0: हम होंगे कामयाब।
1: और हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम अपने युवा साथियों के लिए तरह तरह के कार्यक्रम इसमें लेकर आते हैं, और खास तौर पर उन छोटी छोटी बातों पर हम बात करते हैं जो हमारे युवा साथियों के लिए बहुत जरूरी रहती है। चाहे वो गवर्नमेंट स्कीम्स की अगर बात करें, चाहे वो उनके आजीविका को लेकर बात करें, चाहे वो उनके वैकेंसियों को लेकर बात करें, यानी रोजगार सूचनाओं को लेकर बात करें, तो हम तरह तरह के कार्यक्रम इस हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में हम लेकर आते हैं।
0: और चाहे हम छोटा काम बड़ा मुनाफा की बात करेंगे तो आप भूल ही गए थे मेरे जी।
1: बिल्कुल सही कहा वर्षा, और हम अपने युवा साथियों के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लेकर आते हैं आज, चूंकि हम मुझे कार्यक्रम आज सुनेंगे और इसमें जानेंगे, चूंकि हम और आप देख रहे हैं कि किसान साथियों की अगर बात करें, खेती किसानी का हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में बहुत ज्यादा काम किया जाता है, और ऐसे में हमारे

0: किसान साथियों की किस तरीके से आय दुगनी हो, तो कैसे दुगनी हो सकती है जब तक हम किसी योजना का लाभ ना लें या फिर हम लगे कुछ खेती किसानी में अलग करें, यानी आधुनिक पद्धति से किस तरीके से खेती करें। तो आधुनिक खेती अगर हमारे किसान साथी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत सारी स्कीम्स और योजनाएं चलाई जाती हैं शासन की ओर से, जिनका हम लाभ लेकर अपनी आय को हम बढ़ा सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, और क्योंकि जब कोई योजना चलाई जाती है तो वो हमारे किसान साथियों के लिए ही होती है अगर कृषि से संबंधित है तो, लेकिन बस जरूरत ये होती है कि उस योजना के बारे में हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए, कैसे हमारे किसान साथी उस योजना का लाभ ले सकते हैं और कौन से वो किसान साथी हैं जो इस योजना के पात्र हैं।
0: और आज के हमारे इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम में आज हम जानेंगे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, क्योंकि सिंचाई का अब समय होगा क्योंकि अब गर्मी का मौसम चल रहा है। ऐसे में हमारे किसान साथी जो सब्जियां लगाए हैं या फिर अपनी खेती जो जायज की खेती रहती है वो भी अपनी लगाकर उन्होंने खेतों में लगा दी है, तो सबसे ज्यादा गर्मियों के मौसम में समस्या आती है कि पानी कहाँ से आए, कैसे पानी दे, वो तो पानी पर ही सब कुछ चलता रहता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री कृषि योजना का हमारे किसान साथी लाभ लेकर और अपनी खेती को और अच्छा और बेहतर कर सकते हैं।
1: बिल्कुल साथियों, और अगर हम बात करें प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की, तो इसकी शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की हुई थी और जिनके द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए की गई थी। इस योजना के अंतर्गत देश के किसानों को अपने खेती की सिंचाई के लिए उपकरणों के लिए सब्सिडी प्रदान की गई थी,
0: और यह सब्सिडी किसानों को उन सभी योजनाओं के लिए भी प्रदान की जाएगी जिसमें पानी की बचत भी हो, कम मेहनत हो और साथ में खर्चे की भी सही तरह से बचत कर सके, ऐसे किसानों को अपने खेतों में सिंचाई करने की सुविधा हो, इसलिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना चलाई है। अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि योजना किस तरीके से इसका लाभ ले सकते हैं, कितना पैसा रहता है इसमें, तो आपको इसके भी बारे में हम जानकारी दे देना चाहते हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि अनाज के लिए कृषि सबसे ज्यादा जरूरी रहती है, और कृषि तभी बेहतर होगी जब सिंचाई के अच्छे साधन और संसाधन आपके पास उपलब्ध हो।
1: बिल्कुल साथियों, जैसे कि खेतों में सिंचाई के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है, अगर फसलों को अच्छे से पानी नहीं मिलेगा तो वह किसानों के खेत खराब हो जाएंगे और जिससे उनकी फसल अच्छी नहीं होगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत किसानों की इस समस्या को दूर किया जाएगा और किसानों को उनके खेतों के लिए पानी की व्यवस्था की जाएगी। इस योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप, ट्रस्ट, सहकारी समिति, कॉपरेटिव जो कंपनियां रहती हैं उनके माध्यम से उत्पादक किसानों के समूह के सदस्यों और अन्य पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्यों को भी लाभ प्रदान किया जाएगा। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के तहत केंद्र सरकार द्वारा इस योजना के तहत 50,000 करोड़ रुपए की धनराशि निर्धारित की गई है,
0: और यह राशि वर्ष 2026 तक इसका विस्तार इसका किया जाएगा, और साथ साथ में 15 दिसंबर 2021 को प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 5 वर्ष के विस्तार के लिए 2026 तक संचालित करने का इसमें निर्णय लिया गया था। और साथ साथ में आपको एक जानकारी और देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत ड्रिप प्लांट लगाने पर 70% सब्सिडी की राशि बागवानी किसानों को प्रदान की जाएगी, और साथ साथ में 50% सब्सिडी की राशि जो सीमांत किसान रहते हैं उनको प्रदान की जाएगी। और इस बात की जानकारी डिप्टी डायरेक्टर जो रहते हैं कृषि विभाग के, उन्होंने ये साझा की है। इसके अलावा फाउंटेन प्लांट की खरीद पर 60% की सब्सिडी छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान की जाएगी, साथ साथ में 50% की सब्सिडी अन्य किसानों को प्रदान की जाएगी। और इस योजना को लाभ उठाने के लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा। यह ऑनलाइन आवेदन राज किसान साथी पोर्टल पर ई मित्र के माध्यम से किया जा सकता है। आवेदन पत्र भरने के लिए आपको क्या क्या दस्तावेज की जरूरत पड़ती है वो भी आपको साझा कर देना चाहते हैं कि इसमें जो जमाबंदी रहती है, ट्रेस माप रहती है यानी जो आपकी खसरा खतौनी की नकल रहती है, साथ साथ में प्लांट कोटेशन जो रहता है, आप किस चीज का प्लांट डालना चाहते हैं उसका कोटेशन भी आपको लगेगा, सॉयल वाटर टेस्ट रिपोर्ट जो रहती है वो कृषि विभाग द्वारा दी जाती है, साथ साथ में बिजली का बिल, आधार कार्ड आदि होना आपके पास अनिवार्य है। और इस योजना का लाभ पहले आओ पहले पाओ के आधार पर प्रदान किया जाएगा और यह 15 सितंबर 2021 से ये लागू किया गया था। और हर खेत को पानी योजना के लिए आर्थिक सहायता भी इसमें शामिल की गई है।
1: जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को केंद्र सरकार द्वारा आरंभ किया गया है। इस योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य सिंचाई उपकरण खरीदने पर सब्सिडी मुहैया कराना है, जिससे कि खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। यह योजना किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए भी कारगर साबित होगी। इस योजना को देश के विभिन्न जिलों में होने वाली पानी की कमी को ध्यान में रखते हुए आरंभ किया गया है, जिससे कि फसल की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा सके। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के अंतर्गत हर खेत को पानी योजना आरंभ की गई है। हर खेत को पानी योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी खेतों को पानी मुहैया कराया जाएगा, जिसके लिए कमांड क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस वित्तीय सहायता का उपयोग करके किसानों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे कि उनके खेतों तक पानी पहुंच सके। अब इस योजना के माध्यम से खेती करने के लिए किसानों को पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा।
0: अब बात आती है कि प्रधानमंत्री कृषि योजना के अंतर्गत जो 1706 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए हैं, उसके भी बारे में हम जिक्र करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 का उद्देश्य क्या है, उस पर भी बात करेंगे। साथ साथ में प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इस पर भी, चूंकि खेती के साथ ही जुड़ी योजना है, इस पर भी बात करेंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की विशेषता, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इसका लाभ कैसे ले सकते हैं, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पहले हम एक अच्छे से गीत को सुन लेते हैं। बने रहिए आपके अर्जे मनीष
1: और आपके रेडियो दोस्त वर्षा के साथ में। सुनते रहिए कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में। मुझे हक

0: रेडियो अपनी बातें रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पर श्रोताओं एक बार फिर से आप सभी को बताना चाहते हैं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हम होंगे कामयाब में मुझे हक है, जिसमें हम जान रहे हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के बारे में।
1: और साथियों, जैसा कि हमने बताया था कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत 1706 करोड़ जो रूपए अप्रूव किए गए हैं, उसकी सहायता के लिए हम आपको बता देना चाहते हैं कि इस योजना के अंतर्गत खेतों की सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा और मुख्यमंत्री अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व में एक वर्चुअल कैबिनेट मीटिंग 22 दिसंबर 2020 को संचालित की गई थी और इस मीटिंग में कैबिनेट ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए 1706 करोड़ रुपए आवंटित भी किए गए थे। मध्य प्रदेश का इसमें 682 करोड़ रुपए और 40,40,000 रुपए का शेयर भी है। इस योजना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के मंडला, डिंडोरी, शहडोल, उमरिया और सिंगरौली जिले शामिल भी हैं। अब हमारे श्रोता साथी सोच रहे होंगे, हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री कृषि योजना का उद्देश्य क्या है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगर फसल को उचित मात्रा में पानी नहीं मिलेगा तो वो खराब हो जाएगी और हमारे देश के किसान किस पर निर्भर रहते हैं, वो भी पानी पर निर्भर रहते हैं, सिंचाई पर निर्भर रहते हैं। तो ये कदम प्रधानमंत्री जी ने उठाया है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से ज्यादा बल जल संसाधनों को अधिकतम उपयोग है ताकि बाढ़ और सूखे के आवेग से होने वाले नुकसान की रोकथाम ये कर सके, साथ साथ में उपलब्ध संसाधनों को कुशल उपयोग हो सकेगा और साथ में किसानों की हमारी पैदावार भी बढ़ सकेगी। प्रधानमंत्री अधिक फसल प्रति बूंद योजना, इसमें मुद्रा प्रति बूंद योजना 5 वर्षों के में देश के खेती वाले क्षेत्र का विस्तार करेगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना देश में हर जगह पानी मुहैया कराएगी और देश के फसल राशन को बढ़ावा देगी। यह देश के किसानों के जीवन स्तर में सुधार करेगी और इस प्रधानमंत्री योजना के तहत प्रति फसल योजना के तहत अधिक फसल जल प्रबंधन प्रणाली का प्रबंधन भी करेगी। अब विशेषताएं क्या क्या है वो भी आप जान लीजिएगा।
0: शुदा सरकार द्वारा किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए एवं उनकी आय में वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाओं का संचालन किया जाता है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को भी किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए आरंभ किया गया है। इस योजना के माध्यम से सभी खेतों में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराया जाएगा। सरकार इस योजना के अंतर्गत पानी के सोर्स जैसे कि जल संचयन, भूजल विकास आदि का निर्माण करवाएगी। इसी के साथ यदि किसान द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदे जाते हैं तो उनको सब्सिडी भी प्रदान की जाएगी। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से समय और पैसे दोनों की बचत होगी। सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से ड्रिप सिंचाई, स्प्रिंकलर सिंचाई आदि का भी बड़ा महत्व है इसमें और उस पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। यदि फसलों के सही प्रकार की सिंचाई प्राप्त होगी तो पैदावार भी बढ़ोतरी होगी। इस योजना का लाभ वह सभी किसान उठा सकते हैं जिनके पास खुद की जमीन और उस जमीन पर वो खेती करते हो, जल का स्रोत हो। इसके अलावा वह किसान भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर रहे हैं या सरकारी सदस्य हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप भी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ प्रदान कर सकते हैं। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन करना होगा। सरकार द्वारा सिंचाई के उपकरण खरीदने पर इस योजना के अंतर्गत 80% से 90% तक का अनुदान प्रदान किया जाएगा।
1: अब हमारे किसान साथी सोच रहे होंगे कि इसमें और क्या जानकारी हम उपलब्ध करा सकते हैं, तो

0: देना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना में जो कंपोनेंट है वो है कन्वर्जेशन विद नरेगा, यानी कन्वर्जेशन जो रहता है नरेगा का उसके माध्यम से आपको पैसा मिल सकता है, वाटरशेड परियोजना के माध्यम से मिल सकता है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप अदर इन्वेस्टमेंट पर भी पैसा हम निकाल सकते हैं, पर ड्रॉप मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन हर खेत के पानी खेत में, इस पर भी हमारे इस योजना को रखा गया है। पात्रता क्या होनी चाहिए, इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए और इस योजना के पात्र लाभार्थी देश के सभी वर्ग के किसान होंगे। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत सेल्फ हेल्प ग्रुप भी होंगे, ट्रस्ट भी होगा, सहकारी समितियां होंगी और जो कोऑपरेटिव कंपनियां जो रहती हैं उनके उत्पादक कृषकों के समूह यानी एफपीओ के सदस्य भी इसमें रहेंगे और अन्य पात्र जो पात्रता प्राप्त संस्थानों के सदस्य भी इसका लाभ ले सकते हैं। अब दस्तावेज क्या क्या लगना चाहिए इसके बारे में भी हमें जान लेना चाहिए।
1: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2022 के दस्तावेज जो है वो इस प्रकार से है, आपको जरूरत पड़ेगी आवेदक का आधार कार्ड, पहचान पत्र, किसानों की जमीन के कागजात, जमीन की जमाबंदी, खेत के नकल, बैंक अकाउंट पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो और मोबाइल नंबर।
0: और हमारे साथी सोच रहे होंगे कैसे आवेदन करें, तो योजना की जो जानकारी हर किसान तक पहुंचाने के लिए आधिकारिक पोर्टल स्थापित किया गया है, यहाँ पर योजना से संबंधित हर जानकारी विस्तार पूर्वक तरीके से बताई गई है। पंजीकृत या आवेदन के लिए राज्य सरकार अपने अपने प्रदेश के कृषि विभाग की वेबसाइट पर आवेदन ले सकती है। अगर आप योजना के आवेदन के लिए इच्छुक हैं तो अपने प्रदेश के कृषि विभाग के वेबसाइट पर जाकर आवेदन संबंधित जानकारी ले सकते हैं और प्रतिक्रिया जो इसमें रिपोर्ट देखने की प्रतिक्रिया जो रहती है वो भी आप ध्यान से सुनी होगा।
1: बिल्कुल साथियों, MIS रिपोर्ट देखने की प्रक्रिया जो है वो इस प्रकार से है। सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। अब आपके सामने होम पेज खुलकर आएगा, इसके पश्चात आपको MIS रिपोर्ट के विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने निम्नलिखित ऑप्शन खुलकर आएंगे, जैसे अचीवमेंट रिपोर्ट, कंसोलिडेट एक्टिविटी बाय OTF, वन टच फॉर्मेट, DIP, डॉक्यूमेंट अपलोडेड, पर ड्रॉप मोर क्रॉप, डैशबोर्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PDMC, MI, वर्क फ्लो सिस्टम, ड्रिप डाउन प्रोग्रेस रिपोर्ट। आपको अपनी आवश्यकता अनुसार विकल्प पर क्लिक करना होगा। इसके पश्चात आपके सामने एक नया पेज खुलकर आएगा, इस पेज पर आपको पूछी गई जानकारी दर्ज करनी होगी। अब आपको व्यू के विकल्प पर क्लिक करना होगा, संबंधित जानकारी आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी।
0: तो ये सारे दस्तावेज हमने बता दिया है, सब कुछ बता दिया है। अब आपको क्या करना है कि प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत अगर आपको नहीं लगता है कि हम नहीं समझ पा रहे हैं तो संबंधित कृषि विस्तार अधिकारी जो रहते हैं उनके पास जाकर पूछना होगा और ऑनलाइन इसके आवेदन जमा करने होंगे। तो ये जानकारी आप ने जो हमने कार्यक्रम के माध्यम से बताई है तो हमारे किसान साथी इसका लाभ ले सकते हैं। और साथियों, अब हमारा वक्त भी हो रहा है आज के इस कार्यक्रम हम होंगे कामयाब कार्यक्रम से जाने का, तो इस पर यदि आपको कोई विचार देना है या टिप्पणी करना है या फिर आपको फीडबैक देना है तो दे सकते हैं हमारे इस नंबर पर।
1: हमारा नंबर है
0: 9219207749। तो आपके रेडियो साथी मनीष
1: और आपकी रेडियो दोस्त वर्षा को दीजिए जाने की अनुमति। हमारी और आपकी फिर होगी मुलाकात अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार।

श्रोताओं नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90 समाचार सुनाई वे बारे हमारे सब श्रोता साथियों को नमस्कार पहुंच जावे। और एक बार फिर हम आपके बीच में लाइव हैंगे, लाइव ऐसे आए हैंगे कहे के अपनो कार्यक्रम अम्मा के चौके शुरू हुए गाँव है। सो अम्मा के चौके शुरू हुए से पहले आपको बहुत एक महत्वपूर्ण बातचीत हम बतावो चाह रहे हैंगे कि जो इस समय पर देख रहे हैंगे कि बहुत ज़्यादा लू लपट चल रही हैगी। और अब तो सरकार की तरफ से भी एक हीट वेव अलर्ट जारी हो गया है गो कि अपने ते कछु जिला है जैसे कि छतरपुर है गो, टीकमगढ़ है, निवाड़ी है, दतिया है, इन जिलन में 24 घंटा के लाने बहुत ज़्यादा अलर्ट रहने की ज़रूरत हैगी। तो ध्यान रखें कि 11 बजे से लेके शाम 5 बजे तक घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकलवें, खासतौर से 24 घंटा के लाने तो बिल्कुल भी ना निकलूँ क्योंकि घाम जो है बहुत ज़्यादा परवे वालों है, लू में ज़्यादा चलने की संभावना जताई जा रही हैगी। तो जनहित में जारी जो संदेश आप सबके लाने हैं वो अभी मैं अपन बात कर ले कि लू से बचाव के लाने और तुरंत राहत देवी के लाने कछु घरेलू उपाय भी होते हैंगे जो अपन और जानते हैंगे लेकिन कभी कभी भूल जाते हैंगे। सो हमने कही कि आपको एक बार याद दिला देवे तो लू से बचवे के लाने का करने आपको कि कच्चो जो आम होते हैं वो आम को उबाल के बढ़िया उको रस निकाल के इसमें कारो नमक और जीरा पाउडर मिला के संगे में तनक सी शक्कर मिला लो और पानी से इको बढ़िया घोल बना लो। और घोल बनावे के बाद जो तुरंत एक शरबत बन के तैयार हो गया है वो इको ठंडे पानी में मिला के पी लो बढ़िया से और आपको लू से थोड़ी राहत मिल जाएगी। अब बात कर रहे थे प्याज की रस की, तो साथियों किचन में अपने प्याज को रस भी होते है गो, तो गर्मियों में कच्चो प्याज खाबे से लू से बचाव तो होते ही है गो, एक रामबाण उपाय मानो जाऊ थे गो। एक आप अगर प्याज की रस में थोड़ा सा शहद मिला के भी पी

कहेंगे तो जो भी आपके लाना फ़ायदेमंद हुई है। अब सौंफ भी अपनी किचन में रखी रहेगी। सो सौंफ की अगर हम बात करें तो सौंफ को पानी रात में एक गिलास पानी में सौंफ भिगा कर रख देवें, यानी डुबो कर रख देवें। सवेरे उठ के वो पानी खो पीवी से शरीर में तापमान जो है वो नियंत्रित बनो रहेगो। ऐसे में अपने बुंदेलखंड में एक चीज़ और आउथेगी, बेल। बेल जी खो पंकत है जो कि बेलपत्री भी चढ़ा उठेंगे, उन्हें में एक फल लगा थे उसको बेल का उठेंगे। तो बेल को शरबत और छाछ पेट को ठंडक रखा उठेगी, और रोजाना एक एक गिलास बेल को शरबत, नींबू पानी या ताज़ा मठा छाछ को सेवन भी आप कर सकते हैं। जो रूह से बचबे के जो कछु उपाय थे जो हमने आपके संगे साझा करेंगे। ऐसे ही में बेल के बाद आतेगी धनिया और पुदीना। तो साथियों ताज़ा धनिया और पुदीना की पत्ती जो रहते हैं उसको रस निकाल के इसमें थोड़ा सा पानी मिलावें और मिश्री या फिर चीनी मिला के इसको पीवे से शरीर की गर्मी जो है बस शांत होतेगी और आप इसे राहत भी पा सकते हैं जो लू चल रही है। संगे में शरीर को तापमान अगर कम कर भी चाहूँगे आप तो उकलाने भी कुछ उपाय है वो, जैसे कि गीली पट्टी यानी जो ठंडी पट्टी होतेगी उसको भी इस्तेमाल करते हैं। अगर कोनू को लू लग जावे तो शरीर को तापमान बढ़ जाए और तो खों ठंडे पानी की पट्टियाँ माथे गर्दन पे बगल में सब जगह रखबें, और अगर रखबो शुरू करें तो कम से कम आधा घंटा तक कंटिन्यू इसको रखबें तो इसे काफ़ी राहत आपको मिल सकत हैगी। संगे में तुलसी और शहद, तुलसी के पत्तन को रस शहद में मिला कर खावे से लू के कारण हो भी बारी घबराहट में आपको राहत मिल जाएगी। साथ ही सावधानी के बन अगर बात करें कि मैं सावधानी रखने हैगी तो आपको बता देवें कि हल्को और सुपाच्य भोजन करवें, जैसे कि तरबूज खरबूजा खीरा और ककड़ी जैसे पानी से भरपूर फलन को अपनी डाइट में शामिल करवें, अपने खावे में शामिल करवें, जो अच्छी होते हैं आपकी सेहत के लाने। कैफीन से बचवें, यानी चाय कॉफ़ी या अधिक मीठों खावे से या कोल्ड ड्रिंक को सेवन करवे से आप थोड़ा सा बचवें, इनसे बिल्कुल भी ना करवें। इसको पीवे से या खावे से डिहाइड्रेशन यानी पानी की कमी आपके शरीर में हो सकत हैगी। अब अगर अपन बाहर जा उठेंगे तो अपने चेहरा को बचावे के लाने आपको हमने बताई दी हैगी कि आप छतरी को इस्तेमाल कर सकत हैंगे, हाथन में ग्लव्स पहन सकत हैंगे और अपने मुड़ी को ढाँक के न करवे, बिल्कुल बिना ढाके तो आपको बिल्कुल भी नहीं न करने हैं। तो जो कछु खास जानकारी है थी अपने 24 घंटा के लाने, और 24 घंटा का हम तो जा कहते हैं कि जब जब जो घाम पड़वे और खूब लपट लू लगवे अगर, तो आप इन सब चीज़ों को इस्तेमाल ज़रूर करियो। तो आगे अपनों कार्यक्रम अम्मा के चौके में आप सबको स्वागत करते हैंगे और आओ सुनते हैंगे आज के कार्यक्रम में का बातचीत हो रही हैगी।

0: नमस्कार, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आ गई है आपकी अपनी रेडियो दोस्त वर्षा, लेके आपके लाने कार्यक्रम अम्मा के चौके से। जी हाँ साथियों, अम्मा के चौके कार्यक्रम में आप सब जने जाना थेंगे कि अपन अपनी सेहत से जुड़ी हुई बातचीत करे थेंगे और ऐसी रेसिपी इनको जाना थेंगे जो अपने लाने आसान हो गए और जिनको अपन आसानी से खा पावे, है कि नहीं। तो देखो भैया, आप सबको बता देंगे कि मौसम में बदलाव को असर हमारे खान पान पे सबसे ज्यादा परिवर्तन लेके आउट है को। और अगर ई मौसम की बात कर ली भी तो ई मौसम में फल हमें पोषण तत्व देतेंगे, जैसे कि हर मौसम को एक फल होते ही, सो ऐसे ही ई मौसम के भी कछु फल हैंगे जो खावे से अपन को पोषण तत्व भरपूर मात्रा में मिल सकते है, जो अपने शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक होतेंगे। ई मौसम में तापमान और गर्मी की असर को कम कर भी किलाने फलन के राजा आम के संगे संगे तरबूज, खरबूज, लीची, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखार, बेल और ऐसे कई तरह के फल हैंगे जिनको खाबे से पर्याप्त मात्रा में जो है अपन को प्रोटीन और पोषण मिलत है गो। और भैया हरो देखो, आप सबको बता देवे कि गर्मी बहुत ही ज्यादा पड़ रही, राम भाई घाम देखी से तो बुखार से चढ़त जा लगत के बाहरी को कोनो काम ना मिलवे, बस कूलर पंखा में बैठ के अंदर ही अंदर को काम कर लेवे। लेकिन का है कि काम काज करवी के लाने बाहर तो निकल नहीं आते है, सो अपनी अपनी देखभाल अपन वरन खो कर बहुत जरूरी है वो। और जब भी घर से बाहर निकलवे तो देखो, हम वीर वीर आप सब जनन से कहू थेंगे के मुड़ी खो ढांक के रख दे, चाहे स्टोल से ढांक ले बे, चाहे भैया हरो दुपट्टा से। अब दुपट्टा को मतलब जो नहीं है कि पतरो से दुपट्टा ले लो, अच्छो मोटो से हो गए दुबला उतर करके डाल लो खो, ऐसे दुपट्टा डालने अपन को, ठीक है। और अगर देखो आंखन पे चश्मा लगा लो तो भी आप घाम से भी बच सकते हैंगे। तो भैया हरो आप सबसे क्या वो चाहते है, घाम वो बहुत तेज पड़ रहा है वो, ध्यान रखो अपनो तना को और बाली बच्चन को रखो। बाली बच्चन को कहा है कि अब देखो भी तो नहीं जाना थेंगे कि हमारे लाने का सही है का गलत है वो, सुबह जिद कर लगा थेंगे बाहर खेलवे की। अब ऐसे घाम में बिल्कुल आप उनको अनुमति ना दो कि भी बाहर जाके खेलवे, आप तो बस उन्हें सुबेरे शाम जो ठंडो ठंडो मौसम होती उन्हें खेलवे की लाने को, और घाम में तो बिल्कुल ही ना कर दो आप बाहर, अंदर ही बैठा रहो, अंदर ही बैठ कर उनके संगे पढ़ाई करवाओ, उन्हें खावे पीवे में बिदाए रहो, जैसे जो पोषण वाली चीजें होती हैं अच्छी अच्छी चीजें भी उन्हें खवाओ। जी नहीं खवाने आपको के नमकीन खुआ दो और समोसा खुआ दे, जलेबी भजिया ऐसी चीजें नहीं खुआने हैं, जो उनके लाने जरूरी है वी चीजें खवाओ जिनसे उनको पोषण मिलवे, जिनसे उनको शरीर ताकतवर बनवे है और लपट से बचा रहे। अब देखो अमिया को पनो खूब चल लो ट्रेंड में है वो, करनी लगत के नई रिलाई ट्रेंड में चल रही, सो ऐसी ट्रेंड में अब अमिया को पनो चल लो बढ़िया, सो अमिया को पनो भूंज के बढ़िया अमिया को पनो बनाकर खुआओ है, प्याज डाय दू में खूब बिला ताकि उनको लपट ना लगवे। इन सब चीजों को अपन को ध्यान रखने हैं, काहे कि अपने को ही जिम्मेदारी होती कि अपन इनको ध्यान रखवे, ठीक है। तो आज के कार्यक्रम अम्मा के चौके में साथी भैया हरो हम आपको बताएंगे कि सेहत को साथी है वो ई मौसम की फल, और फलन की अगर बात करें तो बहुत सारे फल ऐसे होते हैं जिनको अपन उन्हें खा सकते हैं, जिनको खाए से अपनो स्वास्थ्य भी अच्छो रहे, अपन को पोषण भी भरपूर मात्रा में मिले और ई मौसम से बचा के भी अपन को रखे। ई मौसम में तापमान और गर्मी के असर को कम कर भी के लाने फलन के राजा आम की तो बात अपनी कर ही रहेंगे, संगे संगे में अपन करें तरबूज, खरबूज, लीची, स्ट्रॉबेरी, आलू बुखार और बेल की भी बात करें, ठीक है। अगर अपन स्वास्थ्य की दृष्टि से देखें तो हमें फलन को अपने आहार को एक हिस्सा बना लें जज्जी, ठीक है। इनके सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हैगी अपनी बाभी मजबूत होतेगी, और संगे में स्वास्थ्य की जो कोशिकाएं क्षतिग्रस्त होतेगी उनसे भी जो बचाव थे अपन और अनखो, ठीक है भैया रो। सो का करने अपन को कि गर्मी के फल जो हैंगे भी बीटा कैरोटीन, कैरोटेनॉयड और खनिज तत्वन से भरपूर होते हैं, ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर ये फल फ्री रेडिकल्स को कम करके हमें ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाव देंगे। केवे को मतलब है को कि गर्मियन में इन फलन को सेवन करने से अपन और स्वस्थ रहेंगे और आजकल होवे वाली जो बीमारी है उनसे भी अपन बचाव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब फल कौन कौन से हैं और उनके पोषण तत्व का कहेंगे जो हम आपको आगे कार्यक्रम में जरूर बताएंगे। इतने साथ ही अपन सुन लेते हैं एक बढ़िया से लोकगीत को। साथ ही में आज के कार्यक्रम में अपन जो भी जाने के योग कर वो भी अपने लाने कितने ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं वो। ठीक है, तो बने रहो अपनी रेडियो दोस्त वर्षा के संगे, सुनत रहो कार्यक्रम अम्मा के चौकी से। आओ अपन और सुनाएंगे एक बढ़िया से लोकगीत को।
1: पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाओ। पेड़ पौधों से करोगे प्यार तो रहेगा जीवन खुशहाल, वृक्षों को कटने से बचाओ, वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए।

जब श्री गणेश भगवान नहीं मिले तो देखो गोपियों ने क्या कार्यक्रम किया। ए घर घर झूठ फिरती है श्याम को, घर घर झूठ

0: वृक्ष ही जीवन है, वृक्ष लगाइए जीवन बचाइए।
1: साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबको बता देंगे कि हम हैंगे आपके संगे, आपकी रेडियो दोस्त वर्षा लेकर हाजिर हैं कार्यक्रम अम्मा के चौकी से। जी हाँ साथियों, अम्मा के चौकी में अपन और जान रहे हैंगे कि सेहत के साथी हैंगे ई मौसम के फल। तो प्राकृतिक मौसम में बदलाव के संगे संगे जो आत है भी अलग अलग किस्म के फल भी आत हैंगे और जिनको स्वाद भी ई मौका के लाने बहुत अच्छे होते हैं। स्वाद के संगे संगे पौष्टिकता से भरपूर होते हैं ये फल, आपको हमेशा सेहतमंद और मौसमी बीमारियों से भी ये बचाऊ थेंगे, इनकी बड़ी भूमिका इनमें रहेगी। तो साथियों अगर जैसे देख रहे हैंगे कि तरबूज खूब ही खूब बिक रहा है वो बाजारन में और अपने सब साथी चाव से खाउत भी हैंगे इको, तो इनके पोषण तत्वन के बारे में अपन कछु बातचीत कर ले गए अपने साथियों से। इनमें पोषण तत्व के संगे 92% पानी होते है, वो तरबूज में मौजूदा विटामिन ए सी और बी भी होते है वो, और इसके अलावा आप सबको बता दी गए कि एंटीऑक्सीडेंट लाइकोपीन जो कि हृदय और हड्डियों को सेहतमंद बनाते है वो। संदेह में साथियों मधुमेह रोगी भी सीमित मात्रा में खा सकते हैं, यानी कि जो मधुमेह के शिकार हमारे साथी हैंगे देखो खावे तो लेकिन सीमित मात्रा में, ठीक है। तरबूज को सेवन कर सकते हैंगे भी, और मतलब कभी कभी ऐसा होते ना उन्हें लगत के अरे जो मीठो है को और हम नुकसान ना कर जावे हमें हम खे के नहीं खे, तो वे खा तो सकते ही लेकिन सीमित मात्रा में खावे। और अगर देखो आपकी मधुमेह ज्यादा ही खराब है तो फिर आप बिना डॉक्टर की परमिशन के बिल्कुल भी नहीं खाइयो। लेकिन जिन साथियों को ऐसी कोई समस्या नहीं है वे भरपूर मात्रा में इको खा सकते हैं लेकिन लिमिट में, उनके लाने भी सीमित चीजें होती हैं भैया, अति कोनो भी चीज की अच्छी नहीं होती, ठीक है। अब अगले नंबर आते गो आम को, जो की फलन को राजा जी खू कही जाऊ थे कत के नहीं कदई। इनमें सबसे ज्यादा पाए जाने वाले जो है वे विटामिन ए और सी, फोलेट व फाइबर सेहत के लाने बहुत ही फायदेमंद होते हैं। आम जो है वो हाई ग्लाइसेमिक फलन की श्रेणी में आउट है, ऐसे इको सेवन जो है सीमित मात्रा में करने चाहिए। हालांकि इको भरपूर स्वाद लेवी के लाने अब थोड़ा से इंतजार आप सबको करने आए, कहे की अब बाजार में जो है आम आते रहो, लेकिन जब दशहरी आम लगते ना वो बड़ो अच्छो आम लगा थे वो दशहरी को, और सब जने एकदम ललचियाऊ देंगे कि अरे भैया दशहरी आ गई अब तो खा लो, रोक नहीं पा रहे अपने आप को, तो बड़ी अच्छी बात है खाएं जज्जी, लेकिन हर चीज को एक सीमित मात्रा में खाएं चाहिए, तो अपने शरीर को भी फायदा दे और अपन को भी फायदा दे। कोनो भी चीज की अति जो है वह अच्छी नहीं होतेगी। अब अगर साथियों उतना ही हम बात कर ले गए खरबूजा की, तो खरबूजा जो है वो गर्मियों की तपिस कम करवे के लाने, यानी जो गर्मी बहुत भयंकर चल रही है, अरे भैया गर्मी की बात करें तो हमें आप किसी झूठा लगा, तो गर्मी की तपिस कम करवे में खरबूजा जो है बेजोड़ है वो। इन्हें कहा होते कि एंटीऑक्सीडेंट से जो भरपूर होते है वो, और ये फल में फाइबर के संगे विटामिन प्रचुर मात्रा में पाओ जाऊ थे वो। लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स के कारण जो मधुमेह रोगियों के लाने भी लाभकारी होते को, लेकिन मधुमेह रोगी जो है इनको सेवन सीमित मात्रा में ही करवे, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं आप सबको, लेकिन खावे में भी बड़ो स्वादिष्ट होते हैं। क्यों साथी तो अपने पतो का कर रहेंगे कि इनके अंदर यानी खरबूजा के अंदर जो बीजा रहेंगे उन बीजा को जो है सुखा लेते धूप में पहले डाल देते, धूप तो वैसे ही इतनी तेज पड़ रही है कि अच्छे अच्छे आदमी भी सूख रहेंगे तो ये तो बीजा ही हैंगे। इनको सुखावे के बाद भी क्या कर रहेंगे कि इनके कछूत बीच ऐसी चीज बनाऊ थेंगे जो उन्हें अच्छी लगती, या फिर इन बीजन के अंदर जो एक चीज निकलत है खावे वाली वह बड़ी स्वादिष्ट लगा थेगी। सो ऐसे भी काफी सारे साथी कर रहेंगे, और संगे में जो फल लगावो चाहते हैं कि पेड़ लगावो चाहतेंगे तो बेबी इन्हें बचा के रखत और क्यारियन में ऐसी डाल देते ही। अब वो तो नहीं है तो बात अलग हैगी, लेकिन कोशिश तो पूरी कर रहेंगे। अब हम बात करें बैरीज की, तो बैरीज के बारे में आपको बता देंगे कि विभिन्न प्रकार की बैरीज होती हैंगी, जैसे कि ब्लूबेरी स्ट्रॉबेरी आदि, इन सब में जो है फाइबर और एंटीऑक्सीडेंट की अच्छी मात्रा होतेगी। इनमें मौजूद विटामिन सी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाऊ थे वो, इसे इनको नियमित रूप से जो है अपन को सेवन करें चाहिए। संगे में देखो साथी यारो बाजार में जो है आलू बुखार भी देखी भी मैं आउट है वो। और आलू बुखार की अगर बात करें तो कछु दिनन बाद बाजार में जो आसानी से मिल भी वालो है वो। आलू बुखार जो है वो फाइबर, विटामिन सी और ए को एक अच्छो स्रोत है वो। जो फल जो है वो ब्लड में ग्लूकोज को नियंत्रित रखत है वो। इको सेवन सेहत के लाने बहुत ही अच्छो मानो जाऊ थे वो साथी हरो। तो जो भी हमारे श्रोता कछु श्रोता साथी इनको तो जो बहुत फेवरेट भी रहते है वो रथ के नहीं रहते सुबह इको खा सकत है। और कछु दरन बाद जो है आलू बुखार आपको बाजार में खूब भरपूर मात्रा में मिल है वो। अब ऐसे ही मैं आपको बता देगी कि बेल जो होतेगी ये फल में प्रोटीन, फास्फोरस, कार्बोहाइड्रेट, आयरन, कैल्शियम, फाइबर इतिक सब पाए जाऊंगे। नियमित अंतराल में बेल को सेवन पाचन तंत्र को मजबूत बनाते है और शरीर को अंदर से ठंडक भी प्रदान करते है। साथ ही वो क्यों अपने साथी है जो बुजुर्ग लोग होते वे अभी भी हैंगे देखा करत के बेल को शरबत बना के पियते। अब बेल को शरबत कैसे बनाते जो हमें नहीं पतो, लेकिन हाँ बेल को शरबत जरूर बनाते थे और उनमें शक्कर डाल के पिए थे जो भी कथा थे कि बहुत फायदेमंद होते वो। और खास तौर से ऐसे घाम से बचाऊ थे, ऐसी गर्मी के मौसम में बचाऊ थे, ठीक है। अब अगर बात कर ले मैं जामुन की, अब ये साथियों ई फल को स्वाद और लाभ लेवे के लाने कछु समय तक आप सबको इंतजार करने पड़ेगो भैया रोका के अभी जो आओ नहीं है। इन्हें पाव जावे वालों जो जाम्बुलिन नामक को तत्व होते है वो ब्लड में ग्लूकोज को कम करवे में बहुत ही मदद करा थे। इसे हर कोनों को इको सेवन करें जज्जे। मधुमेह रोगियन के लाने तो जो औषधि की तरह काम कर रहे थे वो तो बेबी इको खा सकते हैं। अब साथियों कछु और बात हम आपको बता देवे कि मधुमेह रोगी जो है वे समझदारी के संगे हर फल को ले सकते हैं, खा सकते हैं। जैसे अगर स्वाद की बात करें तो आम धारणा हैगी कि मधुमेह रोगियों को फल नहीं खाने दे चज्जी, लेकिन मधुमेह रोगी जो है वे सब फल को सेवन कर सकते हैं। जो सही बात हैगी हर एक फल में अलग प्राकृतिक मिठास होतेगी, ऐसे शुगर लेवल जो है वो गड़बड़ा सकते है वो। इको आसान तरीका जो है वो के ग्लाइसेमिक इंडेक्स और ग्लाइसेमिक लोड को ध्यान में रख दे ई पैमाने से और जो स्पष्ट हो जाऊ थे वो कार्बोहाइड्रेट से युक्त कोनो भी खाद्य पदार्थ खावे के बाद कौन सी गति से जो है ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बढ़ा सकत हेंगे। जो मानक शून्य से लेकर 100 तक है वो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स 100 से 70, ऐसे खाद्य पदार्थ जो ब्लड में ग्लूकोज को तेजी से बढ़ाऊ थेंगे और शुगर लेवल के आकस्मिक उतार चढ़ाव को कारण भी बना थेंगे। मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो 69 से 56 होते, ऐसे खाद्य पदार्थ जो मध्यम गति से ब्लड में ग्लूकोज को बढ़ाऊ थेंगे। तो साथी यारो कैबी को मतलब जो है वो कि अगर अपने शुगर वाले साथी भैया हैंगे और वे फलन को सेवन करवो चाह रहे हैंगे तो देखो वैसे तो सब फल जो हैंगे वे सही हैंगे, लेकिन हम आपसे जो कहवो चाहूंगे कि एक बार आप अपने डॉक्टर की सलाह जरूर ले लेवे कि हम ऐसे फल खा सकत या नहीं खा सकत। देखो अपन तो डॉक्टर है नहीं है और ना अपन अपने मन से कोनो भी दवाई ले सकत, ना अपन कोनो भी अपने मन से फल खा सकत हेंगे, क्योंकि अपनो इलाज जो है भी डॉक्टर कर रहे हैंगे। तो डॉक्टरन को काहे गो के भी सही तरीका से आपको बता सकते हैं कि आपकी सेहत के लाने आपको शुगर की समस्या हैगी तो उनके लाने कौन से फल आपको ज्यादा जरूरी हैंगे जो आपको खाए चज्जी, ठीक है। तो जातो हो गए साथी हरो सेहत के साथी हैंगे मौसम के फल। आगे हम आपको बता देंगे कि योग भी अपने लाने जरूरी है, वजन को नियंत्रण रखो भी अपने लाने जरूरी होते वो। जैसे कि अगर बात करें कि अनियमित जीवन शैली और खान पान की गलत आदतन के चलत वह वयस्क ही नहीं बल्कि किशोर भी मोटापे को शिकार हो रहे हैंगे साथी हरो। योग के ई आसन को नियमित अभ्यास करके आप घटा सकते हैं वजन और शरीर की अतिरिक्त चर्बी और वजन को कम कर सकते हैं, उनको नियंत्रण में रख सकते हैं। तो आसन को जो नाम है वो धनुरासन है वो। इको करवे से पूरे शरीर सक्रिय होते गो, ऐसे वजन घटबे के संगे अन्य शारीरिक जो समस्याएं होती हैंगी

घुटनन को मोड़ के कमर के पास ले जावे और अपने तलवन को दुई हाथन से पकड़ लेवे। इके बाद सांस लेत भय छाती को जमीन से ऊपर उठावे और पांव को आगे की तरफ खींचवे। अब शरीर को संतुलित रखत भय सामने की ओर देखवे। लगभग आपको जो 15 से 20 सेकंड बाद सांस छोड़त भय पैर और छाती को धीरे धीरे जमीन की ओर ले आ रहे हैं वो। और आपको बता दीजिए कि जो आसन तनक कठिन है वो, लेकिन आप धीरे धीरे इको नियमित रूप से अगर अभ्यास करो तो आप अच्छी तरह से इको कर सकते हैं। और अच्छी बात तो जाहू जी के कोई ऐसी व्यक्ति के सामने आप करवे जिको इन सब आसन के बारे में जानकारी हो, जो कोई जानत हो, या फिर आप आसान से तरीका जो भी अपना सकते हैं कि कई सारे वीडियो भी आसन के डरे रहेंगे, योग के डरे रहेंगे, तो आप भी देख के ये आसन को आसानी से कर सकते हैं। इनको करवे से कमर और पेट की नहीं बल्कि पूरे शरीर की चर्बी जो है आपकी घटन लगत है, घटव शुरू हो जाएगी। तो साथी भैया आज के कार्यक्रम में बस इतने के ही कह के अपन ने जान लो है वो सेहत के साथी हैंगे मौसम के फल, और अपने वजन को संतुलित यानी के नियंत्रित रखने के लाने योग भी अपने लाने जरूरी है। ये सब बातें अपन ने जानी हैंगी। अब अपना समय भी हो रहे हो आज के कार्यक्रम अम्मा के चौकी से जाबे को, तो जो कार्यक्रम आपको कैसे लगो हमें जरूर बतावे फोन के माध्यम से। आप चिट्ठी पत्री भी हमें लिख सकते हैं तो उनके लाने अपना पतो है रेडियो बुंदेलखंड 90.4 ताराग्राम ओरछा तकेला के पास ओरछा। आप साथी हरो आपको बता देवे कि देखो घाम बहुत तेज पड़ रहा है भैया हरो, ध्यान रखो अपनो रखो, अपने घर के बुजुर्गन को रखो, अपने घर के जो बाली बच्चा हैंगे उनको भी ध्यान रखने है को। ऐसे में पानी आप सबसे ज्यादा पियत रहे, पानी में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करवे। एकाएक से जब आप धूप से आउट हैंगे तो कूलर की हवा में या एसी की हवा में बिल्कुल ना जावे। जब काकेती तनक देर बाहर बैठ लेवे नॉर्मल सी हवा में, उसके बाद ही आप कूलर या काकेते एसी में जावे। और जो ही नियम आपको जब करने हैं वो जब आप एसी या कूलर से बाहर निकलत हैंगे, ठीक है। तो जैसे ही आप एसी में मान लो बैठे हैंगे बिलात देर से और आपको बाहर जाने हैं कछु काम से, तो आप क्या करो कि तनक देर पहले नॉर्मल जैसी जगह पे बैठ जावे जितो कूलर पंखा ना चल रहा होगा, तो उते बैठ जावे, उसके बाद आप बाहर निकलवे। बाहर निकलने के बाद आपको क्या करने है कि आपको सर को हमेशा ढक के रखने है गो, आंखन पे चश्मा लगाने है गो, और हो सके तो हाथन में ग्लेव्स भी पहन लेवे। अगर हमारा भैया गाड़ी से कितना जा रहा है मोटरसाइकिल से, तो हर भैया आपको जो है तौलिया या गमछा को इस्तेमाल तो करना ही है गो, ढाक भी के लाने मुड़ी, संगे में हेलमेट भी आपको लगा के जाने है गो, ठीक है। आज के कार्यक्रम में बस इतने ही, फिर मुलाकात हो जाए आपसे अगले कार्यक्रम में। अब अपनी रेडियो दोस्त वर्षा को देव जाबी की अनुमति, हमारी और आपकी अगले कार्यक्रम में फिर से मुलाकात हुई है एक नए विषय के संगे, तब तक के लाने नमस्कार।

0: काल साथ ही नमस्कार रेडियो बुंदेलखंड 90.0 समाचार सुनेयो बारे हमारे सब श्रोता साथियों को बहुत ही बहुत स्वागत कर रहे थेंगे कार्यक्रम खेत खलिहान में और हम हेंगे आपके संग आपकी रेडियो दोस्त वर्षा। साथियों आप तो जानते हेंगे कि खेत खलिहान कार्यक्रम हमारे किसान साथियों के लाने बहुत ही उमदा कार्यक्रम मानो जाऊते को कहके इन्हें अपन हो रहे जो बातचीत कर रहे थेंगे वो अपनी खेती किसानी से जुड़ी हुई बातचीत होतेगी, चाहे फसल को कैसे लगाने हैं उनकी बात कर गए, फसल में कौन सी कीट व्याधियों को भगावे के लाने का तरीका अपनाना चाहिए वो बताथेंगे, बुआई के तरीका का होतेंगे, तमाम तरह की किसानी से जुड़ी हुई जो भी चर्चाएं होती वे अपन और खेत खलिहान कार्यक्रम में समय समय पे करत रहेंगे। तो ऐसे ही अपनो खेत खलिहान कार्यक्रम सुन के अपने एक साथी हेंगी नंदिनी अहरबाज जी जो कि सकरार से हेंगी, जाउन सकरार आपने नाम सुनो हुई, तो जाउन सकरार से नंदिनी जी ने कार्यक्रम को सुन के अपनो सवाल भी हमसे पूछने की कोशिश करी हैगी और उनको कहबो हैगो कि आपके कार्यक्रम में जो एक्सपर्ट आउट हेंगे उन्हीं से हमें जा बात जानने हैगी। तो आज हम अपने कार्यक्रम में बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी से डॉक्टर सोलंकी सर जी को फोन पे जोड़ रहे हेंगे और नंदिनी जी को जो सवाल है वो कि उनकी कटहल जो पुरानी कटहल को पेड़ लगो है तो उसमें पीली पड़ रही बार सूख रही हैगी और ये बार फल नहीं लग रहा है। नंदिनी जी के अनुसार उसमें फल हमेशा लगाते और बहुत बढ़िया फल लगाते, तो ऐसी अचानक से जो दिक्कत उन्हें आ गई हैगी उनके कटहल के पेड़ में बा परेशानी को समाधान बे ई कार्यक्रम से जानबो चाहती हैंगी। तो हम अपने कार्यक्रम में डॉक्टर सर को बहुत बहुत स्वागत कर रहे थेंगे। सर नमस्कार।
1: नमस्कार,
0: कैसे हैं सर?
1: इस बुंदेलखंड रेडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं डॉक्टर सत्यवीर सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी से हूँ और पिछले करीब 15-16 वर्ष से हम बुंदेलखंड रेडियो से जुड़े हुए हैं। किसानों से

0: प्रत्यक्ष रूप से उनकी समस्याओं का समाधान भी करने का प्रयास करते रहे हैं। और मैं नंदिनी को धन्यवाद दूं, उन्होंने बुंदेलखंड रेडियो के माध्यम से अपने खेती किसानी में उगाए जाने वाले फल पौधों के विषय में चर्चा करने का प्रयास किया और उसमें जो समस्याएं आई उसके विषय में भी बताया। और कहा गया कि कटहल जो काफी लंबे अरसे से फल दे रहा है उनका, लेकिन पता नहीं किन कारणों से इस वर्ष उसने फल नहीं दिए, पीला भी पड़ रहा है और कमजोर भी है। तो मेरा नंदिनी को और नंदिनी के सहित हमारे जितने भी किसान भाई हैं जो फल पौधों के उगाने में अपने अभिरुचि रखते हैं, उनको मेरा आग्रह है कि जो भी फल वाले पौधे हैं निश्चित रूप से पोषक तत्वों की आवश्यकता हर फसल को, हर पौधे को, हर जीव को होती है। इसमें लंबे समय से हम अगर उनको पोषक तत्वों का आपूर्ति नहीं करेंगे तो वो फल वृक्ष भी कमजोर हो जाता है और साथ साथ उसमें फलों का आगम भी कम होता है और फल फूल आ भी जाते हैं तो ड्रॉप कर जाते हैं। तो इसमें हमारे निरंतर हो जा रही कमियों को देखते हुए जो पोषक तत्व हैं या जो सूक्ष्म तत्व हैं उनकी निरंतर कमी हो रही है हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र में। इसके लिए मेरे किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि जितनी परिधि में उनकी छांव होती है, फल पौधे की जितनी परिधि में छांव होती है, यानी उस तने से लगभग 8-10 फीट दूर जो उसका तना है उसके 8-10 फीट दूर में 1-1.5 फीट गहरी गड्ढा खोद और 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का एक चैनल बना दो, नाली बना दीजिए चारों तरफ, ठीक है, और बिल्कुल जड़ में नहीं बनाना है, जड़ से 10 फीट दूरी पर एक घेरा बना दीजिए और उसका 1.5 फीट चौड़ा और 1.5 फीट गहरा उसमें गड्ढा खोद दीजिएगा और उसमें जिंक सल्फेट और बोरोन, ये बाजार में बोरेक्स के रूप में मिलता है और जिंक सल्फेट के रूप में मिलता है, और उसमें गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और उसी में डीएपी और यूरिया और म्यूरेट और पोटास और महुआ की और नीम की खली, ये पूरा मिक्सचर बना दीजिएगा। तो मिक्सचर बना करके उस गोबर की खाद में मिला करके उसमें डाल दें, उसकी जो मिट्टी निकाली है उस मिट्टी को हटा करके दूसरी मिट्टी फिलअप कर दें, उस मिट्टी में ये पूरा मटेरियल मिला करके उसको दे दें, दबा दे उस नाली में और उससे ऊपर पानी लगा दे। ये हमको करना चाहिए था फरवरी से पहले, लेकिन कोई बात नहीं, अभी भी आप कर देंगी और या हमारे किसान भाई जितने भी हमारे फल वाले पौधे हैं जो लंबी अवधि तक फल देते हैं उनमें पोषक तत्वों की कमी हो जाना प्राय देखा गया है
1: जी।
0: उनको ये प्रैक्टिस करना आवश्यक है और उसी में निरंतर फिर पानी भरते हैं उस नाली में मिट्टी का जो है जो मैंने पोषक तत्व बताए वो प्लस भराई करके पानी भर दें तो वो फल देने लगेगा, उसमें फलों की तादाद भी बढ़ जाएगी, जो पीलापन है वो भी दूर हो जाएगा।
1: बिल्कुल। तो सर इको उन्हें रिजल्ट जी की हम बात कर रहे थे कि उनको रिजल्ट देख भी के लाने उन्हें कब तक मिल पे है वो, काहे कि अपन और जो सोचते हैं ना कि जैसे ही हमने काम करो तुरंत ही को रिजल्ट हमें देख भी मिल जावे, तो कितने दिनों तक उन्हें इंतजार करने पड़े तब जाकर वो पेड़ अपनी पहले जैसी अवस्था में आ पे।
0: देखिए वो जब उसमें ये काम करेंगी तो मैं समझता हूँ 1 वीक में, 1.5 से 1 से 2 वीक में उसमें हरियाली आ जाएगी, है ना, पीला पौध दूर होने लगेगा। और भी जल्दी करना है तो उसमें जो लिक्विड डीएपी आ रही है मार्केट में और जिंक और बोरोन का सॉल्यूशन 0.2% का, या जब भी वो दवा लेने जाए तो किसान भाई जब हमारे दवा लेने जाते हैं किसी दवा विक्रेता के यहाँ से तो वहां से वो एक डोज की नियत मात्रा बताते हैं, हर डोज की मात्रा का गणना वो दवा के अनुसार की जाती है, इसलिए मेरा यहाँ बताना मुश्किल है कि वो कितने परसेंट की दवा है।
1: बिल्कुल।
0: तो जितने परसेंट की दवा होगी उसका उतने परसेंट का सॉल्यूशन बना करके हम किसान भाइयों को ये आगाह करते हैं कि उसका फॉलियर स्प्रे करते हैं तो उसका जल्दी परिणाम आएगा।
1: बिल्कुल जी।
0: तो वो जो भी उनके पास सुविधाएं उपलब्ध है अगर स्प्रे कर सकते हैं तो

0: स्प्रे करें और स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो तने के आसपास चैनल नाली खोद दें और उसमें ये खुराक भरवा दें, भराई करवा दें।
1: बिल्कुल सर, तो बात तो बात होगी सर अपनी कटहल की कि कटहल को अपन कैसे जीवित रखने हैं। वो दूसरी बात करें सर, अपन देख रहे हैं कछुदना से बहुत ज्यादा अपने बुंदेलखंड में अक्सर देखो जा रहा है कि शाम के समय आंधी तूफान जैसा माहौल बन जाते हैं वो, तो ऐसे में अपनी जो कद्दू वर्गीय फसलें हैंगी उनको बचावे के लाने का तरीका अपने किसान साथी अपना सकते हैंगे?
0: देखिए इसके लिए तो अब एकाएक तो रोकना असंभव है क्योंकि ये प्राकृतिक आपदाएं हैं और इसके लिए तो हमको बाढ़ विधि ही सबसे सर्वोत्तम मानी गई है। तो पश्चिमी और उत्तर दिशा में हमारे किसान भाई बाढ़ लगाएं और बाहर से जो गर्म हवाएं आती हैं उनसे रुकावट होती है और कद्दू वर्गीय फसलों में जो पछुआ हवाएं जो इस समय आजकल चल रही हैं और गर्मी भी उत्तर दिशा से और पश्चिम दिशा से यहाँ से ही गर्म हवाएं आती हैं, इनसे रोकने के लिए हम लोग बाढ़ विधि का प्रयोग करें और उस बाढ़ विधि में या तो बायो बाढ़ विधि लगा दें जिसमें लंबे लंबे पेड़ पौधे पहले लगाए जाते रहे थे
1: जी।
0: या इतना जल्दी नहीं है तो किसी से भी उस बाढ़ उसकी हवा की गति को हम लोग कम करें, जैसे अपना खेती किसानी का जो कूड़ा करकट निकलता है उसको एक एक डेढ़ डेढ़ फीट ऊंचा तक कर दें या जो है उसमें मेड़ बना दे थोड़ा ऊंची और इसके साथ अगर नहीं है तो पानी चैनल लगा चैनल खुदवा के खाई खुदवा के उसमें पानी भर दें
1: जी।
0: तो ये छोटे छोटे उपाय हैं जो ये प्लानिंग करने से पहले, अब तो किसानों ने लगा दिया कद्दू
1: जी,
0: कद्दू वर्गीय फसल आ रही है तो उससे लगाने से पहले ही हमको ये प्लानिंग करनी पड़ती है, प्रबंधन करना पड़ता है कि बढ़ती हुई गर्मी से बचाव हम कैसे करें। तो हमारे किसान भाइयों से है कि जिस दिशा से गर्म हवाएं आ रही हैं वहां चैनल लगा दें, चैनल में पानी भर दें तो उससे रुकावट हो जाएगी और हवा को रोकने के लिए विंड ब्रेक का कोई भी संसाधनों से उसका रुकावट करें तो हवा की गति कम हो जाएगी तो कद्दू वर्गीय फसल बच जाएगी।
1: बिल्कुल सर, बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको, आप हमेशा तत्पर रहेंगे अपने बुंदेलखंड के किसानन के लाने और जब भी हम आपको फोन करें या आप प्रत्यक्ष रूप से आउट होंगे तो बिल्कुल हमारे किसानन के लाने एक उम्दा जानकारी दे के जाऊ थेंगे। बहुत ही बहुत धन्यवाद आपको हम कर वो जाऊ थेंगे सर।
0: चलिए आपको पुनः सादर नमस्कार, सभी हमारे बुंदेलखंड रेडियो कार्यकर्ताओं को।

एक बार साथियों रो फिर से बहुत बहुत स्वागत कराते कार्यक्रम खेत खलिहान में। और बड़ी नोनी जानकारी हमारे विषय विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यवीर सिंह सोलंकी जी ने दई हैगी। और जब जानकारी चूंकि हमारे एक श्रोता साथी हैं नंदिनी जी, उनने एक सवाल करो तो उन सवाल को जवाब के लाने हमने विषय विशेषज्ञ के तौर पर डॉक्टर सत्यवीर सिंह सोलंकी जी से बातचीत करी। और बातचीत कर रही थी हमारी वर्षा जी, तो जो जानकारी पाके शायद नंदिनी जी के मन में जो सवाल हते और चल रहे थे, वे सवालों

0: साथ जवाब में लगा हुई। हम कोशिश करत हेंगे कि जो भी हमारे श्रोता साथी जा खेत कल्याण कार्यक्रम खो सुनत हेंगे और सुनके हैं। बहुत सारे किसान साथी तो हमें फोन करके पूछ लेते हैं कि हमारे फसल में जा परेशानी है या आगे चल के कौन तरीके की फसल हमें करें चाहिए। तमाम प्रकार के सवाल जवाब हो जाते हैं और हम कोशिश कराते हैं कि उन सवालों के जो आपके मन में चला थे उनके जवाब विषय विशेषज्ञ द्वारा आपको उपलब्ध हो जाए, तो हम पूरी कोशिश कराते हैं। तो आपको क्या करना है कि आप हमारे नंबर 9219207749 तो फोन के माध्यम से या व्हाट्सएप पे मैसेज भेज सकते हैं। अगर आपको बहुत सारे हमारे किसान साथी हैं उनको कहूँ कहूँ तो डर लगा था कि हम रेडियो पर कॉल का करेंगे और कैसे बातचीत करेंगे, तो चूंकि आपको बतावा चाहते हैं कि रेडियो बुंदेलखंड जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है और जो समुदाय के लाने बनाओ गए है वो समुदाय की समस्याएँ समुदाय की जानकारी तमाम प्रकार की बातें हम कार्यक्रम के माध्यम से करते हैंगे। तो आप ही को जो मंच है वो तो आपको उपयोग करें। हम अब कोशिश करें कि आने वाले समय में आपको जो जानकारी यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाई जा सके। कैसे बहुत सारे हमारे किसान साथी युवा किसान साथी जो रथ हैंगे वे यूट्यूब पर जानकारी को सुनवा चाहते हैंगे। तो हम कोशिश कर रहे हैंगे, हम प्रयास कर रहे हैंगे जानकारी रेडियो के संगे संगे अपने जो माध्यम इंटरनेट को माध्यम है चाहे वो यूट्यूब हो इंस्टाग्राम हो फेसबुक हो इनके माध्यम से आप लोगों तक पहुंचावे की हम कोशिश करें। छोटे छोटे टुकड़न में जरूर करेंगे, छोटा सा प्रयास करें। हम जो बिल्कुल वादा नहीं कर रहे कि आपको जल्द जाकर हम शुरुआत जल्दी कर देंगे, लेकिन हाँ आने वाले समय में हम जरूर जाके लाने प्रयास करेंगे। हम मैनेजमेंट जो हमारी कमेटी है उनसे बातचीत करके कोशिश करें कि ये कार्यक्रम को हम लोग लाइव या फिर हम लोग यूट्यूब के माध्यम से ये कार्यक्रम को आप तक पहुंचाएं। तो हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथी समझे गए होंगे। अब एक बात आती है कि हमारे बहुत सारे श्रोता साथी हमारे वर्षा जी फेसबुक पर जो मौसम की जानकारी पहुँचाते हैं, इंस्टाग्राम के माध्यम से पहुँचाते हैं आप लोगों तक, तो मौसम की जानकारी जरूरी है। कैसे हमारे बहुत सारे श्रोता साथी ऐसे हैंगे उनको जानकारी बहुत अच्छी लगत हैगी, उनके लाने मौसम की जानकारी है। और एक बार फिर से पुनः आपसे निवेदन करते हैंगे कि जो भी हमारे श्रोता साथी हमसे जुड़न चाहते हैंगे तो 9219207749 नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और चूँकि इंटरनेट के माध्यम से हमारे और कहीं भी हमारे श्रोता साथी इस ऐप के माध्यम से रेडियो बुंदेलखंड के ऐप के माध्यम से कार्यक्रम को सुन सकते हैंगे। हमें खुशी हुई थी जब सोमवार को और बुधवार को हमारे फरमाइशी कार्यक्रम चलते हैंगे और इतने दूर दूर से हमें कॉल आते हैंगे, खासतौर पर महाराष्ट्र से हमारे किसान साथी जुड़े थेंगे, बड़ा अच्छा लगा था वो। तो हम प्रयास करें ये कार्यक्रम और सुगम और सरल बनाने की कोशिश करें, खासतौर पर यूट्यूब या फिर इंस्टाग्राम के माध्यम से। तो पहले मौसम की जानकारी सुनो, जाके बाद अपन बातचीत करा देंगे। लेकिन जैसे पहले अपन संगे संगे गीत संगीत भी हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो गीत संगीत सुना देंगे, इसके बाद मौसम की जानकारी अपन सुना देंगे।
1: जीवन भर सुख देती जा जैविक खेती, जीवन

से लाभ है भारी, ई खेती से लाभ है भारी, अपनी भूमि रे खुशहाली, अपनी भूमि रे खुशहाली, सुमाला अरे माला माल कर देती जा, जैविक खेती जीवन भर सुख देती जा, जैविक खेती। फसल उपज खो खूब बढ़ावे, फसल उपज खो खूब बढ़ावे, पर्यावरण को शुद्ध बनावे, पर्यावरण को शुद्ध बनावे, सुलावई अरे लावई हाँ लावई लाभ हमें देती जा, जैविक खेती जीवन भर।

खुशहाल बनो रे अपनो देश, खुशहाल बनो रे अपनो देश। सो करो सो करो आ करो सब जैविक खेती, जा जैविक खेती।

किसान साथियों नमस्कार। रेडियो बुंदेलखंड 90.4 सुनने के बारे हमारे सब किसान साथियों को एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। और श्रोता भैया हम लेके हाजिर हो गए हैं आप सबके लाने मौसम आधारित जानकारी को। तो जो मौसम आधारित जानकारी जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं वह है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से। और जो जानकारी कौन कौन से क्षेत्र के लाने हैं ये बाबी हम आपको बताए दे रहे हैं। बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र जिला टीकमगढ़ छतरपुर दतिया और निवाड़ी जिला शामिल है। साथ ही आगामी 5 दिनों को मौसम को पूर्वानुमान इस प्रकार से है। वो मौसम विज्ञान विभाग के भोपाल केंद्र से प्राप्त भी जो मौसम के पूर्वानुमान अनुसार जानकारी बुंदेलखंड कृषि जलवायु क्षेत्र के लाने हैगी। और इनमें बताया गया है वो कि शाम के समय गरज चमक के संग ओलावृष्टि आंधी तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना है। आमतौर पर शुष्क मौसम रह सकते है। वो अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास तथा रात को न्यूनतम तापमान 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। हवा की औसत गति 3 से 14 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना हैगी। आने वाले दिनों में ओलावृष्टि और गरज चमक के संग वर्षा तथा तेज हवाएं 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा से चले हैगी। सूझी में खड़ी फसल को गंभीर नुकसान भी हो सकते है। वो किसान साथियों को सलाह दी जा रही है कि वे पकी भई जो फल है सब्जियां हैंगी उनकी कटाई को कार्य शीघ्र से कर लेगी। साथ ही में कमजोर फसलों को सहारा भी दे देंगे। अब बात करते हैं श्रोताओं मौसम आधारित साप्ताहिक कृषि परामर्श की। मूंग में रस चूसक कीट को प्रकोप देखो जा रहे हो। अतः किसान भाई फसल को निरीक्षण कर दे तथा पाए जाने पर बचाव हेतु इमिडाकोप्रीत दवा की 0.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव कर लेंगे। जिन किसान भाइयों ने खाली खेतों की जुताई नहीं करी है वे विगत सप्ताह में भारी बारिश से प्राप्त नमी को लाभ लेते भय जुताई को काम कर लेंगे। अब बात कर रहे थे फल फूल और सब्जियों के बारे में। किसान भैया टमाटर मिर्च तथा बैगन की फसल में चुर्रा मुर्रा यानी लीफ कर्ल रोग को प्रकोप देखो जा रहे हो। इसे बचाव हेतु किसान साथी कोनालफास 25 ईसी दवा की 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर ले गए तथा अभी बारे 7 दिनों तक सब्जी को बिल्कुल न तोड़ गए। श्रोता साथियों ओलावृष्टि गरज चमक के संग वर्षा तथा आंधी तूफान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलने की संभावना को देखते हुए किसान भाई पान के लगे भय बगीचा की मरम्मत को कार्य कर ले गए। भिंडी की फसल में लाल कीड़ा को प्रकोप हो सकते है। वो अतः किसान भाई फसल को निरीक्षण कर दे और अगर कीड़ा पाया जा रहा है वो तो उनके बचाव हेतु ट्राइजोफास 40 ईसी दवा के 2 मिलीलीटर पानी में घोल बना के आसमान साफ होने पर छिड़काव कर ले गए। कद्दू वर्गीय सब्जियां जैसे कि कद्दू लौकी टिंडा करेला तरबूज एवं खरबूज इत्यादि में लाल कीड़ा एवं फूल मक्खी को प्रकोप तापमान बढ़ने से दिखाई दे सकते है।

अतः इसे बचने के लाने अपने किसान भाई ट्राइजू फास्ट 40 इसी दवा की 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर आसमान साफ होने पर छिड़काव कर ले गए। किसान भाई नए बाग लगावे हेतु तो स्थान को चुनाव कर दे, साथ ही में खुदाई को कार्य भी शुरू कर दे गए। नींबू वर्गीय पुराने पौधा के तने पर चूना में प्लाईटाक्स मिला के लीप कर ले गए ताकि धूप से तना की क्षति ना हो गए। अब बात करते हैं ये साथियों अपने पशुओं की, पशु बकरियां और मुर्गियों की। मानसून पूर्व पशुओं को गलघोंटू व जहरी बुखार के टीका जरूर लगवा लेंगे ताकि बारिश के मौसम के आगे तक इनमें अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकास हो पावे। आने वाले दिनों में ओलावृष्टि गरज चमक के संगे बरसात तथा आंधी तूफान खो बेखत है। कच्ची छत वाले पशुशालाएं के गिरवे को डर बने रहते हुए सुई से बचने के लाने कच्ची पशुशालाएं की मरम्मत को कार्य भी जल्दी से जल्दी कर ले ताकि कच्ची छत वाले पशुशाला में पशु सुरक्षित रह पावे। तो साथियों जो जानकारी हम आपको दे रहे थे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय टीकमगढ़ के माध्यम से, जो जानकारी आपको रेडियो बुंदेलखंड पर बताई जा रही है। आज की यह जानकारी इतने के अगली जानकारी हम आप तक फिर से लेते हैं। आप ऐसे सुनते रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 अपनी रेडियो अपनी बातें। नमस्कार।

एक बार फिर से पुनः बहुत बहुत स्वागत करते हैं कार्यक्रम खेत खलिहान में। अभी अपन ने जो मौसम आधारित जानकारी को सुनो और हमें आशा है कि हमारे श्रोता साथियों तक जो जानकारी पहुंच रही हुई है, कैसे अब जो मौसम परिवर्तन हो रहा है, खासतौर पर गर्मियों में इस तरीके का मौसम परिवर्तन, कहीं कहीं तो जब मौसम इतना करवट ले जाते हैं, कहीं कहीं पानी बूंदाबांदी हो जाते हैं, कितम कितम तो ओले पड़ जाते हैं, तो मौसम करवट जब ले थेगा तो तमाम प्रकार की समस्याएं खेती में भी आते हैं। तो हमें खास तौर पे जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो, यानी जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है वो, उनको बचावे के लाने हमें अथक प्रयास करने हैं। कैसे बच सकत आप सभी श्रोता साथी भली भांति जाखों जानत भी होंगे कैसे अपनों पर्यावरण को अपन लोग बचा सकते हैंगे। खासतौर पर हमें कोशिश करने के हमें जैविक पद्धति की ओर जावो बहुत ज़्यादा जरूरी है। कैसे आने वाले समय में हम जैविक पद्धति को अपनावे की कोशिश करें, स्वदेशी अपनाएं। हमारे कई ऐसे किसान हैं जो अपनी खेती में जैविक पद्धति से अपना खेती को करण लगे हैंगे और आधुनिक खेती करवो, प्राकृतिक खेती करवो, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, चैलेंज वाला विषय भी है। वैज्ञानिक पद्धति से खेती अगर हमारे किसान साथी करत हैंगे तो बहुत ज़्यादा उनको फायदा भी होते है। अगर जमुनिया की बात करें और हमारे कुनुआ में भी कुछ किसान महिलाएं हैं जिन्होंने जैविक खेती करवो स्टार्ट करो है, वो ऐसे उदाहरण हम दे सकते हैंगे कि हमारे किसान साथी अब बदलते समय में अपनी खेती भी बदल रहेंगे। तो हमें जो बदलाव के आगे चलने हैं वो बदलने हैं अपनी खेती की, जब पुरानी पद्धतियों हो, नई चीज़ों को नई तकनीकी से अपन को खेती करने हैं वो, तो समय समय पर हम हर बार अपने किसान साथी के लाने तमाम प्रकार के ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी लेके आतेंगे। तो हमें आशा है कि जो जानकारी पाके हमारे किसान साथी जरूर अपने खेती में जरूर बदलाव करें। तो अब वक्त हो चुका है जो कार्यक्रम खेत खलिहान कार्यक्रम से जावे को, तो कैसे लगो जो कार्यक्रम हमें जरूर बताओ हमारे जा नंबर पे, नंबर है 9219207749, या फिर चिट्ठी के माध्यम से आप चिट्ठी पत्रिका भेजना चाहते हैं को पत्रिका को पता है 9 रेडियो बुंदेलखंड 90.4 तारा ग्राम ओर छतगेला के पास ओरछा। तो अब हमें देव जावे की इजाजत, आपकी हमारी फिर हुई है अगले कार्यक्रम में मुलाकात, तब तक के लाने नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे आप हैं इबेरा अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। और दोस्तों हम लेके आ गए आप सब जन के लाने जो कार्यक्रम विधा बुंदेली। दोस्तों कार्यक्रम को जैसो नाम है तैसो काम भी है। ई कार्यक्रम में अपन एक विधा सुनते हैं और विधा को आनंद लेते हैं। सो आज सुने अपन ई कार्यक्रम में विधा तमुरा और तमुरा भजन को अपन आनंद ले हैं। और ई तमुरा भजन को गा रहे हैं कोमल दास जी। सो कोमल दास जी के स्वर में अपन सुने आज ही कार्यक्रम में जे तमुरा भजन को। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में। आओ सुनते हैं कोमल दास जी के स्वर में ई तमुरा भजन को।

बिल्कुल दोस्तों, सुमरो बारम बार जी। देखो कितनो बढ़िया जो तमुरा भजन अपन ने सुनो है, तमुरा भजन को आनंद लाओ है। और ई भजन को गा रहे थे कोमल दास जी और उनके संगी साथी। अब दोस्तों आओ एक क्रम में कोमल दास जी के स्वर में फिर से सुनते हैं एक और बढ़िया से तमुरा भजन को, लेते हैं तमुरा भजन को आनंद। सो आप ऐसे बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में।

बिल्कुल, चलने परे जरूर हरी। देखो कितना बढ़िया जो गीत अपन ने सुनो है, तमुरा भजन को आनंद लो है, ये गीत को गा रहे थे कोमल दास जी। अब कोमल दास जी के स्वर में अपन आगे एक और गीत सुने और गीत को आनंद ले। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे, अपने रेडियो साथी माता दिन भैया के संग में सुनत रहो जो कार्यक्रम बेधा बुंदेली।

कि बाबा बारे के बैरागी। देखो कितना बढ़िया जो अपन ने तंबूरा गीत सुनो है, गीत को आनंद लो है। आओ ये गीत के संगे संगे अपन एक और आगे गीत सुनते हैं, गीत को आनंद लेते हैं। सो आप ऐसे ही बने रहो रेडियो बुंदेलखंड 90.4 पे अपने रेडियो साथी माता दीन भैया के संग में, सुनत रहो जो अपनो प्यारा सो कार्यक्रम बेधा बुंदेली अपने दोस्त माता दीन भैया के संग में। आओ सुनते हैं कोमल दास जी के स्वर में आगे एक और तंबूरा गीत खो।